एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

nas. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन

0: प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूर में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी

0: जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेरवेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

प्रार्थना से हमारे हृदय के कलुष ही दूर नहीं होते हैं, परमात्मा के प्यार का असीम आनंद, सानिध्य और प्रेम भी मिलता है। हाँ, यदि प्रार्थना करने के लिए खड़े होते समय मन में किसी के लिए विरोध आए, किसी का अपराध स्मरण हो जाए, तो उसे प्रार्थना करने से पूर्व क्षमा कर देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो मन का विरोध और आत्मा का द्वेष प्रार्थना के शब्दों को दूषित कर देंगे। सबके दोष दुर्गुण भूलकर सबकी सेवा और उन्नति करना भी प्रार्थना है। ये प्रार्थना उन सभी प्रार्थनाओं से अच्छी है जिसमें भगवान का नाम तो है पर अंतःकरण की पवित्रता नहीं है। प्रार्थना का बीज पवित्रता की ही भूमि पर अच्छी तरह अंकुरित पुष्पित और पल्लवित होता है। उसी में अच्छे फल लगते हैं और उसी से मनुष्य को प्रार्थना का आनंद मिलता है।

सांसारिक मोह माया में फंसकर हम प्रभु को विस्मृत कर देते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि प्राणी मात्र का एकमात्र सहारा सिर्फ प्रभु ही हैं।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना चाहिए। ज्ञान घृत से आत्मा रूपी दीपक ऐसा प्रज्वलित रहता है जिसे माया का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता।

ये थी वंदना कार्यक्रम की अंतिम भक्ति रचना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री राम चरित मानस गान।

केवट से निहोरा करके श्री रामचंद्र पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण सहित गंगा पार तो उतर गए, किंतु केवट को उतराई देने की उनकी कोई युक्ति सफल नहीं हुई। श्री राम ने स्नान कर पार्थिव पूजा की तथा सीता ने गंगा से हाथ जोड़ अपना मनोरथ पूरा करने की प्रार्थना की। मां गंगा को रघुवीर की प्रियतमा की महिमा ज्ञात थी, फिर भी उनकी विनती सुनकर भागीरथी ने कहा, हे सीते, तुम अपने प्राणनाथ तथा देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे होंगे और तुम्हारा यश संपूर्ण जगत में छाएगा। उधर श्री रामचंद्र ने केवट को भक्ति का वरदान देकर विदा करना चाहा, तो निषाद राज ने दो चार दिनों तक उनके साथ रहकर उनके चरणों की सेवा करने की अनुमति चाही। भक्त वत्सल भक्त की प्रार्थना कैसे न मानते। सीता लक्ष्मण सहित उन्होंने श्री गणेश तथा शिवजी का स्मरण किया तथा मां गंगा को सिर नवा निषाद राज को साथ लेकर वन की ओर चले।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी। शुभ प्रयाग कार्यक्रम सुनिएगा 7:40 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गाने सुहाने। सुबह 9:00 होगा स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। आज के कार्यक्रम में आमंत्रित होंगे शल्य चिकित्सक डॉक्टर गौरव गुप्ता, जो आपको हर्निया कारण लक्षण और बचाव इस विषय पर जानकारी देंगे। श्रोता संबंधित विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए टेलीफोन कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर रहेगा 01892224391। ये कार्यक्रम 10:00 तक जारी रहेगा। गीतों का कारवां ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:00। 10:30 पर पहाड़ों के सुर कार्यक्रम आप सुनेंगे। 9:20 पर सुबह 11:00 दिन में 3:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये कार्यक्रम सुनिएगा 11:05 पर। तराने मन के ये कार्यक्रम होगा 11:30 पर। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:00। 12:30 पर बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा बाल सभा। दिन में 3:05 पर सामयिक चर्चा आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले की जाएगी। 1:10 से लेकर शाम 5:00 तक हमारे केंद्र से रिले किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। फिल्मों से भजन आपको सुनवाएंगे शाम 5:10 पर। शाम गजल ये कार्यक्रम होगा 6:05 पर। शाम 5:25 पर युवा मंच कार्यक्रम में आज सुनिएगा वीकली पल्स। 6:30 पर ग्रामीण महिलाओं के लिए स्थानीय बोली में सजीव फोन इन कार्यक्रम होगा मिंजरा। 7:10 पर कार्यक्रम सुनिएगा खेती बाड़ी सबरस। ये कार्यक्रम होगा रात 8:00। 8:30 पर देशगान, एक ही कलाकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:15 पर। रात 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10:00 रविवासरीय संगीत सभा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी।

आकाशवाणी के शिमला केंद्र से शाम 6 बजे और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे News@9, रात 11 बजे हिंदी में समाचार और सभा के अंत में 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। ये थी आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतम् एकोनचत्वारिंशत् पदकैः सह पदकतालिकायां चतुर्थस्थानम् अधिगतवत्। भारतस्य पदकतालिकायाम् अधुना 13 स्वर्णपदकानि, 17 रजतपदकानि, 9 कांस्यपदकानि च सन्ति। भारतस्य नूतनपदकं 5000 मीटरमितायां धावनस्पर्धायां गुलवीरसिंहेन प्राप्तं कांस्यपदकम् अस्ति। मुष्टामुष्टिस्पर्धासु भारतेन उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतं, यत्र 7 स्वर्णपदकानि तथा 3 रजतपदकानि प्राप्तानि। पैरा एथलेटिक्स इत्येतस्मिन्नपि भारतेन ऐतिहासिकी उपलब्धिः सम्प्राप्ता। पुरुषाणां शॉटपुट F57 इत्येतस्यां स्पर्धायां सोमन राणा स्वर्णपदकं, शुभम जुयालः च रजतपदकं प्राप्तवान्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य कर्नाटक, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। तथैव दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु अपि अतिवृष्टिः व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किश्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। पेरू में एक पर्यटक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 13 लोगों की मौत हो गई। विमान में सवार पर्यटक प्रसिद्ध नाजका लाइंस को देखने के लिए हवाई यात्रा कर रहे थे। ये प्राचीन भू आकृतियां हैं जिन्हें पेरू के मूल निवासियों ने सदियों पहले रेगिस्तान में बनाया था। ये विमान पेरू की एयरलाइन एरोडियाना द्वारा संचालित किया जा रहा था और इसने पास के शहर ईका से उड़ान भरी थी। फिलहाल हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज

उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह सुहानी। सुबह सुहानी, आप हमारा ये कार्यक्रम FM 103.4 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। आज की सुहानी सुबह के साथ आज के दिन को खास बनाने के लिए हम हैं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त संगीता। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम सुबह सुहानी में, जो आपको हर सुबह मधुर संगीत के साथ इतिहास से जुड़ी खास बातें और खबरों को भी आप तक पहुंचाता है। तो हर सुबह को खास बनाइए सुबह सुहानी के साथ। आगाज सुविचार के साथ, जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, उन्हें जीवन में कभी कोई कमी नहीं खलती। सच्ची इंसानियत वही है जो निस्वार्थ भाव से हो, क्योंकि भलाई की महक कभी कम नहीं होती।

इस गीत के बाद अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर, जिसने आज के दिन को बनाया ख़ास और विशेष। 1790 में अमेरिका में पहली बार जनगणना हुई थी। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था और इस अधिनियम से गवर्नर जनरल का पद वॉयसराय में बदल गया था। 1870 में लंदन में विश्व का प्रथम भूमिगत ट्यूब रेलवे टावर शुरू हुआ था। देश में खेलों के इतिहास में 2 अगस्त का दिन खास महत्व रखता है। 1987 में भारत के विश्वनाथन आनंद ने फिलीपींस में आयोजित विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में खिताबी विजय हासिल की थी। ऐसा करने वाले वे पहले एशियाई शतरंज खिलाड़ी थे। कमल कपूर एक भारतीय हिंदी सिनेमा के अभिनेता और निर्माता थे, जिन्होंने लगभग 600 हिंदी फिल्मों और पंजाबी गुजराती फिल्मों में काम किया। 60 के दशक में उन्होंने खलनायक की भूमिका करनी आरंभ की। इनकी यादगार फिल्में हैं पाकीज़ा डॉन, गोरा और काला, मर्द, राजा और रंग, सीता गीता, ब्लैकमेल और जौहर महमूद इन गोवा। इनका निधन साल 2010 में आज ही के दिन मुंबई में हुआ था। अपनी नीली आंखों के लिए जाने जाते थे कमल कपूर। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने अभिनय की बदौलत वे हम सबके दिलों में जिंदा है। आइए सुनते हैं जौहर महमूद इन गोवा फिल्म का ये गीत है।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। जिन महान हस्तियों के जन्म आज के दिन हुए उनके बारे में भी बता देते हैं। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय की जन्म जयंती भी आज ही के दिन मनाई जाती है। इनका जन्म 2 अगस्त 1861 में हुआ था। भारत के रसायन विज्ञान के जनक और मर्क्यूरस नाइट्रेट का वैज्ञानिक अनुसंधान 1895 में इन्होंने किया था, जो उस समय विज्ञान जगत की एक बड़ी उपलब्धि मानी गई थी। भारत में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उद्यम को बढ़ावा देने के लिए 1901 में भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी की नींव रखी। आचार्य न केवल एक महान वैज्ञानिक थे बल्कि एक समर्पित समाज सेवी और शिक्षक भी थे। महान स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला की जन्म जयंती भी आज ही के दिन मनाई जाती है। इनका जन्म 2 अगस्त 1877 में हुआ था। इन्होंने महात्मा गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था। 1956 में जब नए मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब वे इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार पर कार्य किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित विश्वविद्यालय का नाम इन्हीं के सम्मान में रखा गया है। और 1878 में आज ही के दिन पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रचनाकार महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती पर उन्हें सादर नमन। पिंगली जी द्वारा रचित तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं बल्कि भारतीय आत्मा की अभिव्यक्ति है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में करोड़ों भारतीयों को एकजुट किया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारी राष्ट्रीय चेतना, बलिदान और स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक है, जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधे रखता है। वेंकैया जी की राष्ट्रभक्ति आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओं, अगस्त महीने के पहले रविवार को पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है मित्रता दिवस। ये दिन दोस्तों के प्रति प्यार और सम्मान प्रकट करने का दिन है। आप सभी को मैत्री दिवस की शुभकामनाएं। और श्रोताओं, हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह। ये सप्ताह शिशु और माता के स्वास्थ्य के लिए स्तनपान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए समर्पित है। अपने बच्चे को जीवन देने वाली माँ शिशु को स्तनपान से संरक्षण और संवर्धन देती है। माँ का दूध बच्चों का सर्वोत्तम आहार है और ये बच्चों की प्रतिरक्षा करता है, साथ ही बच्चों का पूर्ण विकास भी करता है। अगली जानकारी आपके साथ साझा करेंगे इस गीत के बाद।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और आज की खबरों पर एक नजर। नगर परिषद कांगड़ा के सभी वार्डों में 5-5 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। नगर परिषद की पहली बैठक में लिया गया फैसला। सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत, अवैध होर्डिंग्स पर भी लगेगी रोक। अध्यक्ष सुमन वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। चंडीगढ़ कुल्लू हेलीकॉप्टर यात्रा 3,000 रुपये सस्ती हुई। हिमाचल आने वाले पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों के लिए राहत की खबर है। हेरिटेज एविएशन ने मॉनसून स्पेशल ऑफर में चंडीगढ़ से कुल्लू तक हेलीकॉप्टर यात्रा का किराया घटा दिया है। हेरिटेज एविएशन के सीईओ रोहित माथुर ने कहा, इसका उद्देश्य अधिक लोगों को किफ़ायती हवाई यात्रा उपलब्ध करवाना है। यह किराया सीमित अवधि के लिए लागू किया गया है। जिला कांगड़ा के राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय और चिकित्सालय पपरोला में लगेगा 10 रुपये पर्ची शुल्क, और विभिन्न प्रमाण पत्रों के सत्यापन शुल्क को भी दुगना किया जाएगा। आयुष मंत्री ने कहा है कि बढ़ी हुई फीस को प्रस्ताव के बाद ही लागू किया जाएगा। घरेलू गैस उपभोक्ताओं को अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना केवाईसी दुगने दाम पर मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। उपभोक्ता 16 अगस्त तक केवाईसी करवाएं, नहीं तो चुकाने होंगे 2,200 रुपये। इंडियन ऑयल के जिला सेल अधिकारी गौरव जोशी ने कहा, गैस उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए और केवल पात्र उपभोक्ताओं तक सब्सिडी का लाभ सुनिश्चित करने के लिए ये प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। उपभोक्ता समय रहते अपनी केवाईसी करवाएं।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 2026 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दो दिवसीय चंबा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मिंजर विसर्जन और अंतिम सांस्कृतिक संध्या में भी भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। मॉनसूनी बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 7 अगस्त तक कांगड़ा सहित कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये थी आज की खबरें और अब आपके मनोरंजन के लिए आ रहा है ये गीत।

0: शुभ प्रयाग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। आज सुबह 9 बजे स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में आमंत्रित होंगे शल्य चिकित्सक डॉक्टर गौरव गुप्ता, जो आपको हर्निया, कारण, लक्षण और बचाव इस विषय पर जानकारी देंगे। श्रोता संबंधित विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए टेलीफोन कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर रहेगा 01892224391। ये कार्यक्रम 9 बजे से 10 बजे तक FM 103.4 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
1: MCA, MBA, MA History, Economics, Political Science 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
2: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र, जो कि UGC DAB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
1: नए सत्र के लिए प्रवेश आरंभ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418335203, 9218700111।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7:55 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं देश गान।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले की जाएगी।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ 1 माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 4th स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
4: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के 3rd सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
5: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी

0: रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और NEET PG 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क

0: रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण, 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल। रिकॉर्ड शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाईं। जनसत्ता की खबर है, कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, कांग्रेस जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइयां ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा, किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं, डब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी एआई की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है, कोई बन रहा रचनाकार तो कोई एआई से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: With that, we end the morning news. Have a nice day.
1: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम गाने सुहाने।

कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं कुछ कुछ होता है फिल्म के इस गीत के साथ। जतिन ललित का संगीत है, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें हैं।

0: MCA, MBA, MA History, Economics, Political Science 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
1: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र जो कि UGC DAB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
0: नए सत्र के लिए प्रवेश आरंभ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418335203, 9218700111।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: गाने सुहाने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दिल तो पागल है, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की मिलीजुली आवाजों में।

0: गाने सुहाने ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हम अपने सभी श्रोताओं को याद दिला दें कि सुबह 9 बजे होगा स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम, और आज के कार्यक्रम में आमंत्रित होंगे शल्य चिकित्सक डॉक्टर गौरव गुप्ता, जो आपको हर्निया कारण लक्षण और बचाव इस विषय पर जानकारी देंगे। श्रोता इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए टेलीफोन कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर रहेगा 01892224391 और ये कार्यक्रम 10 बजे तक जारी रहेगा। और इस समय आप सुन रहे हैं गाने सुहाने।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है, फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करे, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
0: गाने सुहाने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं गदर फिल्म का गीत। उत्तम सिंह का संगीत है, आवाज है उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: गाने सुहाने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। उदित नारायण और अलका याग्निक की मिलीजुली आवाजों में अब सुनिए मोहरा फिल्म का गीत।

गाने सुहाने कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं कभी हाँ कभी ना फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे आवाज़ दी है कुमार सानू ने और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने सुहाने। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम।

0: नमस्कार अभिनंदन। स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोता, इस कार्यक्रम को FM 103.4 MHz के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। स्वास्थ्य ही धन है, इस सोच के साथ हम आरोग्यम कार्यक्रम में स्वास्थ्य संबंधी विषय लेकर आते हैं और आज हम एक ऐसी ही स्वास्थ्य समस्या के बारे में बात करेंगे जो बेहद आम है, फिर भी लोग इसके लक्षणों को समझ नहीं पाते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हर्निया के बारे में और श्रोता इस विषय के संबंध में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01892224391 और हर्निया के विषय पर जानकारी देने के लिए आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज़ में उपस्थित हैं जाने माने शल्य चिकित्सक डॉक्टर गौरव गुप्ता। डॉक्टर साहब, आरोग्यम कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार संगीता जी।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें और हमारे श्रोताओं को आसान भाषा में समझाइए कि हर्निया वास्तव में होता क्या है।
1: जी संगीता जी, ज़्यादातर मरीज जो मेरे पास आते हैं, सबका पहला सवाल यही होता है कि हर्निया क्या होता है। हर्निया हमारे, जिस तरह आप जानते हैं, पेट के अंदर कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं और आंतें होती हैं, काफ़ी सारा फैट होता है। इन सबको रोकने के लिए भगवान ने पेट की दीवार बनाई है कई सारी मांसपेशियों से
0: जी।
1: तो इन मांसपेशियों में कई बार कोई कमज़ोरी होने के साथ में वो कमज़ोरी से छेद बन जाता है, जिससे कि अंदर के ये अंग या आंतें बाहर की तरफ झांकने लगते हैं। वो बाहर मांसपेशियों से ना रुक करके केवल स्किन यानी चमड़ी से रुके रहते हैं।
0: अच्छा।
1: इसको हर्निया कहते हैं। बेसिकली ये हमारे पेट की दीवार में एक डिफेक्ट है, एक छेद है, जिससे कि अंदर के ऑर्गन्स बाहर की तरफ आने लगते हैं।
0: जी, तो सबसे पहले ये भी तो जानना चाहेंगे साथ साथ में कि हर्निया जो है वो होता क्यों है।
1: हर्निया का कारण बहुत निश्चित नहीं है। ज़्यादातर ये हमारे पेट की मसल्स की कमज़ोरी के कारण होता है और कभी भी जिन कारणों से हमारे पेट पे ज़्यादा जोर पड़ता है, जिस तरह जैसे कि लंबे समय से खांसी होना, कब्जी होना, ज़्यादा उम्र में लोगों को गदूद बढ़ने के, प्रोस्टेट बढ़ने के कारण पेशाब के लिए जोर लगाना, इन चीज़ों से पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ता है। खांसने के समय पेट का प्रेशर बढ़ता है और इसके अलावा कई बार पुराने ऑपरेशंस के बाद में पेट की दीवार उतनी मजबूत नहीं रह जाती है
0: जी।
1: तो उसमें हो सकता है। और बच्चों में भी हर्निया पाए जाते हैं जो कि जन्मजात या कंजेनाइटल होते हैं।
0: अच्छा जी, तो ये तो आपने बता दिया कि कारण ये इस कारण से होते हैं।

0: हैं, टेलीफोन नंबर है 01892224391। और हर्निया के संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियोज में उपस्थित हैं शल्य चिकित्सक डॉक्टर गौरव गुप्ता। तो डॉक्टर साहब, एक आम इंसान कैसे पहचान सकता है कि हर्निया है, ये तो आपने बताया, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं?
1: शुरुआत में संगीता जी कई बार हमें सूजन नहीं नज़र आती है, हर समय सूजन नहीं रहती है, केवल जिस समय कोई किसी तरह का जोर लगता है, जैसे खांसने के समय, भारी वजन उठाने के समय, किसी खास जगह पर दर्द होना, खिंचाव महसूस होना, और रेस्ट करते समय कोई इस तरह का दर्द नहीं होता है। जब हम कोई जोर लगाते हैं उस समय किसी एक जगह पर दर्द होना,
0: जैसे कोई भारी वजन जब हम कोई उठाता है,
1: जी जी,
0: तो भी दर्द हो सकता है,
1: उस समय भी दर्द हो सकता है। तो उसमें डॉक्टर शुरुआती लक्षण में मरीज को सूजन हो सकता है ना नजर आए, तो बट इस तरह का अगर किसी एक जगह स्पेसिफिक दर्द होता है तो डॉक्टर के चेकअप से हर्निया को डिटेक्ट किया जा सकता है। आगे चल करके जब हर्निया बढ़ जाता है तो निश्चित तौर पर सूजन नज़र आती है, और जैसा कि मैंने बताया कि इसके कॉमन जो जगहें होती हैं वो होती है नाभि, नाभि के आसपास, हमारे पेट की जो मिड लाइन होती है, बीच का पोर्शन होता है उसमें, और नीचे जांघ के, कमर और जांघ के बीच में इस तरह के जगहों पर सूजन आना, ये इसका मेन लक्षण है।
0: तो आपने बताया कि कई प्रकार के भी होते हैं ये हर्निया जो होता
1: जी
0: है,
1: जी,
0: तो कितने प्रकार के होते हैं
1: हर्निया? मुख्य तरह से देखा जाए तो मेडिकली अगर बात करूं तो दो तरह के, इंटरनल और एक्सटर्नल हर्निया होते हैं।
0: कभी कभी एक फोन आ रहा है, फिर बातचीत जारी रखेंगे।
1: जी जरूर,
0: फोन जी, लाइन कट गई है, कोई बात नहीं, दोबारा फोन आता है तो हम बात करते हैं। तो हर्निया के प्रकार जो है उनके बारे में हम बात कर रहे थे।
1: जी, तो मुख्यतः दो तरह के होते हैं, इंटरनल हर्निया और एक्सटर्नल हर्निया। कभी कभी आपने इसके बारे में भी, अंदरूनी हर्निया होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं, तो हम उनके बारे में उतनी बात करना उचित नहीं रहेगा। बाहर के जो हर्निया होते हैं उनको एक तो कारण के बेसिस पर, एक कंजेनाइटल हर्निया यानी जन्मजात हर्निया होते हैं, छोटे बच्चों में नाभि पर या फिर जांग के ऊपर हर्निया पाया जाना, ये कंजेनाइटल हर्निया होते हैं। दूसरे एक्वायर्ड हर्निया में उनकी लोकेशन के मुताबिक, और कुछ इंसिजनल हर्निया होते हैं, इंसिजनल हर्निया यानी अगर पहले कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसके चीरे जहां पर लगाया गया था वहां पर पेट की मांसपेशियों की कमजोरी के कारण हर्निया होता है।
0: फिर कॉलर है, एक फोन लाइन पर बात करते हैं। हेलो
2: हेलो
0: हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, बताइए। गुड मॉर्निंग।
2: नमस्कार मैडम
0: जी, नाम बताइए।
2: मैं कमलेश बोल रहा हूँ, मैम बटियाड़ा से।
0: जी, डॉक्टर साहब से प्रश्न कीजिए, क्या आपको परेशानी है? जी
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: जी नमस्कार कमलेश जी।
2: सर जी मैं बटियाड़ा से बोल रहा हूँ।
1: जी जी बताइए।
2: मेरा सर जो आप बता रहे हैं ना, तो इसके अलग अलग, तो मेरा जो मतलब जांघ और कमर के बीच में है ये।
1: अच्छा जी,
2: तो इसमें मतलब ऐसे सूजन सी लेंथ ऐसे लंबी थी ना जैसे,
1: जी हाँ,
2: तो कुछ टाइप की सूजन रहती है, लेकिन उसमें पेन वगैरह कुछ नहीं है, कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है,
1: जी,
2: पेन नहीं है उसमें अभी तक। वो इतना ज्यादा भी नहीं है जैसे मतलब ये समझ लो थोड़ा जैसे उंगली के माफी कैसे थोड़ा सा सूजन सी रहती है।
1: जी कमलेश जी
2: जी,
1: देखिए कई बार इसमें दर्द नहीं भी होता है, फिर भी अगर सूजन है जिस जगह पर आप बता रहे हैं तो निश्चित तौर पर हर्निया का ही लक्षण है, और इसमें आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करके इसके इलाज के लिए आगे का जांच करवाएंगे।
2: फाइनल ये है वो ऑपरेट ही होता है इसका या कुछ?
1: जी हाँ कमलेश जी, हर्निया जैसा मैंने बताया एक छेद है, तो छेद किसी दवाइयों से बंद नहीं होता है, उसके लिए ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज होता है।
2: अच्छा, मतलब उसे वो नॉर्मली ऑपरेशन होता है इसका या?
1: हाँ जी हाँ जी, इसको ऑपरेशन बिल्कुल सेफ होता है, इसमें कोई ऐसे डरने की बात नहीं है।
2: हमें मेरे पे ऐसा ना कि पेन नहीं है अभी तक, मैं वाला एक दो जगह वैसे दिखाई, मैं डॉक्टर को तो बोला कि जब तक पेन नहीं है तब तक आपको कोई इतना
1: नहीं। कमलेश जी ऐसा पेन होने का वेट नहीं करते हैं हर्निया के, फिर ज़्यादा बढ़ जाता है तो कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा रहता है, इस तो उस स्टेज तक ना जाएं, बेहतर है कि समय रहते आप अर्ली स्टेज में ही ऑपरेशन करवा लेना बेहतर रहेगा।
2: थैंक यू।

0: प्रभात।
1: ठीक है कमलेश, नमस्कार
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, और बाकी के श्रोता भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। 01892224391 यह है टेलीफोन नंबर। कार्यक्रम है आरोग्यम, जो कि सजीव फोन इन कार्यक्रम है, और आज हर्निया के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में उपस्थित हैं डॉक्टर गौरव गुप्ता। तो डॉक्टर साहब, जैसे लक्षण जब हमें पता लग जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति है, मरीज है, वो जाता नहीं है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए?
1: संगीता, इसमें डॉक्टर को से कंसल्ट तो जल्दी ही कर लेना चाहिए। कुछ हर्निया निश्चित तौर पर खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन कौन सा हर्निया खतरा कर सकता है और कौन सा नहीं, ये आम इंसान के लिए समझ पाना कई बार मुश्किल होता है। तो इसलिए स्पेशलिस्ट से एक बार दिखा करके कंसल्ट करना ज़रूरी है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, लक्षण में किसी तरह का किसी दर जगह पर पेट में खिंचाव वाला दर्द होना और या सूजन आना, ये निश्चित तौर पर हर्निया के लक्षण हैं। तो जैसे ही इस तरह का कोई लक्षण आपको नज़र आता है, तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। फिर ये डॉक्टर पर छोड़ देना होता है कि ऑपरेशन की ज़रूरत अभी है या नहीं,
2: या नहीं। फिर अच्छा, ये लक्षणों के साथ जब मरीज आपके पास आ जाता है, मन बना लेता है कि डॉक्टर के पास जाना है,
1: जी हाँ,
2: तो आप उसकी जाँच किस तरह से करते हैं?
1: हर्निया, संगीता जी, मुख्य तौर पर डॉक्टर की ही डायग्नोसिस होती है, इसमें किसी तरह की जांच की ज़रूरत नहीं होती है। एक सर्जन, एक एक्सपीरियंस सर्जन देख करके ही बता सकता है कि यह हर्निया है या नहीं। बट हाँ, कभी कभी जब कहीं डाउट होता है, तो यूजुअली अल्ट्रासाउंड से ही इसके बारे में पता चल जाता है, उसको कन्फर्म किया जा सकता है
2: जी।
1: और फिर बाकी जाँचें उसके कारणों के लिए और इलाज की तरफ केंद्रित रहती हैं। जी
2: जी, तो ये जो हर्निया है, ज़्यादातर पुरुषों में ही होता है या महिलाओं और बच्चों को भी हो सकता है?
1: जी बिल्कुल, सभी में हो सकता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे, जो सबसे कॉमन हर्निया है वो जांघ के ऊपर का इंग्वाइनल हर्निया होता है, वो पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन महिलाओं में भी प्रेगनेंसी भी और बाकी भी घरेलू कामकाज के चलते कई बार वजन पड़ने से, भार पड़ने से हर्निया होते हैं। और बच्चों में भी, जैसे मैंने बताया, कंजेनाइटल हर्निया काफ़ी कॉमन होते हैं।
2: जी, एक और कॉलर हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो
3: हेलो,
2: नमस्कार जी। जी, नाम बताइए।
3: मैम, मैं राजीव गौरव काका से।
2: जी राजीव जी, पूछिए डॉक्टर साहब से। जी
3: जी डॉक्टर साहब, नमस्कार।
1: जी नमस्कार राजीव जी।
3: डॉक्टर साहब, मुझे ना पेट के निचले हिस्से में पेन है 3-4 मंथ से।
1: अच्छा,
3: एक्चुअली में मैंने टांडा में भी चेक करवाया था, तो वहाँ पे मुझे बताया गया था कि ये आपको कुछ प्रसाद की थैली में सोजिश बताई थी ना जी।
1: अच्छा जी,
3: तो उसके लिए सर कुछ दवाइयाँ दी थी मेरे को, टायरोल LA2 और मेरा हाइप 75। तो सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना?
1: राजीव जी, आपकी उम्र जान सकते हैं?
3: जी सर, मेरी 44।
1: अच्छा राजीव जी, अभी तो वैसे हम हर्निया के बारे में बात कर रहे थे, ये जो दवाइयाँ जैसा कि आप बता रहे हैं और टांडा में जो डायग्नोसिस बताई गई, तो ये पेशाब की थैली से रिलेटेड हो सकती है। तो बिना सारी जांचें और देखे ज़्यादा कुछ कहना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं होगा एग्जैक्टली कि मैं आपको कुछ इसका ट्रीटमेंट के बारे में बता सकूँ। तो आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर से कंसल्ट ही करना पड़ेगा, देख करके ही ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे इसमें कुछ।
3: जी डॉक्टर
1: जी, ठीक है राजीव जी।
2: जी, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, कि ये जो हर्निया है, इसका जो इलाज है, लक्षण है, वो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। कई बार लोग होते हैं ऐसे कि रहने देते हैं, अभी थोड़ा सा ही तो उभार है, हो सकता है ऐसे ही होगा, कुछ खाया होगा इसके कारण होगा, तो वैद्य के पास जाके कोई जड़ी बूटी जैसे बांध लेते हैं, तो ये क्या सही है, होता है उससे कुछ उपचार?
1: नहीं संगीता जी, हर्निया जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये पेट की दीवार में एक छेद है, किसी भी तरह की दवाइयों से, जड़ी बूटियों से ये छेद बंद नहीं होता है। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो हर्बल टी तक निकाल रखी है, बट ये सभी उपचार कोई भी कारगर नहीं है और इससे समय ही वेस्ट होता है। तो

0: और बीमारी बढ़ती जाती
1: बीमारी बढ़ती जाती है। बिल्कुल।
0: एक और कॉलर लाइन पे है, बात करते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, नाम बताइए और अपनी समस्या डॉक्टर साहब से पूछिए।
2: हाँ जी, मैं राजकुमार बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार
1: जी। नमस्कार राजकुमार जी।
2: हाँ जी, जैसे कि मेरे सहयोगी ने बताया, एक ने, कि मेरे को मतलब पेट के नीचे और टांग के ऊपर है ना
1: जी, जी जी
2: तो मेरे को भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं जिस दिन में चलता हूँ ना तो थोड़ा सा मतलब ऐसे साइज बढ़ जाता है और हल्की हल्की दर्द होती है, लेकिन मैं जैसे रेस्ट करता हूँ तो या रात को सोता हूँ तो उसके बाद सुबह मैं बिल्कुल ठीक होता हूँ
1: जी।
2: तो इसको भी हर्निया मानेंगे?
1: बिल्कुल राजकुमार जी, ये हर्निया का टिपिकल लक्षण है कि जब भी आप जोर लगाते हैं कोई दिन भर के कामकाज के बाद में सूजन और ये खिंचाव बढ़ जाता है, और रात को आराम करने के बाद में सुबह पूरी तरह से स्वस्थ महसूस होता है, तो ये निश्चित ही हर्निया का ही लक्षण है। और इसमें आपको समय से डॉक्टर को दिखा करके और इसका ऑपरेशन के लिए तैयारी करनी चाहिए।
2: हाँ जी, तो मेरे को इसको होते मतलब 4 साल हो गए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही है ये।
1: नहीं नहीं राजकुमार जी, और समय के साथ ही जितना ज़्यादा बढ़ जाता है इसका ऑपरेशन उतना जटिल हो जाता है, ऑपरेशन के रिजल्ट्स उतने ख़राब होते हैं और भी जटिलताएं कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा रहता है, तो बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द इसको दिखा करके इसका निवारण करें।
2: जी ठीक है जी, धन्यवाद।
1: ठीक है, नमस्कार राजकुमार जी।
0: जी आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी तरह ही और भी श्रोता कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर है 01-892-224-391। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हर्निया के संबंध में आरोग्यम कार्यक्रम में बातचीत हो रही है, और यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शल्य चिकित्सक डॉक्टर गौरव गुप्ता, और इनसे हम बाकी की जानकारियां साझा करेंगे प्रादेशिक समाचारों के बाद। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 9:20 होने को हैं, थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, रिले की प्रतीक्षा करें।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान करेंगे शुरू। केंद्र ने कर हस्तांतरण की

0: किश्त के रूप में हिमाचल को 193 करोड़ 95 लाख रुपए की दूसरी किश्त जारी करने को दी मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने चंबा में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में आज होंगे शामिल। और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से व्यापक वर्षा का समाचार, आज कांगड़ा मंडी और सिरमौर जिले के लिए वर्षा का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन कार्यक्रम के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट।
1: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है।
0: केंद्र सरकार द्वारा राहत कार्यों व संसाधनों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश को दूसरी किस्त के तहत 193 करोड़ 95 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा तथा नागालैंड को वित्तीय वर्ष 2026-27 की SDRF की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। नड्डा ने परीक्षा के लिए किए गए व्यापक सुरक्षा प्रबंधों की भी समीक्षा की। पेश है ये रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।
0: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आगामी 21 अगस्त से 3 सितंबर तक शिमला में आयोजित होगा। इस संबंध में कल विधानसभा ने अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। 27 अगस्त को निजी सदस्य कार्य दिवस तय किया गया है। 28 से 30 अगस्त तक विधानसभा में अवकाश रहेगा। पठानिया ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही विधानसभा सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन विधानसभा सचिवालय को भेज सकते हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और

0: इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 3 दिवसीय चंबा दौरे पर हैं। अपने चंबा दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री आज चंबा के चौगान में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज व अस्पताल सरोल में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों और विद्यार्थियों से संवाद भी करेंगे। दोपहर बाद मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 2026 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और मेले की शोभा यात्रा में भाग लेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल चंबा जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वर्तमान मॉनसून के दौरान भारी वर्षा और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित शीतला पुल और सुल्तानपुर के राणा मोहल्ला क्षेत्र में प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें इस आपदा से उबरने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा व कल्याण के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन्हीं में से एक शादी हेतु वित्तीय सहायता योजना है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को सलाह विवाह के अवसर पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
1: योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के स्वयं के विवाह पर 51,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आवेदन विवाह के निर्धारित समय के भीतर आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित श्रम कार्यालय में जमा करना होगा। यह सहायता केवल उन श्रमिकों को दी जाती है जो बोर्ड में विधिवत पंजीकृत हो तथा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हो। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर निर्माण श्रमिक परिवारों पर विवाह के दौरान पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। आकाशवाणी के लिए मैं किन्नौर से सुमेश नेगी।
0: उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री आज ऊना जिले के हरोली बस अड्डा परिसर में हिमाचल पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय कार्यालय व ई बस डिपो का लोकार्पण करेंगे। इस कार्यालय के बनने से क्षेत्र में परिवहन सेवाओं के संचालन व प्रबंधन को नई गति मिलेगी। इसके उपरांत उप मुख्यमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग-अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में अधिकांश स्थानों पर मॉनसून की वर्षा हुई है। प्रदेश में भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण 102 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 7 अगस्त तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना रहेगा और इस दौरान अधिकांश स्थानों पर वर्षा होगी। विभाग ने आज कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में, जबकि कल ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और कांगड़ा जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, किन्नौर के शिपकिला से 6 साल बाद भारत चीन के बीच व्यापार शुरू। दिव्य हिमाचल की सुर्खी है, हिमाचल को केंद्र सरकार से मिले 996 करोड़। जबकि पंजाब केसरी लिखता है, 7 आपदा प्रभावित राज्यों को SDRF की 2,117 करोड़ जारी करेगा केंद्र। मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, मॉनसून कमजोर पर नुकसान का आंकड़ा 720 करोड़ रुपए के पार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान करेंगे शुरू। केंद्र ने कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किश्त के रूप में हिमाचल को 193 करोड़ 95 लाख रुपए की दूसरी किश्त जारी करने को दी मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट PG 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में आज होंगे शामिल।

0: और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से व्यापक वर्षा का समाचार। आज कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले के लिए वर्षा का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
2: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। और प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आरोग्यम कार्यक्रम में। और आरोग्यम कार्यक्रम में आज हर्निया के संबंध में जानकारी देने हेतु हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं शल्य चिकित्सक डॉक्टर गौरव गुप्ता। और श्रोता इस संबंध में फोन कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर है 01-892-224-391। तो डॉक्टर साहब, हर्निया के संबंध में बहुत सारी बातें हमने जानी है कि जो हर्निया हो जाता है तो उसका इलाज जो है वो संभव नहीं है। तो अब बात आती है सर्जरी की, है ना। तो श्रोताओं के मन में हमेशा डर रहता है कि ऑपरेशन जो है वो कैसा होगा। तो इसका इलाज दवाओं से संभव नहीं है, तो सर्जरी है, तो सर्जरी कितने प्रकार की होती है और कब की जा सकती है?
5: जी संगीता जी, सर्जरी अभी बहुत सारी अत्याधुनिक शैलियां उपलब्ध हैं। तो जो हमारी पारंपरिक ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी होती थी जिसमें चीरा लगा करके ऑपरेशन किया जाता था
4: जी।
5: तो जैसा मैंने बताया, ये हर्निया बेसिकली एक छेद होता है
4: जी।
5: तो ऑपरेशन में छेद को बंद किया जाता है टांके लगा करके, और ये दोबारा ना हो जाए इसलिए जाली यानी मैश डाली जाती है जो कि पेट की मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है उनको, ताकि ये दोबारा ना हो जाए
4: जी।
5: ये ओपन सर्जरी होती है इसकी, और लैप्रोस्कोपिक यानी दूरबीन से, और अब रोबोटिक सर्जरी भी इसकी उपलब्ध है
4: जी। तो डॉक्टर साहब, एक कॉलर है फोन लाइन पे
5: जी।
4: हेलो हेलो
6: जी, नमस्ते।
4: नमस्ते जी, बताइए नाम।
6: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से
4: जी। पूछिए प्रश्न
6: जी। किस विषय में जानकारी लेना है?
4: आपने सुना नहीं है प्रोग्राम आरोग्यम कार्यक्रम में हर्निया के संबंध में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर साहब
6: जी। मैं बताना चाहूँगा, मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम आज सही नहीं सुनाई दे रहा है
4: जी। तो आपको हर्निया के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं
6: जी। जैसे कि पूछना चाहेंगे, जैसे हर्निया का जो रोग होता है उसमें शरीर का कौन सा हिस्सा मतलब प्रभावित होता है, और इस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए?
5: जी इसमें आमतौर पर सारे ज़्यादातर हर्निया पेट के ही होते हैं। तो पेट में अगर किसी तरह की आपको सूजन नज़र आ रही है, किसी तरह का खिंचाव का दर्द महसूस हो रहा है, तो उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करके और उसका इलाज करवाना चाहिए। रोकथाम के लिए आप जो भी कारण इसके होते हैं, जैसे कि जोर लगाना लैट्रिन के लिए, पेशाब के लिए, या फिर लंबे समय तक खांसी, इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना होता है
6: जी। सर
5: जी
4: जी, कॉल किया उसके लिए धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि जो सर्जरी है वो आपने बताई, आजकल पहले तो दो प्रकार की थी, अब रोबोटिक
5: सर्जरी भी उपलब्ध है जी।
4: जी तो दोनों या तीनों जो सर्जरी है उनमें अंतर क्या है?
5: जो हमारी ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी, चीरे वाली सर्जरी होती थी उसमें,
4: एक कॉल और आ रही है
5: जी, जी। जरूर।
4: हेलो हेलो हेलो
7: हेलो,
4: हाँ जी, कौन साहब बात कर रहे हैं, बोलिए। परमजीत जी बोलिए, पूछिए क्या प्रश्न है आपका।
7: हेलो
5: हेलो जी, बताइए परमजीत जी, क्या सवाल है?

0: जी, ये सिग्नल में नहीं थे और शायद इसलिए इनकी कॉल भी कट चुकी है। कॉल एक और आ रही है, बात कर लेते हैं। हेलो,
1: हेलो संगीता जी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी। हाँ जी
1: डॉक्टर, आपको भी नमस्कार।
2: जी, नमस्कार
1: देखिए, मेरा अब आसान सा थोड़ा सा प्रश्न है।
0: जी।
1: आप
0: नाम
1: जो
0: के
1: बता रहे
0: साथ
1: हैं
0: बताइए, नाम भी बताइए अपना।
1: नियम बता
0: जी
1: रहे हैं इसके बचाव, और
0: जी
1: एक इसका कारण भी बता देंगे आप। और एक मेरी संशय है कि एक तो हर्निया होता है, दूसरा बोलते हैं आम भाषा में वे गदूदा हो गई। तो
2: अच्छा,
1: एक ही बीमारी के दो नाम है, ये दोनों बीमारियां अलग अलग हैं।
2: आपका नाम बताएंगे प्लीज?
1: हाँ जी,
2: आपका नाम बता सकते हैं?
1: मैं पंजाब से बोल रहा हूँ जी, महेंद्र सिंह राणा।
2: अच्छा जी, नमस्कार महेंद्र जी। महेंद्र जी, कारण और बचाव के लिए तो अभी हमने बात की ही, और जैसा कि आपने पूछा कि हर्निया और गदूद दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ, गदूद बढ़ने के कारण कई बार हर्निया बन जाता है। गदूद यानी प्रोस्टेट, ये एक तरह की ग्रंथि होती है जो कि हमारी पेशाब की नली के आसपास होती है। इसके बढ़ जाने से पेशाब रुकने लगती है, और पेशाब के लिए जब आप जोर लगाते हैं लंबे समय तक, तो उससे हर्निया बन जाता है। तो ये दो अलग अलग बीमारियाँ हैं जी।
1: ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप बताएंगे, सब कुछ सुनते रहेंगे।
0: जी
1: जी
0: जी
1: जरूर।
0: बिल्कुल, सुनते रहिए, और कॉल किया उसके लिए धन्यवाद आपका। जी, तो बात हो रही थी सर्जरी की, जो
2: जी
0: कि तीन तरह की उपलब्ध है हमारे
2: जी हाँ
0: पास,
2: संगीता
0: तो
2: जी,
0: अंतर क्या-क्या है इन तीनों में?
2: ओपन सर्जरी में चीरा थोड़ा बड़ा लगता है,
0: जी
2: और हम आगे से सारी मसल्स को, जहाँ पर हमें जाली डालनी है
0: जी
2: वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें सारी कुछ मसल्स की लेयर भी कट करनी पड़ती हैं। बेसिकली चीर फाड़ थोड़ी ज़्यादा करनी होती है,
0: जी
2: और अंदर टाँके ज़्यादा आते हैं
0: जी
2: अंदर और बाहर।
0: जी
2: इसके कंपैरिजन में जो हम लैप्रोस्कोपिक या दूरबीन वाली ऑपरेशन की बात करें, तो
0: जी
2: इसमें छोटे छोटे से कुछ छेद किए जाते हैं, की होल सर्जरी भी कहलाती है।
0: जी
2: उससे हम अंदर ही अंदर डायरेक्टली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जाली डालनी है, और
0: जी
2: हर्निया को अंदर करके और वहां पर जाली डाल दी जाती है।
0: जी
2: लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अगर देखा जाए, जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, तो उसमें दोनों में दोनों के रिजल्ट्स बराबर हैं।
0: जी
2: लेकिन हाँ, ज़रूर ये बात निश्चित है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में इसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है,
0: जी
2: मरीज़ जल्दी अपने काम पर लौट सकता है, दर्द कम होता है, चीरे के निशान कम आते हैं,
0: जी
2: ये
0: जी
2: सारे फायदे हैं।
0: जी
2: रोबोटिक सर्जरी भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की ही एक एडवांसमेंट है। इसमें प्रिसीजन ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा एग्जैक्ट तरीके से चीज़ों को बंद किया जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ा हमारे देश में रोबोटिक सर्जरी काफ़ी महंगी है, सबकी
0: जी
2: पहुंच से थोड़ा बाहर
0: बाहर
2: है
0: है जी, लेकिन आ चुकी है,
2: जी
0: इसका फ़ायदा मरीज़ उठा सकते हैं।
2: ज़रूर
0: जी, तो ये तीन तरह की सर्जरी आपने बताई, तो मरीज़ के लिए कौन सी सर्जरी जो है वो सबसे अच्छी रहेगी?
2: जी, इसमें मरीज़ मरीज़ पर डिपेंड करता है,
0: जी
2: और डेफिनेटली इस पर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बेहतर है,
0: जी
2: क्योंकि उसमें जल्दी आराम आ जाता है। लेकिन कुछ हर्निया ज़्यादा जटिल जो होते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं,
0: जी
2: उसमें कभी कभी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है।
0: जी
2: तो ये जैसा वही बात है कि मरीज़
0: जी
2: पर निर्भर करता
0: निर्भर
2: है, डॉक्टर
0: जी
2: देख करके फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी सर्जरी बेहतर होगी मरीज़ के
0: जी
2: लिए।
0: कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ को दोनों जांघों की तरफ उभार आते हैं,
2: जी
0: तो क्या ये सर्जरी एक बार में ही हो जाती है या अलग-अलग
2: जी हाँ,
0: से आप
2: निश्चित तौर पर
0: बुलाएंगे?
2: एक एक ही सिटिंग में, एक ही बार में दोनों
0: जी
2: तरफ के ऑपरेशन भी हो जाते
0: जी
2: हैं। खासकर जब भी हम बात करते हैं दोनों तरफ के हर्निया हैं, जांघ के
0: जी
2: हर्निया,
0: जी
2: तो उसमें दूरबीन वाला ऑपरेशन डेफिनेटली बेहतर होता है, क्योंकि उसमें उन्हीं तीन छोटे होल से दोनों तरफ का ऑपरेशन हो जाता है।
0: जी
2: यानी कि जब हम एक तरफ का ऑपरेशन करते हैं, तो ये मान लीजिए कि दूसरी तरफ का ऑपरेशन आधा हमने साथ में पहले ही कर दिया है,
0: जी
2: तो दोनों तरफ के ऑपरेशन में समय भी कम लगता है, और दोनों तरफ के चीरे खुले, ओपन सर्जरी में दोनों तरफ बड़े चीरे लगते हैं, और
0: जी
2: दूरबीन वाले में एक ही, उन्हीं चीरों से दोनों तरफ ऑपरेशन हो जाता है।
0: जी हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: हाँ जी, नमस्ते जी।
1: नमस्कार
0: जी
1: जी, मैं शिवेन बोल रहा हूँ लंच से। जी
0: जी शिवेन जी, पूछिए अपना प्रश्न डॉक्टर साहब से।
1: हर्निया के शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं डॉक्टर जी?
2: शुरुआती सिम्टम्स में पेट में खिंचाव होना, हल्की सी सूजन आना, खासकर जब भी आप किसी तरह का जोर लगाते हैं, जैसे खांसी हो गया या भारी वजन उठाना, उस समय पेट में थोड़ा

0: उभार नज़र आना, कोई सूजन नज़र आना, ये सारे शुरुआती सिम्टम्स होते हैं। और कई बार केवल सिर्फ खिंचाव का दर्द ही इसका शुरुआती लक्षण होता है।
1: जी, थैंक यू जी।
0: ठीक है शिवेन जी, नमस्कार।
2: ठीक है शिवेन जी, आपने प्रश्न किया और इसी तरह और भी हमारे श्रोता प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 01-892-224-391 और आज हम बात कर रहे हैं हर्निया के संबंध में। तो डॉक्टर साहब, ऑपरेशन जब हो जाता है या ऑपरेशन करने में पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कितना समय लगता है
0: ऑपरेशन। संगीता जी, जैसे मैंने बताया, हर्निया अलग अलग तरह के होते हैं और करने की अलग अलग विधि होती है
2: जी।
0: तो उसके हिसाब से ऑपरेशन के समय में अंतर रहता है
2: जी।
0: जो अभी हम ज़्यादातर जो कमर के नीचे वाले हिस्से में हर्निया की बात कर रहे हैं तो ओपन सर्जरी हो चाहे लैप्रोस्कोपी, दोनों में आमतौर पर 30 से 45 मिनट में एक तरफ के हर्निया का ऑपरेशन हो जाता है।
2: और मरीज को छुट्टी सेम डे हो जाती है?
0: छुट्टी सेम डे नहीं, जनरली हम अगले दिन करते हैं क्योंकि ऑपरेशन बेहोशी में होता है, या तो कमर पे सुन करके आधी बेहोशी में या फिर पूरी बेहोशी में, तो एक दिन ऑब्जर्वेशन के लिए रख करके ज़्यादातर अगले दिन तक छुट्टी की जाती है
2: जी। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बरसात का मौसम है तो डर लगता है कि ऑपरेशन करवाएंगे तो ऑपरेशन ठीक नहीं रहेगा, टांके पक जाएंगे, तो ये जो धारणा है वो कितनी सही है?
0: नहीं संगीता जी, ये पुराने समय में ये धारणा ज़्यादा महत्व रखती थी, जिस समय हमारे पास इसके इन्फेक्शन की रोकथाम के तरीके कम थे। आजकल ऑपरेशन थिएटर्स में पूरी स्टेरिलिटी का ध्यान रखा जाता है और तो उसके कारण ऑपरेशन के दौरान भी किसी तरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम है और ऑपरेशन के बाद में भी कुछ बेसिक सी हाइजीन जो हम रखते हैं अगर वो अच्छी तरह से रखी जाए तो आप 12 महीने किसी भी समय ऑपरेशन करवा सकते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये और एक एडवांटेज रहता है कि क्योंकि चीरे छोटे होते हैं तो इसीलिए इन्फेक्शन का रिस्क थोड़ा और कम हो जाता है।
2: बहुत बढ़िया। और एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बातचीत को जारी रखेंगे।
0: जरूर।
3: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
4: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: आरोग्यम कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से और इस कार्यक्रम में श्रोता फोन कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01-892-224-391 और आज हम बातचीत कर रहे हैं हर्निया के संबंध में। तो डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन का जो नाम होता है ना वो बहुत डरावना जैसा नाम होता है
0: जी।
2: तो डरते हैं सारे लोग, मरीज जो है डर जाता है कि अभी रहने देते हैं, अभी नहीं जाएंगे, तो इलाज नहीं करवाते हैं, अनदेखा कर देते हैं, चलो कोई नहीं आज रेस्ट कर लेते हैं तो फिर हम ठीक हो जाएंगे या ठीक हो रहे हैं, कई बार रेस्ट करते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते हैं तो ठीक लगता है उन्हें, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं?
0: जी संगीता जी, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। बहुत सारे मरीज आते हैं, सबको ये सवाल रहता है ऑपरेशन ना करवाएं तो क्या दिक्कत होगी। देखिए, ऑपरेशन ज़रूरी इसलिए है कि इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ना जाएं। जब भी, जैसा कि मैंने बताया, हर्निया पेट की दीवार में छेद है जिससे कि जब भी आप जोर लगाते हैं तो आते उस छेद से बाहर को आ जाती हैं
2: जी।

0: कई बार छेद छोटा होता है और बाहर जो थैली बन गई है हर्निया की वो ज़्यादा
1: जी
0: बड़ी होती है।
1: जी
0: तो छोटे छेद से अगर थैली में ज़्यादा आंतें आ जाती हैं या पेट के फैट आ जाता है
1: जी
0: तो वो वापस नहीं जा पाता है, वो वहाँ पर आकर के फंस जाता है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, बहुत ख़तरनाक सिचुएशन हो जाती है। आंतें अगर बाहर फंस गई, हर्निया
1: जी
0: फंस गया और वो अंदर नहीं जा पाए
1: जी
0: तो कुछ घंटों के अंदर ही उस हिस्से में जो बाहर आए हैं, जो आते आई हैं, उनमें सड़न हो सकती है।
1: जी
0: और ऐसे में जो एक छोटा सा ऑपरेशन था हर्निया का, वो बड़े खतरे में बदल जाता है। सड़न होने से शरीर में इन्फेक्शन फैलना, और कई बार हमें बड़ा चीरा लगा करके, पेट ओपन करके आंतों को काटना पड़ सकता है।
1: जी
0: तो एक सरल
1: बहुत
0: सा जो इलाज था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है,
1: जी गंभीर
0: इसीलिए
1: परिणाम हो सकते हैं जी
0: बिल्कुल इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि समय से ऑपरेशन करवा लें तो बेहतर रहता है, कोई खतरा होने के पहले। इसके अलावा एक और हर्निया में खास बात यह है कि समय के साथ हर्निया बढ़ता है, कभी भी
1: जी
0: ऐसा नहीं होगा कि आप वेट कर लेंगे तो कम हो जाएगा।
1: जी
0: जितना ज़्यादा बड़ा डिफेक्ट हो जाता है उतना ऑपरेशन के जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम हैं,
1: जी
0: उन वो थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। कई बार बहुत बड़े हर्निया में अगर ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें रिकरेंस यानी हर्निया दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
1: जी एक कॉलर भी है, फोन लाइन पर बात कर लेते हैं उनसे।
0: जी
1: हेलो हेलो,
2: हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी।
1: नमस्ते जी। हाँ जी, कौन साहब बात कर रहे हैं?
2: राजेंद्र सिंह सिपहिया, हमीरपुर के गांव खनसरा से। हाँ
1: जी, तो हर्निया के संबंध में डॉक्टर साहब से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी
2: डॉक्टर साहब जी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार राजेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है आपका।
2: मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं पहले रेडियो सुन नहीं पाता, हर्निया चीज है क्या और इसके होने के कारण क्या है?
0: राजेंद्र जी, हर्निया पेट की आपकी दीवार में एक छेद है, एक कमज़ोरी है, जिससे कि जब भी आप जोर लगाते हैं किसी तरह का तो उससे आपके पेट के अंदर के अंग आंतें बाहर को झांकने लगती हैं। और कारण इसका कोई निश्चित कारण में बस यही आता है कि किसी भी तरह का लंबे समय से जोर लगाने पड़ते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा भारी वज़न उठाते हैं, लंबे समय से खांसी, कब्जी, पेशाब की दिक्कत, इन कारणों से हर्निया बन सकता है।
2: ठीक।
1: जी, आपने जो रेडियो सेट है बहुत देर के बाद आपने ऑन किया होगा, तभी आप सुन नहीं पाए, नहीं तो शुरू से ही हम ये बात कर रहे हैं कि
2: हाँ
1: कैसे
2: जी,
1: होता है,
2: यहाँ
1: क्या
2: हाँ
1: रोकथाम है। जी, फिर भी
2: जी, हाँ
1: चलिए,
2: जी,
1: कॉल
2: बताए।
1: किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: जी, इसी तरह और भी श्रोता फ़ोन कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर है 01-892-224-391। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे ऑपरेशन अगर हम ना
0: जी
1: करवाएं, डॉक्टर मरीज ना आए तो क्या क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
0: जी
1: जी, तो अगर अब ऑपरेशन करवा लिया है, हो गया ऑपरेशन, तो कितने दिनों तक आराम की आवश्यकता होती है?
0: इसमें देखिए, मरीज़ का चलना फिरना, रोज़मर्रा के जो छोटे मोटे काम हैं, वो
1: जी
0: ऑपरेशन के अगले दिन से ही सारे शुरू कर सकते हैं, उसमें
1: जी
0: हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं रहती है।
1: जी
0: भारी वज़न उठाना, भारी काम करना
1: जी
0: या रनिंग या हैवी एक्सरसाइजेज, इन सब के लिए हम 6 हफ्ते के रेस्ट के लिए बोलते हैं।
1: जी
0: नॉर्मल अगर किसी का सिटिंग जॉब है, ऑफिस जॉब है या
1: जी
0: छोटा मोटा काम है,
1: जी
0: वो ज़्यादातर हम 8 से 10 दिन में टांके खोलते हैं, उसके बाद वो अपना जॉब वापस शुरू कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे अगर आपके काम में भारी वज़न उठाना, खेती
1: जी
0: किसानी,
1: जी
0: इसके लिए थोड़ा सा कम से कम 1 से 1.5 महीने रुकना बेहतर रहता है।
1: जी तो एक और कॉलर लाइन पे हैं, बात कर लेते हैं उनसे भी। हेलो हेलो हेलो, जी ये बात नहीं कर रहे हैं, फ़ोन तो मिल गया था इनका। चलिए जी, तो जब ऑपरेशन हो जाता है तो आपने कहा कि दूसरे दिन आप छुट्टी दे देते हैं मरीज़ को,
0: जी हाँ, ज़्यादातर मरीज़ों की अगले दिन छुट्टी कर दी
1: कर दी
0: जाती है।
1: जाती
0: जी
1: है,
0: हाँ
1: लेकिन जो टांके हैं उन्हें खुलवाने के लिए आपके पास 7 या 8 दिन के अंदर
0: हाँ जी,
1: आना
0: आठ से
1: पड़ता
0: दस दिन
1: है।
0: में जी हाँ
1: जी, चलिए, तो जब वो मरीज़ घर जाता है तो उसे क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
0: सावधानी केवल इतनी रहती है कि जो ऑपरेशन का घाव है
1: जी
0: उसकी सफाई रखनी होती है, जहाँ ज़रूरत होती है तो दोबारा ड्रेसिंग, या अगर बस उसमें किसी तरह की गंदगी ना लग पाए, अगर पसीने वगैरह से उसमें इन्फेक्शन

0: ना बन पाए, सिर्फ इतना ही रहता है। बाकी भारी वजन उठाना या फिर जो भी कारण होते हैं इसके, जैसे कि हमने डिस्कस किया लंबे
1: जी
0: समय से खांसी, पेशाब या फिर कब्जे की दिक्कत, तो
1: जी
0: इनका हम पहले ही ऑपरेशन से पहले ही उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ताकि ऑपरेशन के बाद में इन दिक्कतों से हर्निया दोबारा होने की नौबत ना आए, ऑपरेशन खराब ना हो।
1: जी एक और कॉलर फोन लाइन पे है। हेलो,
2: जी नमस्कार मैडम जी,
1: नमस्ते जी, नाम
2: डॉक्टर
1: बताइए।
2: साहब को भी नमस्ते
0: जी
2: जी।
0: नमस्कार जी।
1: जी नाम बताइए।
2: वो लड़का है जी, 24-25 साल का है, तो उसका ऑपरेशन किया था 4-5 साल पहले हर्निया का ही। तो
0: अच्छा जी,
2: जी उसका कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहा वैसे जी।
0: आपका नाम बताएंगे?
2: संतोष
0: जी संतोष जी, देखिए ऑपरेशन किस तरह का हुआ था, कमर पे सुन करके हुआ था या
2: हाँ
0: पूरे
2: जी,
0: बॉडी
2: वही
0: में?
2: वही कमर पे इंजेक्शन लगा के किया था जी।
0: ज़्यादातर लोगों को ये धारणा रहती है कि कमर पर अगर टीका लगाया था तो उसके कारण दर्द है, लेकिन जो स्पाइनल एनेस्थीसिया, जो कमर पर इंजेक्शन लगाया जाता है, वो पूरी तरह से सेफ़ होता है, और कमर दर्द के और भी बहुत कारण हो सकते हैं, तो उसके लिए एक बार हड्डी वालों को दिखा करके चेक करवा लेना चाहिए। कई बार रीढ़ की हड्डी में किसी तरह की कमजोरी या मांसपेशियों का खिंचाव, ये ज़्यादा कॉमन कारण है। उसको हर्निया से या हर्निया के ऑपरेशन से जोड़ना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए बेहतर रहेगा कि एक बार आप हड्डी वाले डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके उनसे परामर्श लें।
2: ठीक है
0: जी
2: जी, ओके जी, धन्यवाद
0: ठीक
2: जी
0: है,
2: आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जी। और भी श्रोता कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर है 01-892-22-4391। तो डॉक्टर साहब, अगर आप चाहें तो आपकी पसंद का कोई गीत हम सुनवा सकते हैं जी।
0: जी संगीता जी, मेरी बेटी का पसंदीदा गाना है, अगर आप लगा सकें,
1: जी
0: काला पानी मूवी से, अच्छा जी मैं हारी बिया मान जाओ ना।
1: जी चलिए सुनते हैं इस गीत को।

समझे।

0: आरोग्यम कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। हेलो हेलो हेलो जी, बात नहीं हो पा रही है। हाँ जी, हुई तब तक कट गया फ़ोन इनका। जी आप दोबारा कॉल कीजिए 01-892-224-391, ये है टेलीफोन नंबर। और डॉक्टर साहब, अब हम ये बात कर रहे हैं करेंगे कि हर्निया जो एक बार ऑपरेशन कर लिया, ठीक हो गया, तो क्या दोबारा होने के चांसेस हैं?
1: जी हाँ संगीता जी, इसमें ऑपरेशन के बाद भी दोबारा होने का चांस रहता है, लेकिन वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं। यदि समय पर ऑपरेशन करवा लिया जाए, अच्छी तरह से ऑपरेशन हो, पुराने समय पर जब जाली नहीं डाली जाती थी तब हर्निया दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा रहते थे। अब तकरीबन हर ऑपरेशन में, हर्निया के ऑपरेशन में

0: जाली ज़रूर डाली जाती है, इससे दोबारा होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे हैं जाली, तो ये इसमें भी कोई प्रकार होते हैं जाली के, या फिर कोई एक फिक्स होती है फिर वही
0: नहीं
1: डलती है जाली? जी
0: जी हाँ, इसमें क्वालिटी थोड़ी अलग अलग रहती हैं, बट जो आमतौर पर जो जाली डाली जाती हैं सभी अच्छी रहती हैं। जो हम दूरबीन वाला ऑपरेशन करते हैं
1: जी
0: खासकर नाभि के हर्निया के लिए या पेट के हर्निया के लिए, एक तो
1: जी
0: जो नीचे के पैरों के ऊपर का, जांघ के ऊपर का हर्निया, उसमें तो वही जाली डलती है,
1: जी
0: लेकिन पेट के नाभि के हर्निया जो होते हैं या इंसिजनल हर्निया जो होते हैं
1: जी
0: उसमें जाली थोड़ी अलग तरह की डलती है, जो कि आंतों से कांटेक्ट में आ करके भी उनसे चिपके ना, तो वो
1: जी
0: थोड़ी कॉस्टली होती है, इसलिए उसका दूरबीन वाला ऑपरेशन थोड़ा महंगा
1: महंगा
0: पड़ता है।
1: होता है
0: जी
1: जी। तो डॉक्टर साहब, एक कॉलर और हैं लाइन पे, बात करते हैं। हेलो हेलो,
2: जी नमस्कार जी। जी
1: नमस्ते जी, नाम बताइए।
2: मेरा नाम ब्रिजलाल है, मैं मंडी कोटली से बोल रहा हूँ।
1: जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी
2: नमस्कार,
1: डॉक्टर गौरव गुप्ता से आप प्रश्न कीजिए। जी
2: नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: जी नमस्कार, बताइए ब्रिजलाल।
2: सर, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे आपका जो विषय आज आ रहा है, क्या क्या ये प्रोस्टेट से भी संबंधित है?
0: नहीं, अभी एक और श्रोता
2: सर
0: ने ये
2: मैं
0: सवाल पूछा था,
2: जी,
0: प्रोस्टेट
2: मैंने
0: अलग
2: सुबह
0: बीमारी
2: सुना
0: रहती
2: था मैंने।
0: है।
2: हाँ जी, आपने बताया था,
0: जी जी
2: लेकिन मैं अपनी शंका के लिए बता देता हूँ कि थोड़ा प्रोस्टेट की शिकायत है मुझे भी। मैंने नेर चौक लालू आदर्श शास्त्री मेडिकल कॉलेज में चेक कराया,
0: अच्छा जी,
2: तो उसमें दवाई तो लगाई थी मैंने, 22-23 चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम तो मुझे है नहीं ऐसे पेशाब की। जैसे
0: जी
2: चेयर पर बैठते हैं ना जी,
0: हाँ जी
2: चेयर पर बैठने से, लेकिन बड़ी देर तक बैठने से, या सीट, बस की सीट में बैठे तब थोड़ा पतले धार में आता है, वैसे तो खुला आता है साहब।
0: अच्छा जी
2: हाँ जी, तो फिर उन्होंने बोला कि आप यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए नेत्र
0: जी
2: चौक
0: हाँ,
2: के पास।
0: प्रोस्टेट की दिक्कत अलग रहती है, गदूद की दिक्कत अलग होती है। हाँ, कई
2: और
0: बार ये
2: लास्ट
0: होता है
2: में
0: कि मरीज़ को गदूद की, प्रोस्टेट की दिक्कत और हर्निया दोनों साथ में हो सकता है, लेकिन दोनों का इलाज अलग है।
2: हर्निया की तो नहीं है सर दिक्कत, ये तो प्रोस्टेट है, थोड़ा इतनी ज़्यादा भी नहीं है, ये तो कूड़ा पेशाब
0: जी
2: होता है वैसे तो। पर जब बैठते हैं चेयर पे ना जी,
0: जी हाँ
2: बड़ी बड़ी देर बैठना होता है
0: हाँ जी
2: तब,
0: हाँ जी
2: सिर्फ चेयर
0: जी
2: में
0: तो
2: आप नीचे धरती
0: उसमें
2: बैठना।
0: दवाइयाँ ज़रूर, जैसा यूरोलॉजिस्ट आपको बताते हैं, दवाइयाँ शुरू
2: जी
0: करनी
2: जी
0: होती हैं।
2: हाँ जी
0: बहुत
2: सर,
0: लंबे समय तक अगर दिक्कत बनी रहे तो फिर
2: हाँ
0: ऑपरेशन की
2: बोला
0: ज़रूरत हो
2: उन्होंने, या तो
0: सकती
2: बोले ऑपरेट करा लो या तो लाइफ टाइम नेर चौक में ना जी,
0: है।
2: लाइफ टाइम दवाई लो। फिर उन्होंने बोला कि आप बिलासपुर में दिखाइए, एम्स में वहाँ है डॉक्टर, यहाँ तो यूरोलॉजिस्ट है नहीं नेर चौक में।
0: जी,
1: आपको अपनी शंका का समाधान मिल गया होगा जी, कॉल किया, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, समय बहुत ही कम रहा है हमारे पास, तो हम अंत में ये जानना चाहेंगे कि अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या में हम क्या क्या बदलाव लाएं ताकि हर्निया के खतरे से बचा जा सके।
0: जी
1: जी
0: संगीता जी, एक हेल्दी बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। इसके
1: जी
0: लिए जो हमें कई सारे तरीके पता हैं, हम आमतौर पर इनको नज़रअंदाज कर देते
1: जी
0: हैं। बॉडी को अच्छी तरह हाइड्रेटेड रखना, एक बैलेंस डाइट लेना,
1: जी
0: खाने में हर तरह की चीज़ें लेना, और एक्सरसाइज सबसे ज़रूरी है। एक्सरसाइज में हर्निया के प्रिवेंशन में अगर बात करें तो कोर मसल एक्सरसाइजेज होती हैं, यानी हमारे पेट की मांसपेशियों की एक्सरसाइजेज होती हैं।
1: जी
0: आजकल ऑनलाइन यूट्यूब पर इस तरह की बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और जब भी एक्सरसाइज करें तो थोड़ा ध्यान रखना होता है एक्सरसाइज के दौरान। आप अपनी सांस पर कंट्रोल रखना कि
1: जी
0: किस समय आपको सांस बाहर छोड़नी है, अगर सही तरीके से किया जाए तो हम अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आज आपने हम सबको हर्निया के बारे में बहुत ही व्यवहारिक और सही जानकारी दी, और सबसे बड़ी सीख यही है कि शरीर में कहीं भी असामान्य उभार या दर्द दिखे तो उसे छिपाएं नहीं और डॉक्टर से मिलने में संकोच न करें। सही समय पर लिया गया फैसला आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने इस विषय में बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। खूबसूरत से गीतों का कारवा लेकर हाजिर हो चुकी है आप सभी की रेडियो दोस्त प्रवीण, और प्रवीण की तरफ से आप सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमारी ओर से आपको प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म बरसात के इस खूबसूरत से गीत के साथ।

अब हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं बेवफा सनम फिल्म से एक और खूबसूरत संगीत नितिन मुकेश की आवाज। संगीत से सजाया है निखिल विनेनी और बोल हैं योगेश सादिके।

गीतों का कारोबार, ये कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अपनी रेडियो दोस्त प्रवीण के साथ। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं बलमा फिल्म से ये गीत, आशा भोंसले की आवाज, समीर की बोल, नदीम श्रवण का संगीत है।

छुपा रुस्तम इस फिल्म से अब एक और गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। अलका याग्निक की दिलकश आवाजें हैं, आनंद मिलिंद का संगीत, बोल आनंद बख्शी के

अब हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं बधाई हो इस फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत। अखिल सचदेवा की आवाज, संगीत रोचक कोहली का और बोल कुमार।

इसी अंतिम गीत के साथ हमारा आज का गीतों का कारवा ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 होने को हैं और हम पुनः हाजिर हो चुके हैं पहाड़ों के सुर ये कार्यक्रम लेकर। पहाड़ों के सुर इस कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस लोक भजन में हमारे श्रोता सुन रहे हैं बलदेव सिंह व साथियों की आवाज को।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: पहाड़ों के सुर, ये कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन रहे हैं

पहाड़ों के सुर ये कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और इस लोकगीत में आप सुन रहे हैं नरोत्तम कुमार की आवाज को।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रिले के लिए करें बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट।
1: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन

0: किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कई अहम फैसले किए हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अब उद्योगों के लिए पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र वन टाइम आधार पर जारी किए जाएंगे और यदि संबंधित विभाग 30 दिनों के भीतर मंजूरी नहीं देते हैं तो उसे स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर उद्योग विभाग की प्रस्तुति के बाद ये निर्णय लिया गया है। पहले विभिन्न विभागों से एनओसी लेने में काफी समय लगता था, जिससे उद्योगों को परेशानी होती थी। अब सभी विभागों को समयबद्ध तरीके से मंजूरी देने के निर्देश दिए गए हैं।
2: एनवायरमेंट क्लियरेंसेस हैं या पॉल्यूशन क्लियरेंसेस हैं, उसमें बहुत लंबा समय लगता था। मुख्यमंत्री जी ने एनवायरमेंट डिपार्टमेंट और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि जितनी भी पेंडेंसी है उसको क्लियर किया जाए, टाइम बाउंड फेज में उसको क्लियर किया जाए। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो एनओसीज है या सीओपी कंसेंट ऑपरेट है, कंसेंट एस्टैब्लिश है, वो डीम्ड समझी जाएगी। विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड अगर वो नहीं होगा तो डीम्ड समझी जाएगी, और अगर कोई ऑब्जेक्शन भी लगाना होगा इन बोर्ड्स उनको उनको तो वन टाइम में जो भी ऑब्जेक्शन लगाना है वो लगाया, क्लियर उसको क्लियरेंसेज जो है तुरंत उसको दिए जाए।
1: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 3 दिवसीय चंबा दौरे पर हैं। अपने चंबा दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री आज चंबा के चौगान में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज व अस्पताल सरोल में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों और विद्यार्थियों से संवाद भी करेंगे। दोपहर बाद मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला 2026 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और मेले की शोभा यात्रा में भाग लेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री यहां लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे। मुख्यमंत्री का कल शिमला वापस लौटने का कार्यक्रम है। केंद्र सरकार द्वारा राहत कार्यों व संसाधनों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश को दूसरी किस्त के तहत 193 करोड़ 95 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा तथा नागालैंड को वित्तीय वर्ष 2026-27 की एसडीआरएफ की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए एसडीआरएफ के तहत राहत राशि की अग्रिम किस्त जारी किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हार्दिक आभार जताया है। संजय शर्मा ने कहा कि मानसून के इस कठिन समय में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। लाहौल स्पीति के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जिस्पा में 2 दिवसीय लाहौल टूरिज्म फेस्टिवल शुरू हुआ। लाहौल स्पीति इको टूरिज्म सोसाइटी द्वारा आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन विधायक अनुराधा राणा ने किया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
3: लाहौल स्पीति के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जिस्पा में 2 दिवसीय लाहौल टूरिज्म फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ हुआ। लाहौल स्पीति इको टूरिज्म सोसाइटी द्वारा आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन विधायक अनुराधा राणा ने किया। सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत सारंग के स्कूली बच्चों की आकर्षक प्रस्तुति से हुई। इसके बाद लाहौल, लेह, स्पीति, किन्नौर, नेपाल और जांस्कर से आए सांस्कृतिक दलों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन जीत लिया। ये महोत्सव लाहौल स्पीति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को नई पहचान देने का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
4: ये हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11:05 हुए हैं और हम हाजिर हैं पंजाबी गीतों के साथ। पंजाबी गीतों के इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।

0: तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: पंजाबी गीत हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और इस पंजाबी गीत में हमारे श्रोता सुनेंगे सबरकोटी की आवाज को।

0: सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी।

0: बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
1: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।

ये पंजाबी गीत हमारे श्रोताओं ने सुना सर्वजीत चीमा की आवाज में। अब सुनिए दिलजीत दोसांझ को।

अभी आप सुन रहे थे पंजाबी गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। 11:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम तराने मन के। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं फकीरा फिल्म के गीत के साथ। आवाजें हैं किशोर कुमार और साथियों की, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: तेरानी मन के इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं पाकीज़ा फिल्म का गीत। गायिका हैं लता मंगेशकर, संगीतकार गुलाम मोहम्मद।

0: सलाखें फिल्म के गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। गायिका थी आशा भोंसले। इस बेहद सुरीले गीत में रविंद्र जैन साहब ने ही संगीत देने के साथ साथ इसके बोल लिखे थे। एस डी बर्मन के संगीत से सजा हुआ गीत अब पेश कर रहे हैं। आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म है जुगनू।
1: खेल मेरे संग किया तूने बड़ा तंग किया, डोरी मेरे पास हो तो सैया तोहे खींच लूं, जाने ना दूं, जाने ना दूं, आंखों में बसा के आंखें मीट लूं।

मेरे हम सफ़र इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। महेंद्र कपूर और बलबीर ने इस गीत को गाया है, संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने, और गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

लता मंगेशकर के गाए हुए झील के उस पार फिल्म के इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं शान के और साथियों के गाए हुए इस गीत के साथ, जिसमें संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने, आवाज़ें हैं के शान और साथियों की।

सैनिक भाइयों, लीजिए अब सुनिए अनुराधा पोडवाल की आवाज में आशिकी फिल्म का गीत। नदीम श्रवण की जोड़ी ने इस गीत की धुन बनाई है।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
3: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
4: गर्भावस्था की पहली तिमाही में एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
0: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य

0: तरीके से पहुंच सकता हूं एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: जतिन ललित के संगीत निर्देशन में लीजिए अब सुनिए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत। इसे आवाज़ दी है पामेला चोपड़ा, मनप्रीत कौर और साथियों ने।

0: सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।

0: उदित नारायण के गाए हुए चलते चलते फिल्म का ये गीत अंतिम गीत है, जतिन ललित का संगीत है।
1: फूटे हैं दिल में बताशे।

उदित नारायण अलका याग्निक के गाए इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सैनिक भाइयों, जय हिंद।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल सभा।

सभी बच्चों को जय हिंद। रेडियो दीदी हाजिर हो चुकी है स्टूडियो में अपने सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा लेकर, और आप सभी को आपके अपनी रेडियो दीदी का प्यार भरा नमस्कार, ढेर सारा लाड प्यार और दुलार हम आपको भेज रहे हैं।

और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, आभार हमारे उन तमाम श्रोताओं का जो हर बार की तरह इस बार भी जुड़ चुके हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ और हिस्सा बन गए हैं इस सुहानी से सफर का। तो नन्ही दोस्तों, आपसे एक प्यारी सी गुजारिश है कि दिन के एक बजे तक आपने जुड़े रहना है आकाशवाणी धर्मशाला के साथ और रेडियो दीदी की बातों को आपने सुनते रहना है बहुत ही ध्यान से और प्यार से। चंद पंक्तियां अपने नन्हे दोस्तों के लिए अर्ज करना चाहते हैं। छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते हैं, फिर एक टॉफी देखकर मान भी जाते हैं। दुनिया में सबसे प्यारी है अपनी कहानी, दोस्ती में बीते हमारी ये बचपन की जिंदगानी।

जी हाँ, छोटी छोटी बातों पर रूठना, फिर मान भी जाना। दिल में ना कोई गिला होता है, ना कोई शिकवा होता है, बस एक सच्चा दिल और उस सच्चे दिल में एक प्यारा सा दोस्त, और उस दोस्त के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने की एक छोटी सी अभिलाषा। जनाब, यही तो बचपन है। और आप सभी को, जी हाँ, रेडियो दीदी की तरफ से मित्रता दिवस यानी फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं।

गए ना तो हजार जिम्मेदारियां आपको आकर घेर लेंगी। इसलिए जी भर कर शरारतें करनी है, हजार नादानियां करनी है, पर इन सभी के बीच आपने सभी की भावनाओं का बहुत बहुत ध्यान भी रखना है। तो नन्ही दोस्तों, अब हम यहाँ पर रुकते हैं। जी हाँ, यहीं पर रुक रहे हैं। आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी आपकी ये प्यारी सी चुलबुली दीदी। और अब हम ले रहे हैं एक संगीतमय अंतराल, एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गीत हमने भेज दिया है आपके रेडियो सेट्स पर। सुनिए, आनंद लीजिए।

0: नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: सभी नन्ही मुन्ने दोस्तों का और सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम बाल सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़ी हुई हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ और स्टूडियो में इस समय है बच्चों की रेडियो दीदी प्रवीण। बात हम आपके साथ कर रहे हैं मित्रता दिवस के बारे में, यानी फ्रेंडशिप डे के बारे में। नन्ही दोस्तों, मित्रता दिवस हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 30 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन भारत और कई देशों में यह दिन यानी आज का दिन हर साल अगस्त महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। और बच्चों, आज के दिन सभी लोग अपने पक्के दोस्तों के प्रति प्यार और आभार व्यक्त करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स देते हैं, फ्रेंडशिप बैंड देते हैं, गिफ्ट्स भी देते हैं यानी उपहार देते हैं, और जो सबसे अजीज होते हैं उनके दिल के पास होते हैं ना, उनके लिए तो भाई इससे भी महंगी महंगी चीज़ें देते हैं। लेकिन सच्चा प्यार और सच्ची दोस्ती तो हमेशा सच्चा साथ और प्यार अपनापन मांगती है। नन्ही दोस्तों, आज के दिन को दोस्ती के खूबसूरत बंधन में बांधने का एक बहुत ही खूबसूरत अवसर है। बच्चों, एक अच्छा दोस्त हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक है। सच्चे दोस्त हमेशा सुकून देते हैं, खुशी देते हैं और आपको बहुत सारी प्रेरणा भी देते हैं। जब हम एक सच्चे दोस्त को देखते हैं ना, तो देखते ही मन में कई सारे हसीन रंगीन सपने आने लगते हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा अपने सच्चे दोस्त को देखकर मिलती है। नन्ही दोस्तों, आप भी अपनी दोस्ती को कैसे बरकरार रख सकते हैं, कैसे अपनी सच्ची दोस्ती निभा सकते हैं, ये आपको बताएगी आपकी रेडियो दीदी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपने दोस्त के प्रति सच्चा विश्वास रखना है, यानी अपने दोस्तों से कभी भी झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना है। क्योंकि बच्चों, आपका एक झूठ विश्वास प्यार और अपनेपन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। एक बात और नन्ही दोस्तों, हमेशा अपने खिलौने और खाने पीने की चीज़ें मिल बांट कर खानी है और खेलने वाली चीज़ों को मिल बांट कर ही खेलना है, यानी शेयर करना है। जब भी आप दोस्तों के साथ कहीं बैठें तो सभी की बात को पूरा सुनना है, समझना है, उसके बाद ही अपनी बात को रखना है। कई बार पता है क्या होता है, बहुत सारे दोस्त मिलकर बैठे होते हैं, एक ना दूसरे की बात सुनता है, दूसरा ना तीसरे की बात सुनता है, तो इससे पता ही क्या होता है, मनमुटाव अपने आप आ जाते हैं। क्योंकि जब हम वहाँ से उठकर अपने अपने घरों में वापस आ जाते हैं, तो हम उस पूरी घटना को फिर से याद करते हैं और सोचते हैं कि मेरे दोस्त ने मेरी बात नहीं सुनी थी। अरे छोड़ो छोड़ो, उसने भी तो नहीं सुनी थी मेरी बात, मेरी बात को कोई सुनता ही नहीं है, मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं होती है। तो बच्चों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जब अपने दोस्तों के साथ बैठे हो ना, तो सभी की बात को बहुत ध्यान से सुनना है, दिल लगाकर सुनना है और फिर उनकी बात का पूरा निचोड़ निकालना है, उसी के बाद अपने सुझाव आपने उन्हें देने हैं। अगर आपके दोस्त के साथ आपकी कोई अनबन

गई हो तो सॉरी कहने की आदत भी आपको सीखनी होगी। कहते हैं कि जब तक ईगो किसी रिश्ते में रहती है तो वो रिश्ते ज़्यादा देर तक नहीं चलते हैं, लंबे समय तक वो रिश्ते नहीं चलते हैं। इसलिए सॉरी कहने की आदत, गलती हुई है तो उस गलती को मानने की आदत आप में ज़रूर होनी चाहिए। जब हम अपनी गलती को मान लेते हैं ना, तो समझ लो उस रिश्ते को हमने एक और पक्की डोर से बांध लिया है। बच्चे, जब भी आपका दोस्त उदास हो, परेशान हो, उसे किसी तरह की मदद की कोई ज़रूरत हो, तो बिना देरी किए आपने अपने दोस्त की मदद ज़रूर करनी है और इस खूबसूरत रिश्ते को अपने सच्चे मन से निभाना है। किसी भी तरह का कोई छल कपट या फिर कोई द्वेष ईर्ष्या की भावना अपने दोस्तों की प्रति बिल्कुल भी नहीं रखनी है। जब आप किसी के साथ सच्ची दोस्ती करते हैं ना, तो हृदय में हमेशा उनके लिए प्यार रखना है, अपनापन रखना है। किसी भी तरह की द्वेष की भावना अपने हृदय में बिल्कुल भी नहीं रखनी है, क्योंकि जब हम अपने दोस्तों के प्रति, अपनों के प्रति अपने हृदय में बुरे विचार, नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, द्वेष भावना इत्यादि रखते हैं ना, तो इस तरह की जो भावनाएँ होती हैं वो रिश्तों को मजबूत नहीं बनने देती हैं, बल्कि रिश्तों को अंदर ही अंदर से खोखला बना देती हैं। वैसे नन्हे दोस्तों, आपसे एक बात कहूं, ध्यान से सुनना। आपको पता है कि आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, बुआ मौसी, इन सब रिश्तों में भी आपका एक अच्छा और सच्चा दोस्त ज़रूर होता है। बस नज़र जोहरी वाली होनी चाहिए। जी हाँ, हर कोई वो वाली नज़र नहीं रखता है जिससे हम रिश्तों को अच्छे से परख सकें। लेकिन बच्चों, जब आप किसी को दोस्त बनाते हैं ना, ध्यान से सुनना, जब आप किसी को अपना दोस्त बनाते हैं तो उसके लिए बहुत सारी ईमानदारी अपने मन में रखना। हर कोई साथ हो ये ज़रूरी नहीं होता, हर कोई साथ हो ये ज़रूरी नहीं होता। जगह तो दिल में बनाई जाती है, पास होकर भी दोस्ती इतनी अटूट नहीं होती जितनी की दूर रहकर निभाई जाती है। बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता है हमारा और बच्चों का, यानी रेडियो दीदी और बच्चों का ये खूबसूरत सा रिश्ता है। पास चाहे हम बिल्कुल भी ना हों, लेकिन जब हम आंखें बंद करते हैं तो दिल से एक ही आवाज़ आती है कि बच्चे दीदी को सुन रहे हैं, बच्चे दीदी को देख रहे हैं, और एक प्यारा सा एहसास बातों के ज़रिए, जानकारियों के ज़रिए हम अपने नन्हे दोस्तों तक पहुँचा रहे हैं। इसलिए तो ये दीदी हमेशा अपने बच्चों को दोस्त कहकर बुलाती है, क्योंकि बच्चों ये जो दोस्ती वाला रिश्ता होता है ना, ये बहुत ही प्यारा होता है, बहुत प्यारा होता है। चलिए फिर से यहाँ पर हम रुकते हैं, देते हैं अपनी बातों को विराम और पहुँचाते हैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों तक एक और प्यारा सा खूबसूरत

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
3: फसा। अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सभी नन्हे दोस्तों का कार्यक्रम में एक बार फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ, मित्रता दिवस की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों, माना कि आपके और हमारे बीच बहुत सारी दूरियां हैं, लेकिन बच्चों, आपसे बातें करने का एहसास, आपकी आवाज़ को सुनने का एहसास और उसे महसूस करने का एहसास ही क्या किसी दोस्ती और प्यार से कम है। एक बार फिर से आप सभी को मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नन्हे दोस्तों, अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, कार्यक्रम का ये अंतिम पड़ाव है और अंतिम पड़ाव हमारा रहता है रोचक जानकारी।

से भरपूर। तो जल्दी से अपने दिमाग और कान की सारी खिड़कियों को खोल लीजिए, क्योंकि रोचक जानकारियां पहुंचने वाली हैं आपके घर द्वार। नन्हे दोस्तों, दुनिया में सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान हिमाचल प्रदेश के चायल में स्थित है। मनुष्य के शरीर में इतना लोहा यानी आयरन होता है कि उससे एक इंच लंबी कील बनाई जा सकती है। सेब में लगभग 84% पानी होता है, इसलिए यह शरीर को हाइड्रेट रखने में बहुत मदद करता है। नन्हे दोस्तों, दुनिया में पक्षी की सबसे बड़ी मूर्ति भारत के केरल राज्य में स्थित जटायु की मूर्ति है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, और बच्चों, भारत के तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, और राष्ट्रगान की अगर हम बात करें तो जन गण मन, ये भारत का राष्ट्रगान है। अब आज की अंतिम जानकारी सुनिए। इंडिया गेट दिल्ली का ही नहीं भारत का भी महत्वपूर्ण स्मारक है। इंडिया गेट को 80,000 से अधिक भारतीय सैनिकों की याद में निर्मित किया गया था, और बच्चों, ये प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया गया है। तो अब चलते चलते एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत हम सब सभी बच्चों की नजर कर रहे हैं।

तो नैनी दोस्तों, जाने से पहले हम आपको बता देते हैं कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहे डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह और तकनीकी सहयोगी के रूप में हमारे साथ रहे अंकित धीमान।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 MHz पर। दिन का 1 बजने को है। अब पहले हिंदी में समाचार, वो 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रिले के लिए करें बस थोड़ा सा इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गए।
1: कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल रहे। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि अन्य 8 लापता हैं। प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों में फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदियों के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के चलते मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के समुद्री क्षेत्रों में न जाने की सलाह भी दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दुरैस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी

0: योजना है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आपसी मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है तो पहले उसे अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले के विरोध में इस्लामाबाद में हाल में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। एक लेख में श्री क्वात्रा ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान के एक पूर्व विदेश मंत्री की आलोचना की। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत को दोषी ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को अपनी जल उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
2: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
1: The Prime Minister added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. He said that weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country participated in the event. The participants included governors of states, chief ministers of states, My Bharat and National Service Scheme volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. Indian ambassador to the US Vinay Mohan Quatra has stressed that Pakistan must first dismantle the terror infrastructure that it has built if it wants India's cooperation on bilateral issues. Pakistan had recently convened a conference in Islamabad to protest India's decision to hold the Indus Waters Treaty in abeyance. In an article, Mr. Quatra criticized a former foreign minister of Pakistan for threatening war against India if Islamabad's demands on the Indus River system are not met. Ambassador Quatra stated that threatening war against India to distract from its internal problems has become a standard policy option for

0: opened in the affected areas. The drop in the rainfall intensity since yesterday has brought some relief. The IMD has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Karnataka, Kerala, Mahi, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Rajasthan, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. The IMD forecast heavy rainfall conditions over Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh during the next 2 days. The weather agency has also advised fishermen not to venture into parts of the North Arabian Sea till tomorrow and few parts of the East Central Arabian Sea from the 3rd to the 6th of this month. In badminton, India's Tanvi Sharma claimed her maiden BWF World Tour title, defeating Vietnam's six-seeded Nguyen Thieu Linh to win the Taipei Open Super Women's Singles title today. The 17-year-old Tanvi became the youngest Taipei Open champion, surpassing Taiwan's Tai Tzu Ying. She's also the first Indian woman to win the title since Saina Nehwal in 2008. At the Glasgow Commonwealth Games, India's medal hunt enters the final day with judo and track cycling offering the last opportunities to add to the tally. Avtar Singh in the men's 100kg, Yash Ghangas in the men's plus 100kg and Ishroop Narang in the women's 78kg category will lead India's judo challenge. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
2: अच्छा, इन्होंने गीत भी बताए हैं कि ऐसे गीत कुछ शामिल हो सकते हैं। एक साथी ने लिखा है, कलम दवात वो वस्तु है जो बचपन में प्रथम कक्षा से ही नन्हे हाथों में देकर अपना भविष्य संवारने हेतु दी जाती है। कलम हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बचपन से किताबों में पढ़ते और सुनते आए हैं कि आज़ादी की लड़ाई में कलम की विशेष भूमिका रही। आज भी हम अपनी बात कलम से ही लिख रहे हैं, लेकिन वो डिजिटल हो गया है। लिखने से याददाश्त अच्छी रहती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं। अच्छा हाँ, एक बात तो हम भूल ही गए कि ये जो पहला गीत आपने सुना, इस का जो शब्द था जो हमारी आज की इबारत में भी था, वो था कलम। और आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं, बताइएगा कौन सा शब्द है। अनपढ़ फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहदी अली खां ने इसे लिखा है, मदन मोहन का संगीत।

शायद इस शब्द का कयास लगाना थोड़ा सा जटिल महसूस हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, यहाँ पे शब्द था समझा। जी हाँ, इबारत की लाइन है जो इसकी अहमियत समझते हैं, तो समझते से हमने लिया है समझ ये शब्द, और समझा इस गीत में शब्द शामिल था। और हमारे कई श्रोताओं ने लिखा है कि उनका पहला गीत शामिल हो चुका है। एक साथी लिखते हैं, शुरुआत में जब हम छोटे थे तब स्लेट और चौक से लिखना सीखते थे, फिर कॉपी और पेंसिल से लिखना शुरू किया, जब गलत होता था तो रबर से मिटा लिया करते थे, क्लास सिक्स से पेन मिला करता था, वो भी स्याही वाला, स्याही खत्म होने पर फिर से स्याही भर लेते थे। वहीं एक साथी ने लिखा है, बोला हुआ भुलाया जा सकता है पर लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता। एक साथी लिखते हैं, कलम की ताकत का सीधा और मुख्य अर्थ वैचारिक क्रांति, सामाजिक सुधार और अज्ञानता के खिलाफ आवाज उठाना है। ये शाश्वत सत्य को रेखांकित करता है कि इतिहास गवाह है कि जो काम बड़ी बड़ी सेनाएं या तलवारें नहीं कर पाई, वो काम एक लेखक पत्रकार की कलम ने कर दिखाया है। कलम की ताकत असीमित है, लेकिन इसका महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि इसे चलाने वाले का उद्देश्य क्या है। यदि कलम का उपयोग सकारात्मकता, न्याय और सत्य के लिए किया जाए तो ये समाज के लिए वरदान है, लेकिन यदि इसका उपयोग झूठी अफवाहें या नफरत फैलाने के लिए हो तो ये विनाशकारी भी हो सकती है। और इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। शब्द जरूर पहचानिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा। पतंगा फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, इंदिवर के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और साथियों, जैसा कि इस संदेश से पहले जो गीत आपने सुना उसका शब्द था वही जो आप सभी ने सही पहचाना है, थोड़ा। तो थोड़ा शब्द हमारी इबारत में भी शामिल था। और कई लोगों ने लिखा है पिछले कुछ गीत को लेकर कि इसमें तो कई सारे शब्द हैं। तो शब्द तो कई सारे हैं, लेकिन हमारी इबारत से कौन सा शब्द जुड़ता है वो आपको पहचान कर बताना है। तो अब आप कयास लगाते रहें और हम आपको गीत सुनवाते रहेंगे। एक साथी ने लिखा है, कलम तलवार से भी ज़्यादा तेज़ होती है, सोच बदल देती है, एक लाइन किसी का दिन बना सकती है और एक लाइन किसी की जिंदगी भी, इतिहास लिखती है, बड़े बड़े आंदोलन, क्रांति, संविधान सब कागज और कलम से शुरू हुए, दिल जोड़ती है, चिट्ठी, कविता, कहानी, दूर बैठे लोग भी कलम से करीब आ जाते हैं, सच बोलती है, जब आवाज दब जाए तब भी कलम सच लिखती रहती है। तो इसी तरह जो कलम का काम है वो बड़ा अनोखा होता है। एक साथी ने लिखा है कि हमारे देश में जितने भी साहित्यकार हुए हैं उन्होंने हमें अपनी कलम के जरिए बहुत अच्छी शिक्षा दी है। अगर उनकी कलम में कहीं चूक हो गई होती तो शिक्षा का अर्थ ही शायद अर्थ ना रहता। पर चाहे लेखन कैसा भी हो, सार्थक होना चाहिए, चाहे कविता हो, साहित्य हो, गीत हो, चाहे प्रेम पत्र ही क्यों ना हो। अगर कलम में ताकत हो, अर्थात कहीं कोई खामियां ना हो, तो ये अच्छा रहता है। तुम इन्होंने और भी कुछ गीतों के भी इन्होंने सुझाव दिए हैं कि ये गीत आज हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या

किसी श्रोता ने बड़ी अच्छी सी पंक्तियां लिखकर भेजी हैं, चलिए पढ़ते हैं। लेखनी जब हाथ में आती, मन की हर धड़कन कह जाती, जो शब्दों में ना ढल पाए, स्याही बनकर कागज पर छा जाए। लेखन केवल अक्षर नहीं, जीवन का मधुर सफर यही। कभी हंसी की मीठी धुन है, कभी आंसू की मौन लगन है। लेखन से विचार संवरते, बिखरे सपने फिर निखरते। सच की लौ जब इसमें जलती, अंधियारी राह भी उजली लगती। कलम की अपनी एक कहानी, बदल दे दुनिया बदले जवानी। शब्द अगर हो प्रेम से भरे, हर दिल में विश्वास उतरे। आओ ऐसा लेखन करें, मानवता का दीपक धरें। हर पंक्ति में हो सत्य का मान, यही लेखनी का सच्चा सम्मान। बड़ी ही खूबसूरत पंक्तियां ये थी। साथ ही एक साथी ने बड़ी मज़ेदार बात लिखी है। इन्होंने लिखा है, जब मैं कागज़ कलम लेकर बैठता हूँ तो मुझे नींद बहुत जल्दी आ जाती है, पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। अब एक राज की बात अगर बताएं तो पढ़ाई के दिनों में मेरे साथ भी ऐसा होता था, और मुझे लगता है कि एक एक समय होता है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव जब होता है, हम लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब ऐसा ज़्यादातर देखने को मिलता है कि किताबें खोलने के बाद, हाथ में पेन लेने के बाद नींद आने लगती है। और तब माँ पिताजी कहते हैं कि अच्छा नींद आती है ना किताबें लेने पर, फिर तब आप हाथ में किताबें उठाएं जब आपको सोना है, रात के समय में फ़ोन रखिए और किताबें उठाइए ताकि पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाए, है ना। यदि आप में से और भी किसी साथी के साथ ऐसा होता है तो आप लिख सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि ऐसा करने वाले अब ये लिखने वाले साथी और मैं ही हैं, या और भी ऐसे साथी हैं जिन्हें किताबें और लेखनी हाथ में लेने पर नींद आती है। चलिए तब तक सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दोस्ती फिल्म का ये गीत, मजरू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: जी हाँ, इस गीत में जो शब्द था वो था आवाज, और इससे पहले जो गीत आपने सुना उसका शब्द था दिशा। और हाँ बिल्कुल, आप में से कई श्रोताओं ने इसका सही जवाब भी दिया है। एक साथी ने लिखा है, जज की कलम से कोई बरी होता है तो कोई फांसी चढ़ता है, गुरु की कलम से हम साक्षर होते हैं और माता पिता की कलम से ढाढ़स बनता है। तो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। एक साथी लिखते हैं, कलम रिश्ते को तोड़ देती है और जोड़ भी देती है, कलम से लिखी गई चिट्ठी मन के भाव को बयां करती है, कलम से निकले शब्द ही प्रेम व्यक्त करने का जरिया है। वहीं पे एक साथी लिखते हैं, जो काम धरने प्रदर्शन अनशन और आंदोलन से नहीं होते हैं, वे काम कई बार कलम की ताकत यानी कि लेखन विचारों और कानून से हो जाते हैं। कलम की इस अद्भुत शक्ति से प्रमुख उदाहरण में वैचारिक क्रांति, कानूनी बदलाव और जनमत निर्माण शामिल है।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी

0: टीनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आए हाय।
2: लीजिए अब आपको सुनवाते हैं जंजीर फिल्म का गीत। मन्नाडे की आवाज गुलशन बावरा का ने इसे लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या?

जमाना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, यार के हंसते ही

0: यार मेरी जिंदगी, ओ यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी।
1: जी हाँ, तो ईमानदारी से लिया गया शब्द ईमान इसमें शामिल है। एक साथी लिखते हैं, सच कहें तो सुरीला सफ़र के इबारत ने कुछ लिखने को प्रतिदिन प्रेरित करती है। लिखने की जुनून को पुनः जागृत करने का विविध भारती का शुक्रिया। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि विविध भारती आपको जागृत करती है और उसके बाद आप लिखते भी हैं। तो आप इसी तरह अपनी टिप्पणियां लिखते रहें, अपने दिल की बात विविध भारती से साझा करते रहें, यानी कि हमसे साझा करते रहें। एक साथी लिखते हैं, लिखने से दिल का आधा बोझ हल्का हो जाता है। जी हाँ, ये सच में बिल्कुल आपने सही लिखा है। अक्सर कई बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे दिल में होती हैं लेकिन हम बयां नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अपनी बात को साझा करें किसी से, मगर विश्वास नहीं होता, या तो फिर हमें लगता है कि सामने वाला हमें समझेगा नहीं। और कभी कभी यह हमारी गलत फहमी भी होती है, हो सकता है सामने वाला हमें समझ भी ले। तो बयां भी कर सकते हैं, और यदि आप बयां नहीं कर पा रहे हैं तो उसे कहीं उतार लें, कहीं लिख लें, मन पर ना उतारें किसी भी किसी की बात जो आपके दिल को ठेस पहुँचाए। तो ऐसी किसी बात को मन पर लिखने से अच्छा है आप एक बार उसे कागज़ पर लिख दें और उस कागज़ को मोड़ माड़ कर फेंक दें, ताकि दोबारा उस बात से आपको ठेस न पहुंचे। एक साथी ने लिखा है, मुझे लिखने के पहले बहुत कुछ सोचता है, यानी शायद ये लिखना चाहते हैं कि बहुत कुछ ध्यान में आता है लिखने से पहले, लेकिन जब लिखने बैठता हूँ तब शब्द भूल जाता हूँ, इसलिए मुझे लिखना नहीं जमता। एक छोटा सा सुझाव देना चाहती हूँ, ऐसा मेरे साथ भी होता है और मुझे लगता है हर किसी के साथ होता है। जब भी हम कोई विचार अचानक से हमें सूझता है तो मेरी आदत है कि मैं उसे कहीं लिख लेती हूँ, या तो नोटपैड में, या फिर अक्सर पहले मैं डायरी अपने साथ रखा करती थी कि जब कुछ अच्छा सा दिख जाए, कहीं सड़क पर, कहीं बाहर गए हैं, कोई अच्छी बात पसंद आए किसी की, तो मैं उसे झट से शॉर्ट में लिख लेती थी ताकि बाद में उसे विस्तार से उस पर विचार लिखे जा सके। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, डायरी आपके पास ना हो लेकिन फ़ोन पर नोटपैड तो आपके पास होता ही है, तो उसमें कहीं नोट करके लिख लें ताकि जब आप लिखने बैठें तो उन शब्दों से आपको वो विचार फिर से याद आ जाए और आप उसे अच्छे से लिख सकें। तो अगर ये टिप काम आ जाए तो ट्राई करके देखिएगा। और अब फिलहाल आपको सुनवाते हैं बाबुल फिल्म का गीत, तलत महमूद की आवाज़, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद अली का संगीत।

लगा दे। जी हाँ, तो शब्द था मिटाना, कई साथियों ने बिल्कुल सही पहचाना। अरे वाह, ये तो तुकबंदी बन गई। चलिए आगे, एक साथी ने लिखा है, पेंसिल की असंख्य गलतियां माफ है, उसे रबर से मिटाया जा सकता है, परंतु कलम पर बोझ बहुत है क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं, उससे जो लिख दिया गया तो उसे मिटाया नहीं जा सकता, अतः कलम का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। किसी ने लिखा है, कई महान क्रांतियों की शुरुआत भड़काऊ नारों से नहीं बल्कि शक्तिशाली लेखों और किताबों से हुई थी। मजबूत लेख और दस्तावेज सरकारों को नीतियां बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कलम विचारों को दूर दूर तक पहुंचाती है, जिससे लोगों की सोच बदलती है। जी हाँ, सोच को बदलने के लिए कलम बहुत बड़ा काम करती है। तो आइए इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम पाकीज़ा, लता मंगेशकर की आवाज़, कैफ भोपाली ने इसे लिखा है, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

जी हाँ, शब्द था असर, आप लोगों ने सही पहचाना है। एक साथी ने लिखा है, मैं कक्षा 10वीं में था जब मुझे एक प्रेम पत्र लिखना था। जब मैं कागज कलम उठाई तो दिमाग और दिल इतना धड़क रहा था कि क्या क्या लिखूं, लेकिन एक पीरियड में मैंने अपने दिलों दिमाग की सारी बातें कागज पर उतार दी। मन इतना तरोताजा हो गया कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं रही और फिर मैंने उसे भेज दिया। अब ये तो अधूरी कहानी हुई, आगे तो बताइए क्या हुआ, क्योंकि अभी क्या स्थिति है और आगे क्या हुआ ये भी तो आपको बताना चाहिए, वरना हमारे साथी कैसे समझेंगे इस अधूरी लिखी कहानी से। तो इसे पूरा कीजिए और तब तक सुनिए ये अगला गीत, फिल्म का नाम नया दौर, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें, साहिर लुधियानवी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

है मैडम जी, सॉरी टू से, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अब तो पेन कलम का लिखा भी मिटा सकते हैं, वाइटनर है, करेक्शन पेन जो उपलब्ध हैं, तो अभी के लिए वंस अगेन सॉरी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगी, करेक्टर जो करेक्शन करने के लिए वाइटनर आता है या फिर जो एडिट किया जा सकता है, उससे आप कहीं कहीं कागज़ पर या फिर सोशल मीडिया पर लिखा हुआ एडिट या वाइटनर लगाकर उसे मिटा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बात किसी के मन पे लग जाए तब उसे आप कभी नहीं मिटा पाएंगे। तो इसलिए हमेशा अपनी कलम का इस्तेमाल बहुत ध्यान से सोच समझ कर करिए। इसी के साथ आज की इस सुरीला सफ़र कार्यक्रम से इजाज़त दीजिए नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

त्रिवेणी को लेकर आज मैं हूं आपके साथ नेहा आगरकर देसाई। साथियों, दोस्ती जीवन का वो अनमोल रिश्ता है जिसे किसी परिचय, औपचारिकता या स्वार्थ की आवश्यकता नहीं होती। ये ऐसा बंधन है जो विश्वास, अपनापन, स्नेह और निस्वार्थ भावना पर टिका होता है। सच्चा मित्र हमारी खुशियों में दिल खोल कर मुस्कुराता है और कठिन समय में बिना किसी अपेक्षा के हमारे साथ खड़ा रहता है। कई बार जो बातें हम अपने परिवार से भी नहीं कह पाते हैं, उन्हें अपने मित्र से सहजता से साझा कर लेते हैं। मित्रता दिवस हमें ऐसे ही साथ निभाने वाले दोस्तों के प्रति सम्मान, आभार और प्रेम व्यक्त करने का अवसर देता है। ये दिन याद दिलाता है कि जीवन की सबसे खूबसूरत यादों, सबसे प्यारी मुस्कानों और सबसे मजबूत हौसलों के पीछे अक्सर किसी सच्चे दोस्त का साथ छिपा होता है।

समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोग अलग अलग शहरों और देशों में बस जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती की गर्माहट कभी कम नहीं होती। आज तकनीक ने दूरियों को भले ही छोटा कर दिया हो, फिर भी रिश्तों की असली मजबूती केवल संदेशों से नहीं बल्कि अपनापन, भरोसा और एक दूसरे के लिए समय निकालने से बनी रहती है। एक सच्चा मित्र हमारी कमियों को स्वीकार करता है, हमारी खूबियों को निखारता है और हर कदम पर हमारा उत्साह बढ़ाता है। यही वजह है कि दोस्ती को जीवन की सबसे सुंदर और सबसे सच्ची पूंजी कहा जाता है। अच्छे मित्र हमारे जीवन को केवल आसान ही नहीं बल्कि खुशियों से भी भर देते हैं।

मित्रता दिवस केवल शुभकामनाएं देने या सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करने का अवसर नहीं है, बल्कि उन रिश्तों को दिल से याद करने का दिन है जिन्होंने हमारे जीवन को बेहतर बनाया है। आइए इस विशेष अवसर पर अपने उन मित्रों को धन्यवाद कहें जिन्होंने हर सुख दुख में हमारा साथ निभाया, हमारी सफलताओं पर सबसे ज्यादा खुश हुए और कठिन समय में हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। एक छोटी सी शुभकामना, एक फोन कॉल या एक आत्मीय संदेश भी दोस्ती के रिश्ते को और गहरा बना सकता है, क्योंकि सच्ची दोस्ती समय, दूरी और परिस्थितियों से कहीं ऊपर होती है। ऐसे सभी मित्रों को समर्पित है मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: से 70 के दशक के अंत में आई है
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
0: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
0: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ 4थे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
4: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
4: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
3: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
4: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
3: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाए नहीं।
4: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें।

0: हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
1: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
3: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति

0: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में तीन भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
1: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बूरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉट पुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
0: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहु खेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और NCC के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी

0: और भारत के राष्ट्रध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए आगाज करते हैं श्री 420 इस फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। शैलेंद्र की शब्द रचना है और शंकर जयकिशन की धुन।

उड़न खटोला इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज थी मोहम्मद रफी की, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं वचन फिल्म का गीत, आवाज आशा भोसले की और गीत संगीत रवि का।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो, 8 अगस्त दिन में 11 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

नया दौर फिल्म से गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था, ओपी नैयर का संगीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं जश्न फिल्म का ये गीत, स्वर आशा भोसले का। आर कृष्ण ने इसे लिखा है और रोशन का संगीत।

0: गेस्ट। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर, सॉरी क्षमा कीजिए, आशा भोसले की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और सचिन देव बर्मन का संगीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं परिवार फिल्म का गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और मन्ना डे की, शैलेंद्र की रचना, सलील चौधरी का संगीत।
1: दत्त मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर, जमुना के तट पर नीरत करत उठ हिरत फिरत उठ हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन दिग्दिगना दिग्दिगना दिग्दिगिधो दिग्दिगिधो दिग्दिगि राम तत तई राम तत तई राम तत तई।

लहकी मृदंग ठनका धत धत धत धत नगिन दे दे सगन नदादा किट धत धत धत धड़न मच तक सगन का किट तक तक सगन का जी सगन नदा ताधा किट तक सगन का ताधा सगन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा साथ यथ यथ साथ यथ यथ साथ यथ यथ

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 3 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। वे आज नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थ करियर, पारिवारिक जीवन और लोगों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज आवश्यक है। इस बीच राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में भी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने युवाओं को नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नशा उन्मूलन में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला युवा अधिकारी दीपमाला ठाकुर ने युवाओं से माय भारत पोर्टल के माध्यम से इस अभियान से जुड़कर नशा मुक्त समाज में सहयोग देने का आह्वान किया। उधर नाहन में करीब 250 युवाओं ने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। माय भारत सिरमौर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं ने नशा मुक्त भारत के संकल्प को दोहराया। जिला युवा अधिकारी अमृषा शर्मा ने बताया कि इस अभियान के तहत जागरूकता रैलियां, खेल गतिविधियों सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चंबा में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इसमें चंबा मेडिकल कॉलेज में 200 बिस्तरों का नवनिर्मित भवन सहित 175 करोड़ रुपए की सड़कों के शिलान्यास शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा जिला में सड़कों का जाल बिछाने का कार्य जारी है और अगले 3 माह के भीतर जिले में 591 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न सड़कों का कार्य शुरू किया जाएगा।
2: 591 करोड़ रुपए की सड़कों का कार्य अगले 2-3 महीनों में शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी मैं चंबे के विधानसभा क्षेत्र के दौरे में आया हूँ। यहाँ 175 करोड़ रुपए की सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है और यहाँ अभी 32 करोड़ की लागत से जो पार्किंग का भी शिलान्यास हुआ है। जहाँ विकास की बात है, पैसे की कोई कमी नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे पास पैसा खर्च करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में है।
0: जिला परिषद कैडर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कैडर की जल्द बैठक बुलाई जाएगी और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी इस दौरान मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना जिले के हरोली में राज्य पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय कार्यालय व ई बस डिपो का लोकार्पण किया। इस पहल से क्षेत्र में परिवहन सेवाओं के संचालन व प्रबंधन को नई गति मिलेगी। चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज संपन्न होने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शाम के समय रावी नदी में हाथ से बनी मिंजर विसर्जित कर

मेले का विधिवत समापन करेंगे। राज्यपाल ने 26 जुलाई को मिंजर मेले का शुभारंभ किया था। इस मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित विभिन्न गतिविधियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। नशे के सौदागरों के खिलाफ शिमला जिला पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत पुलिस ने पंजाब और हरियाणा से नशे के 3 मुख्य सौदागरों को हिरासत में लिया है। इन आरोपियों को कपूरथला, जालंधर और पिंजौर से पकड़ा गया है। शिमला की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेहर पंवर ने बताया है कि इन सौदागरों को पुलिस ने गहन छानबीन और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पकड़ा है। शिमला पुलिस इस वर्ष अब तक 63 मुख्य नशा सप्लायरों को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। विभाग ने कल कांगड़ा, चंबा और बिलासपुर जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: प्रादेशिक समाचार के बाद अब पेश है सामयिक चर्चा। विषय है मजबूत कानून, सुरक्षित परीक्षाएं, भारत ने पेपर लीक के खिलाफ कसा शिकंजा। वाचक स्वर अनुराग पराशर।
3: देश में हर वर्ष लाखों युवा अपने बेहतर भविष्य के सपने के साथ सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। इन परीक्षाओं में उनकी वर्षों की मेहनत, परिवार की आशाएं और भविष्य की आकांक्षाएं जुड़ी होती हैं। ऐसे में जब किसी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है या संगठित गिरोह परिणामों में हेरफेर करते हैं तो केवल कानून का उल्लंघन नहीं होता बल्कि लाखों अभ्यर्थियों के परिश्रम, विश्वास और अवसरों पर भी गहरी चोट पहुंचती है। इसी विश्वास की रक्षा और लोक परीक्षाओं को निष्पक्षता से करवाने के उद्देश्य से संसद ने लोक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम अधिनियम वर्ष 2024 पारित किया। ये परीक्षा में धोखाधड़ी, प्रश्न पत्र लीक और संगठित परीक्षा घोटालों पर अंकुश लगाने के लिए भारत का पहला समर्पित कानून है। अब इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी तथा सशक्त बनाने के लिए सरकार ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया है। इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य दोषियों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करना, जांच व न्यायिक प्रक्रिया को अधिक तेज और प्रभावी बनाना तथा प्रभावित अभ्यर्थियों को समयबद्ध एवं स्पष्ट न्याय उपलब्ध करवाना है। लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन अधिनियम वर्ष 2024 ने भारत की लोक परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक सशक्त कानूनी आधार प्रदान किया। फिर भी हाल के वर्षों में प्रश्न पत्र लीक, संगठित नकल और परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं की घटनाएं सामने आती रही, जिन्होंने लाखों अभ्यर्थियों के विश्वास के साथ साथ परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े किए। इन्हीं चुनौतियों का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करने के उद्देश्य से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक वर्ष 2026 लाया गया है। न्यायिक प्रक्रिया को अधिक तेज और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ये संशोधन विधेयक एक महत्वपूर्ण संस्थागत परिवर्तन भी प्रस्तावित करता है। इसके अंतर्गत परीक्षा संबंधी अपराधों की सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय के रूप में नामित करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक के अनुसार प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपने अधिकार क्षेत्र में लोक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की सुनवाई के लिए संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के उपरांत एक सत्र न्यायालय को विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय के रूप में अधिसूचित करना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य परीक्षा में धोखाधड़ी, प्रश्न पत्र लीक और अन्य संगठित परीक्षा अपराधों से जुड़े मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना है। विशेष फास्ट

0: को शीघ्र दंड सुनिश्चित करना है। विधेयक यह भी स्पष्ट करता है कि यदि किसी आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता या किसी अन्य प्रचलित कानून के अंतर्गत इससे संबंधित अन्य अपराधों के आरोप भी लंबित है तो उन सभी आरोपों की सुनवाई उसी विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय द्वारा एक साथ की जाएगी।
1: पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दिन के 3:10 हुए हैं। अब सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम जिन्हें आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा।

मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दर्द फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की। नक्शलायल पुरी ने इसे लिखा है, खयाम का संगीत। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी और मिसेस कीर्ति सोलंकी ने। इस गीत को सुनना पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

और लीजिए, अब आपको सुनवा देते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आवारा फिल्म का गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और शंकर जयकिशन का संगीत है। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है अब्दुल फादर खत्री, शिरीन बानो खत्री, अब्दुल अजीज खत्री और अफीयत खत्री ने। इसी के साथ इस गीत को सुनना पसंद किया है कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। तो चलिए, इन सभी की फरमाइश पर सुना जाए ये गीत।

0: अपना देश इस फिल्म से गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इस गाने की फरमाइश हमें तेलंगाना से भेजी मोहम्मद बुरहानुद्दीन फजान लल्ला फरहान लल्ला समायरा अजमीन गुड़िया ने, और इस गीत को सुनना पसंद किया जोधपुर से जबर सिंह फूल वाले रुद्राक्ष मानू दिनेश सोढ़ा देवेंद्र सिंह फूल वाले ने। और आज का ये जो हमारा सफ़र था मनचाहे गीत का, ये अब यहीं पर संपन्न होता है। आपके ख़तों का इंतज़ार हमें ज़रूर रहेगा, तो अपने ख़त भेजते रहिए और हमसे जुड़े रहिए इन ख़तों के ज़रिए। और आज ये कार्यक्रम मैंने पहली बार पेश किया है, तो यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। दिल में कोई बात ना रखें, अपनों से हमेशा अपने दिल की बातें साझा करते रहें तो दिल हल्का रहेगा। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम से, नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने नाटक।

तोहफा। दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपने आखिरी दिन अंग्रेजी हुकूमत के कैदखाने में बिताए थे। मुगलिया सल्तनत के इस आखिरी चराग को उसके अपने घर की हवाओं ने गुल किया, लेकिन अंग्रेजी कमांडर ने जो तोहफा दिया वो बादशाह तो क्या, पत्थर का कलेजा हिलाने के भी काबिल था। आइए इसी वाकये पर आधारित ये ड्रामा सुनिए, तोहफा। मूल कहानी मधुकर गंगाधर, रूपांतर जोहरा मिर्जा और निर्देशक हैं लोकेंद्र शर्मा। तो लीजिए सुनिए नाटक तोहफा।

0: أشهد أن لا
1: शहनशाह बहादुर शाह जफर की खिदमत में गुलाम बख्त खां कोर्निश बजा लाता है।
2: नहीं नहीं, बख्त खां आप गुलाम नहीं हैं, आप तो मुल्क के सिपह सालार हैं। इस बदनसीब बादशाह बहादुर शाह जफर की उम्मीदों की आखिरी किरण।
1: शहनशाह का इकबाल बुलंद रहे, हम और हमारे तमाम सिपाही जो कुछ भी हैं आपकी ही बदौलत है। जजाक अल्लाह, ऐसे नाजुक माहौल में भी आप अशार इरशाद फरमा रहे हैं।
2: कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं बख्त खां, जिनके जख्मों से बहते लहू की रफ्तार दम तोड़ने लगती है, फिर ये जख्म रिसना शुरू कर देते हैं और इंसान अपने आप को बेहिरासा पाने लगता है, और तब यही रिश्ते जख्म दिल को जुबान बनाकर अशार कहने की ताकत अता कर देते हैं।
1: बजा फरमा रहे हैं जहां पना, जान की अमा पाऊं शहनशाह, अशार और वो भी ऐसे वक्त में।
2: हाँ हाँ बख्त खां, अशार की आमद ऐसे ही वक्तों में होती है। हमारी कम सिनी में मौलवी साहब की बयान की हुई एक बात याद आ गई। कुछ इंसान अपने आप को चौतरफा अंधेरों मुश्किलों मुसीबतों में घिरा हुआ पाते हैं, तो उनसे नजात पाने के लिए उनका कल्ब बिलबिला उठता है, वजूद थर्राने लगता है, सांसें चीखों में बदल जाती हैं, रोशनी रोशनी इन्हीं चीखों के सोतों से निकलते हैं अशार।
1: सरे तस्लीम खम है मेरे आका, मगर मेरे सरकार, ये वक्त टूटे हुए दिलों की बदकिस्मती पर मातम करने, आंसू बहाने या ना महरूमियों का नहीं, बल्कि दिलेराना हिम्मत और नए ताज़ा जोश व खरोश के साथ मुकाबला करने का है।
2: आंसू बहाए नहीं जाते वक्त खां, ये तो खुद ब खुद बहने लगते हैं। खैर छोड़ें इस तज़किरे को, ये बताएं क्या खबर लेके आए हैं।
1: ये गुलाम आका की खैर आफियत के लिए हाजिर हुआ है, क्योंकि ऐसे खतरनाक हालात में पहरेदारों पर भी यकीन करने के लिए अक्ल इजाजत नहीं दे रही है।
2: तो फिर इंतजार किसका है, जितना जल्द हो सके इस जगह को खैराबाद करें। पता नहीं क्यों कुछ अजीब सी घुटन महसूस कर रहे हैं हम।
1: हमने चंद लम्हों के लिए यहाँ कयाम किया है अलीजा।
2: क्या कह रहे हैं बख्त खां?
1: ये नक्शा अपने साथ लेकर आया हूँ, मुलाहिजा फरमाएं और हुक्म करें। हम अब अलीगढ़ के रास्ते की तरफ नहीं जा सकते, फिरंगियों ने वो रास्ता बंद कर रखा है।
2: ठीक है, हमारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, आगरे से पूरब होकर चंबल के बीहड़ों में जाएं, या भरतपुर के रास्ते मेवाड़ की तरफ।
1: मेरे ख्याल में मेवाड़ की तरफ जाना हमारे लिए ज्यादा मुफीद होगा।
2: आपको यकीन है भरतपुर हमारी मदद करेगा?
1: एलची रवाना कर दिया है आलीजा, भरतपुर से अनकरीब यहाँ पहुँचने ही वाला होगा।
2: माँ बदौलत को अपने सिपह सालार पे यकीन कामिल है, आप जो भी

0: चाहे करें लेकिन जल्द से जल्द करें।
1: बस मेरे शाह, मैं आनन फानन गया और सारा बंदोबस्त करके आनन फानन हाजिर होता हूं।

0: दादा जान की जान, आओ आओ, बोलो बेटे रुखसाना।
1: अब आप ही फैसला फरमाएं।
0: किस बात का फैसला बेटे?
1: हम दादी जान से बार बार कहते हैं
0: क्या
1: कि हमें चांदनी चौक हवाखोरी के लिए भेजिए, मगर वो सुनती ही नहीं है।
0: अभी तो शब है बेटे, और रात के वक्त सैर को नहीं जाया करते।
1: लीजिए, दादी जान भी आ गई।
2: मेरे सरताज, इसे किसी तरह से समझाइए।
0: कह तो रहा हूँ मेरे बेटे, हम सुबह सैर करने चलेंगे और फिर
1: आगे फरमाइए ना, खामोश क्यों हो गए आप?
0: हम क्या कह रहे थे?
1: हम जानते थे यही होगा, आप बहुत सी बातें भूल जाते हैं। दादा जान, क्या रात भर हम यही रहेंगे?
0: हाँ बेटे, हम यही रहेंगे।
1: हमारी सारी कनीजें कहाँ गई?
0: अपने अपने घर।
1: मगर क्यों?
0: अल्लाह का ऐसा ही हुक्म है बेटे।
1: अल्लाह ऐसा हुक्म क्यों देते हैं? हमें यहाँ गर्मी लगती है, कोई हमें पंखा झलने वाला भी नहीं है।
0: कोई बात नहीं, आपकी दादी जान आपको पंखा झल देंगी।
1: हमें कपड़े कौन पहनाएगा?
0: दादी जान।
1: खाना कौन खिलाएगा?
0: दादी जान।
1: दादा जान,
0: हाँ?
1: दादी जान क्या कोई फरिश्ता है जो सारे के सारे काम अंजाम फरमाएंगी?
0: चलो थोड़े बहुत आपके काम हम भी कर देंगे बेटे।
1: आप? दादा जान,
0: हाँ?
1: आप?
0: क्यों, हम नहीं कर सकते क्या?
1: दादा जान,
0: हाँ?
1: आपको तो हुक्के के लिए, खासदान के लिए, उगालदान के लिए, पापोश पिन्हाने के लिए अलग अलग खादिम चाहिए, और आप?
0: बेटे रुखसाना, ये वक्त बड़ी जालिम शय होता है, ये किसी से कुछ भी करवा लेता है बेटा।
1: खैर दादा जान, इस सिलसिले को यही खत्म करें, और फिलहाल हमें कोई किस्सा सुनाएं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, हम आपको किस्सा सुनाते हैं। एक था बादशाह, घोड़े पे सवार, हाथ में चमकती हुई तलवार। वो
1: जिधर से गुजरता था जलजला सा आ जाता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया। दादा जान, ये किस्सा इतनी बार आपने सुनाया है कि बिल्कुल हिफ्ज हो गया है। दादा जान, ये घिसे पिटे किस्से आप अपने पास ही रहने दें, मैं अम्मी जान के पास जा रही हूँ।
0: लेकिन लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि जलजला तो रुक गया, लेकिन एक खौफनाक तूफान बपा हुआ, खतरनाक खूंखार तूफान। सियाह आंधियों के थपेड़ों ने सब कुछ तितर बितर कर दिया।
2: मेरे सरताज, किस्सा आप किसे सुना रहे हैं? रुखसाना तो कब के यहाँ से जा चुकी है।
0: रुखसाना चली गई। मलिका, आपकी आवाज इस कदर गमजदा क्यों हो रही है?
2: यूं महसूस होने लगा है जैसे कुदरत की सारी नियामतें वीरान हुई जा रही हों। चमना का पानी बदरंग और सियाह लगने लगा है।
0: मलिका आलिया, कभी चमना के बारे में ऐसे अल्फाज भूल से भी अपने लब पे न लाएं। पानी तो दुनिया के हर दरिया में बहता है, लेकिन दरियाए गंगा और जमुना में आबे हयात बहता है। जमुना कभी भी बदरंग और बदमजा नहीं हो सकती।
2: संग तराशों के फन को शाही रुतबे ताज खिलत से नवाजने वाले सल्तनत मुगलिया के चश्म चराग शहंशाह शाहजहां ने इसी जमुना के रास्ते लाल किले में अपने कदम रंजा फरमाए थे।
0: हाँ मलिका आलिया, हम उन्हें शहंशाह शाहजहां के वारिस हैं, जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े आलिमों और हुनरमंदों को एक झां कर लाल किला तामीर करवाया, और जमुना के रास्ते किले में तशरीफ लाए, और एक ये बदनसीब जफर रात के अंधेरे में उसी लाल किले को दुश्मनों के नरगे में उनके रहम करम पे छोड़ के पीछे के दरवाजे से उसी जमुना के रास्ते से भागकर इस वीरान अंधेरे मकबरे में पनाह ले रहा है।
2: मेरे सरताज, ये मकबरा उन्हीं खुशबख्त शहंशाह हुमायूं का है जो अपने दुश्मनों से शिकस्त खाने के बाद दोबारा सल्तनत हासिल करके तख्त नशीन हुए थे।
0: हाँ मलिका आलिया, पत्थर की इन दीवारों से जब कभी हाथ मस हो जाता है तो सारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूं महसूस होता है जैसे कोई बुजुर्ग पृष्ठ थपथपा के कह रहा हो, हमने हिंदुस्तान में रहकर ऐसी ऐसी नायाब चीजें हासिल की जो शायद फरिश्तों को भी नहीं मयसर। उन्हीं में से बेशकीमत चीज है जज्बे हुब्बुल वतनी। मुल्क पर कुर्बान हो जाने का जुनून ही तो है कि आज भी हमारी झुकी कमर में फौलाद सी सख्ती और खुलती बंद होती आंखों में आफताब के शोले दहकते रहते हैं।
2: मेरे सरताज, ऐसा लग रहा है जैसे अनजानी ताकत ने हमें अपने हाथों का खिलौना समझ लिया हो।
0: उम्र का लंबा हिस्सा हमने गुलाबों और इत्र अंबर की महक में डूबे भावों में गुजार दिया। ये तो पाक परवरदिगार का मौजिजा है कि इस ढलती उम्र में सल्तनत मुगलिया की शान और शौकत बरकरार रखते हुए अपनी मादरे वतन पर कुर्बान होने का मौका अता फरमा रहा है।
2: कोई आ रहा है।
0: आप पर्दे में हो जाएं।
3: आलीजा,
0: क्या खबर लाए बख्त खान?
3: आलीजा, सारी दिल्ली पर फिरंगियों ने कब्जा कर लिया है। लाल किला अंग्रेजी फौज की गिरफ्त में पहुंच चुका है। आलीजा,
0: हमारी गलत आदतों का अंजाम यही होना था बख्त खान। अफसोस, हमारी आंखें कैसा मंजर देख रही हैं। हम शिकस्त खुर्दा लाचार फिरंगी के पास फतेह के अंबार।
3: आलीजा, हमारी ये भी बदनसीबी है कि ऐसे नाजुक वक्त पर भी हम मुगल, पठान, मराठा और राजपूतों में बट के रह गए।
0: हमने सुना था वक्त खान, बुरा वक्त और मुश्किलें इंसान को एक कर देती हैं, लेकिन नहीं, तकदीर में फिरंगियों के हाथों हमें तबाह ताराज होना ही लिखा है। हमें शिकस्त का ही मुंह देखना होगा शायद।
3: हरगिज नहीं आलीजा, हरगिज नहीं। इस सरजमीन को हमारे आबाओ अजदाद ने अपने खून से सींचा है। हम अपनी मादर वतन को फिरंगियों की चारागाह बनने नहीं देंगे। जंगल बियाबानों पहाड़ों की गुफाओं में पनाह लेंगे और इन नाहंजारों के साथ जंग जारी रखेंगे।
0: बख्त खान, इस शाह की उम्र 80 बरस की होने को आई, शेर व शायरी लिखने वाले इन हाथों में कुव्वत कहाँ कि खौफनाक तूफान को रोक सकें। बस एक शाही मोहर, एक कोरा दस्तावेज हैं हम।
3: शाही मोहर की वक़्त आज भी कम नहीं हुई है आलीजा। आप जहाँ कयाम फरमाएंगे हिंदुस्तान की बादशाहत वहीं रहेगी।
0: तारीख बताती है कि मुगलों ने हिंदुस्तान की सरजमीन को फतेह किया, मगर हक यह है कि हिंदुस्तान ने मुगलों को जीता। शहनशाह बाबर ने जिस दिन जमुना का आब पिया उस दिन अपनी वालिदा मोहतरमा का दूध भूल गए। हिंदुस्तान की मिट्टी उनकी वालिदा बन गई।
3: बजा फरमा रहे हैं आलीजा, इस मादर वतन की इज्जत को दिन दूनी रात चौगनी करने में कोई दकीका उठा नहीं रखा। ताजमहल और लाल किले जैसी इमारतें तामीर करवाई, शालीमार और निषाद बागात लगवाए, मंदिरों के घंटों और मस्जिदों की अजानों को एक जैसा एहतराम करने की कोशिशें की, गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद डाली।
0: और इसी तहजीब और तमद्दुन इत्तेहाद को तहस नहस कर देना चाहता है।

0: ये फिरंगी हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाना चाहता है ये फिरंगी। लेकिन जब तक एक भी हिंदुस्तानी जिंदा है उसकी तलवार फिरंगी के खिलाफ उठी रहेगी।
1: आलिया, यहां से कूच की तैयारी हो चुकी है, आप मलका आलिया को मुत्तिला फरमा दें, मैं पालकी दरवाजे पर लगवा कर अभी हाजिर खिदमत होता हूं।

0: कौन? लौट आए बख्त खान?
1: जी नहीं, इलाही बख्श आली जहा की खिदमत में कोर्निश बजा लाता है।
0: अरे कहां की बादशाहत, कहां के आली जहा? मकबरे में पनाह लेने वाला आली जहा कैसे हो सकता है?
1: ऐसा ना फरमाए, सरकार तो आज भी हिंदुस्तान के शहंशाह हैं।
0: हाँ, एक ज़ईफ बेकसूर लाचार शिकस्त खुर्दा शाह जो अपने अज्जा के महलों से रात की तारीकी में भाग निकला और अब जंगल बियाबानों में भटकने जा रहा है।
1: ये क्या फरमा रहे हैं मेरे सरकार?
0: हाँ इलाही बख्श, बख्त खान ने सारा बंदोबस्त कर लिया है। हम भेस बदल कर निकल रहे हैं, अब हमारा कयाम यहां मुनासिब नहीं। सुना है लाल किले पर फिरंगी कब्जा कर चुके हैं।
1: बजा फरमाया, मैं आपको तलाश करता हुआ कुछ अर्ज करने हाजिर हुआ हूं। आप हमारे शाह ही नहीं अजीज भी हैं, और ये मेरा फर्ज है कि सही वक्त पर सही सलाह देना।
0: क्या सलाह देना चाहते हैं आप?
1: आप भागने के बजाय गोरों की फतह कबूल फरमा लें।
0: इलाही बख्श, आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं?
1: अच्छी तरह से आलीजा, चमकते सूरज को सूरज कहना गुनाह नहीं है। फिरंगी फतह याब हुए हैं और हमारे हिस्से में शिकस्त आई है, हमें कबूल कर लेना चाहिए।
0: आप चाहते हैं हिंदुस्तान के ताज तख्त को फिरंगियों के कदमों के सुपुर्द कर दूं?
1: फिरंगी आपके इंतजार में नहीं बैठे हैं, उन्होंने अपनी अक्ल और शुजात से हिंदुस्तान का ताज तख्त हासिल कर लिया है। हमारी अक्लमंदी इसी में है कि गोरों की मातहती कबूल कर लें और ठाट से पेंशन लेकर चैन की जिंदगी गुजारें।
0: ऐ पाक परवरदिगार, तमाम आलम में अपना इकबाल बुलंद रखने वाला सल्तनत मुगलिया का शाह जफर फिरंगियों के दिए हुए रद्द मजालिम खैरात पर बाकी की उम्र गुजारेगा।
1: अस्ताखी माफ हो आलीजा, आप भाग कर जाएंगे भी किधर? मुल्क पर गोरों का कब्जा हो चुका है, अपने बेकसूर बच्चों और मलिकाए आलिया के बारे में तो तसव्वुर फरमाएं।
0: क्या फिरंगी हमें इज्जत बख्शेंगे?
2: आलीजा, क्या सुन रहे हैं मेरे कान? तशरीफ ले चले, सवारी तैयार है।
3: बख्त खां, आलीजा ने बियाबानों पहाड़ों में भटकने के बजाय फिरंगी की हुकूमत कबूल फरमाई है। इनकी जानो माल और इज्जत की जिम्मेदारी मैंने ली है।
2: मक्कार गद्दार फरेबी इलाही बख्श, तुम यहां तक गिरोगे मैंने सोचा भी ना था।
3: बख्त खां, जबान को लगाम दो।
2: तलवार म्यान में रहने दो, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, वरना इसके पानी से तारुफ करा देता। आलीजा, लम्हा भर भी यहां ठहरना हमें नुकसान पहुंचा सकता है।
0: बख्त खां, हम बहुत थक गए हैं, टूट चुके हैं। हमारे अज्जा ने फिरंगी का लोहा मान लिया है। एक अकेला बख्त खां और ये ज़ईफ बादशाह जफर।
2: सरकार, देर न फरमाए, तशरीफ ले चले।
3: बख्त खां, बादशाह तनहा नहीं है, अहलो आयाल के बारे में भी सोचना हमारा फर्ज है।
2: मेरे सरकार, एक एक लम्हा कीमती है।
0: बख्त खां, हमें मलिकाए आलिया और अपने फर्जंदगान से मशवरा कर लेने दो।
2: सरकार, क्या ये आखिरी फैसला है?
3: बख्त खां, तुम सिर्फ एक सिपहसालार हो, हदें तोड़ने की कोशिश ना करो।

0: खामोश हैं अलीजा। इलाही बख्श।
1: क्या शोर है इलाही बख्श?
2: वो आ गए।
1: तुम हंस रहे हो? कौन आ गए?
3: फिरंगी।
2: मैं देखता हूँ।
1: मलिक है अलीजा।
4: मेरे सरताज।
1: हम आखिरी दाव हार गए। फिरंगी ने हमें घेर लिया है।
4: बख्त खान को बुलवाएं।
5: बख्त कैन। बख्त कैन गुजरा वक्त हो गया, उसी वो अब नहीं आएगा। बादशाह की खिदमत में हटसन आया है।
1: मलिका, आप पर्दे में तशरीफ ले जाए। इलाही बख्श कहाँ है? उसने हमसे कहा था
5: वो हमारा खास आदमी। तुम्हारा एड्रेस पता वही दिया, तुमको भागने से उसी ने रोका।
1: मक्कार इलाही बख्श।
5: चीखने से क्या फायदा, तुम हमारा कैदी प्रिजनर। इलाही बख्श पाएगा इनाम और तुमको मिलेगा सजा।
1: किस जुर्म की सजा मिलेगी हमें? इलाही बख्श ने तो कहा था।
5: What did he say?
1: अंग्रेज हमारी इज्जत करेगा।
5: इज्जत? मर्डर का इज्जत? तुमने, तुम्हारा फौज ने अंग्रेजों को मारा है।
1: हमने उन लुटेरों को मारा जो हमारा मुल्क लूटकर हमारी आजादी कुचल देना चाहते थे।
5: बागी का मिजाज अभी तक ठीक नहीं हुआ। डू यू नो बादशाह? तुम जानता है मौत का बदला मौत होता है। अंग्रेज सात समंदर पार करके हिंदुस्तान आया और तुमने उसको मारा। हम भी तुमको तुम्हारी कंट्री से, तुम्हारे वतन से दूर ले जाकर मारेगा।
1: हमें मौत से न डराओ फिरंगी। हम वतन परस्तों के लिए मौत एक महबूब होती है। दुआएं दो गद्दार इलाही बख्श को कि तुम मां बदौलत के रूबरू खड़े हो, वरना फिरंगी ने हमेशा कदमबोसी की है और तोहफों के साथ अर्जदास्त पेश की है।
5: I know, हम हेटिकेट भूला नहीं। बादशाह से कैसे मिला जाता है, हम आज भी गिफ्ट तोहफे के साथ ही आया है। सोल्जर एल्बर्ट, बादशाह की खिदमत में तोहफा गिफ्ट पेश करो। बादशाह हम बाहर जाता है, तुम अपना बेगम के साथ तोहफा कबूल करो।
4: या रब्बुल आलमीन, ये क्या हो रहा है? क्या रख गया है ये फिरंगी इस तख्त में?
1: मलिका, यकीनन ये शाह जफर के साथ कुदरत का कोई खौफनाक मजाक है। तख्त से खनपोश तो हटाएं। अच्छा हुआ आप बेहोश हो गई। हम अकेले इस गम को सहेंगे। हमारे कलेजे के टुकड़े फर्जंद मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान के सर कलम करके बतौर तोहफा फिरंगियों ने हमें भेजा है। तो जहां के मालिक तू ही फैसला कर, हमारे लगत जिगरों के सर हैं या हिंदुस्तान की आजादी के कटे हुए गले। मेरे बच्चों, गमों से चूर ज़ईफ बेबस बेकस ये बाप तुम पर फातिहा पढ़ने के बजाय ये ऐलान करता है कि हिंदुस्तान फिरंगी से इस वैश्याना बेरहमी का बदला लेगा। जरूर लेगा। आज नहीं तो कल। आज नहीं

0: तोहफा, अभी आपने ये नाटक सुना। मूल कहानी मधुकर गंगाधर की थी और रूपांतर जोहरा मिर्जा का। नाटक निर्माण में सहायिका थीं चित्रलेखा जैन। तकनीकी सहायता विनायक तडवलकर ने प्रदान की। निर्देशक थे लोकेंद्र शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम भूमिकाओं सहित इस प्रकार हैं: बेगम जीनत महल, बिरजिस दोस्त, रुखसाना शहनाज अख्तरी, इलाही बख्श कमल शर्मा, बख्त खां क्यू एन कश्मीरी, हडसन किशोर कपूर और बहादुर शाह जफर विनोद शर्मा। नाटक तोहफा विविध भारती के मुंबई स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो, 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
4: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आई,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
4: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कॉमिक क्रिएटर है।
5: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
5: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
5: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। साय के 4 बज चुके हैं और हमारे केंद्र से आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से
1: रिले किया जा रहा है। उनकी यादों के

0: निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की दूसरी कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं इस बातचीत का तीसरा भाग।
1: ये तो स्पर्श की बातें हुई, हालांकि स्पर्श के बारे में इतनी सारी बातें हैं और वो आपने अपनी आत्मकथा में बहुत विस्तार से लिखी हैं, पर इंटरव्यू में हम चूंकि संक्षिप्त बात कर रहे हैं तो हमने स्पर्श की तमाम बातों को

0: स्पर्श किया।
1: जी,
0: अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहा है एक छोटी सी चीज और करते हैं, फिर चश्मे बद्दूर की तरफ बढ़ते हैं।
1: ओके,
0: स्पर्श का स्मिता कनेक्शन, थोड़ी सी बुरी बात
1: फिर है। मायूस किस्सा है, बताती हूँ।
0: जी
1: बताती हूँ, ये जब मैं दिल्ली छोड़कर और अपनी नौकरी छोड़कर और अपनी क्या कहते हैं टेडी जिंदगी छोड़कर मैं एक स्ट्रगलर के रूप में बंबई में हाजिर हो गई।
0: हाँ,
1: फिल्म, क्योंकि फिल्म बनानी थी, अब नजरों के सामने वही था और फिल्म की राजधानी बंबई, तो बंबई आना लाजमी था, तो बंबई पहुंच गई। और इत्तफाकन मुझे बहुत अच्छा ये मिला, वहाँ दामू झवेरी नाम के बहुत बड़े गुजराती थिएटर के जाने माने वंडरफुल पर्सन, तो दामू भाई ने मुझे बिकट वाट वही वाट ये म्यूजिकल नाटक डायरेक्ट करने का ये सौंपा मुझ पर। हाँ, दैट वाज फिडलर ऑन द रूफ का वेंकटेश माडगुलकर ने किया मराठी अनुवाद। तो एनीवे वो मैं कर रही थी, लेकिन उसके पहले बम्बई पहुँचते ही अब नाटक तो करना ही था, नाटककार थे तो, और तब स्मिता मिल गई और ओमपुरी मिल गया।
0: वाह।
1: और ओमपुरी तो बहुत ही स्ट्रगलर था उन दिनों, मतलब कुछ भी डेला भी उसने नहीं कुछ तब तक किया था, और स्मिता का नाम जरा जरा हो रहा था क्योंकि टेलीविजन में वो निवेदिका थी वगैरह वगैरह, और शायद शाम के साथ एक आध फिल्म शुरू हुई, लेकिन स्मिता का जरा सा नाम हो रहा था, ओमपुरी का नहीं था, मेरा भी नहीं था बम्बई में। हम तीनों ने मिलकर सोचा कि कुछ थिएटर किया जाए, और मेरे पास महेश एलकुंसवार का बहुत बेहतरीन नाटक था वासना कांड, जो मैंने दिल्ली में खेला था, कुसुम हैदर ने रोल किया था उसमें, लाजवाब रोल किया था बहुत, और वो प्रोडक्शन भी खुद नहीं कहना चाहिए लेकिन बहुत बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन हुआ हमारा, और लोग दंग रह गए, बहुत बहुत ही जिसे कहते हैं कि निस्तब्ध हो गए शो देखने के बाद, ऐसा सन्नाटा सा हुआ ऐसे, इट वॉज अ फैबुलस एक्सपीरियंस। तो एनीवे मैंने कहा कि मुंबई में ये करते हैं, और NCPA के एक्सपेरिमेंटल थिएटर में हमने ये नाटक किया। अब मेरे इतने साल हो गए इन तीनों चारों फील्ड्स में काम करते, टेलीविजन, स्टेज, थिएटर, फिल्म, रेडियो, लेकिन व्यवहार किस चीज सिखाते हैं ये अभी तक मुझे नहीं समझ में आया।
0: जी,
1: इसको भी मैं मेरे नाना को और मेरी माँ को मैं दोष देती हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुझ पर इतना वो किया कि ये बहुत पैसे के बारे में सोचना बहुत बुरी बात है, तुम अपना काम करो, काम में आनंद लो, काम में मजा लो, लोगों को देखो, लोगों को समझो, लोगों से प्यार करो वगैरह, पैसा क्या चीज़ है। और कभी उन्होंने मेरी तनख्वाह कितनी है उनको नहीं मालूम था आखिर तक, कितना माँ ने पूछा ना नाना ने कभी भी पूछा कि कितने पैसे, मतलब पैसों की बात ही नहीं होती थी, और मैं अनाड़ी के अनाड़ी रह गई। तो मुझे लगता था काम चलाने लायक कुछ मिले तो ठीक है, गुजारा हो जाएगा, लेकिन इस नाटक के लिए पैसा तो चाहिए ना स्टेज करने के लिए, तो वो कुछ ढेला भी नहीं था किसी के भी पास, ओम तो स्ट्रगलर, स्मिता बेचारी नई नई आई हुई, पर हमने किसी तरह इधर उधर जुगाड़ करके पता नहीं कैसे किया, लेकिन वो नाटक हमने किया। और उस दरमियान मेरी स्मिता से बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई, और उसकी एक वजह ये थी कि हम दोनों को बिल्लियां बेहद पसंद, स्मिता अपनी बिल्लियों के बारे में बताए, मैं अपनी बिल्लियों के बारे में, और ओम सुनता रहा सुनता रहे, तो हम बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए। फिर मैंने स्मिता को बताया, और ये तो मेरे पास था ही पटकथा इसकी थी, मैंने कहा स्मिता ऐसे ऐसे एक कहानी है मैंने लिखी हुई, एंड देयर इज अ लवली रोल फॉर यू, एंड आई वुड लव यू टू रीड दैट पटकथा। तो स्मिता ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, पढ़ूंगी ना, हाँ, और बात वहाँ तक रह गई। फिर चार पाँच दिन बाद मैंने फिर कहा स्मिता तुम पढ़ोगी ना, हाँ हाँ पढ़ूंगी, और फिर मुझे ऐसे लगा कि ये आउट ऑफ पोलाइटनेस ये हाँ हाँ कर रही है, उसको कोई सचमुच की दिलचस्पी नहीं है इसमें, और वो बेचारी इतनी शरीफ है कि वो मुझे नहीं कहना चाहती कि तू क्या लिखेगी, मुझे नहीं पढ़नी तुम्हारी कहानी वगैरह, तो ये तो कहेगी नहीं, और थी वो थोड़ी सी अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट जिसको कहते हैं। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि शायद ये ऐसा तो नहीं समझ रही कि हमारी दोस्ती का मैं नाजायज फायदा उठा रही हूँ, क्योंकि हमारी दोस्ती है मैं अपनी फिल्म के लिए उसको मैं गले में डाल रही हूँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज I had my own self-respect naturally, मैंने कहा उसको ये नहीं लगना चाहिए, ये गलत होगा। फिर मैंने कहा ऐसा करते हैं, let's wait, उसको अब पूछने दो, दो तीन बार तो मैंने जिक्र किया है, अब उसको पूछने दो कि सही अगर है कहाँ कमबख्त तेरी फिल्म, पढ़ने तो दो, वो कुछ नहीं, एक नहीं दो नहीं, स्मिता से कुछ भी पूछताछ नहीं हुई, और फिर मैं मन में समझ गई कि इसको इंटरेस्ट नहीं है। और तब तक ये नसीर की बात हुई थी, शबाना की बात हुई थी, और शबाना को जब कहा तो शबाना ने ये 4 फुट ऊंची छलांग लगाई, हाय मुझे एक जप्पी मारी, सही फैंटास्टिक, ओ यस यस।

0: मतलब बिल्कुल उल्टा, जो एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट।
1: एक्सट्रोवर्ट
0: तो शबाना ने इतना मुझे, मतलब मैं तो आसमान में जाना बाकी था खुशी से, इतना शबाना ने उसमें खाया दिलचस्पी। तो फिर शबाना तय हो गई और फिर धीरे धीरे इधर से सुनाई देने लगा कि स्मिता नाराज है। स्मिता ने कहा कि सई ने तो मुझसे बात की थी। मैंने कहा बात तो सच है, मैंने बात की थी, लेकिन उसने आगे नहीं ना बात कुछ की, तो मैं अकेली कब तक बात करती रही, लेकिन उससे मेरी बात नहीं हुई। फिर एक पार्टी में पूना में, वो मुझे अच्छी तरह याद, चाय पार्टी, और सुभाष अवसठ करके हमारे कॉमन दोस्त थे स्मिता के, मेरे जो चित्रकार हैं खुद, सुभाष के घर पार्टी थी तो स्मिता थी, इतने दोनों बात स्मिता। तो मैंने कहा चलो आज मैं बात करूंगी इससे, तो मैं पास गई, मैंने कहा स्मिता नाराज हो? तो उसने मुझे बड़ी ठंडी निगाह से देखा, उसने कहा हाँ, और पीठ फेरी। And that was it. That was the last conversation we had. फिर कभी हमारी ना मुलाकात हुई, ना बातचीत हुई, ना मैं उसे समझा पाई कि क्यों ऐसा मैंने नहीं पूछा। मेरी अपनी तरफ से कुछ, मैं अपनी ये करती ना तरफदारी, तो वो नहीं करने को मिली और वो चल बसी। और मुझे ये आज तक बहुत अफसोस होता है कि ये बड़ी ज्यादती हुई।
1: बिल्कुल, ये थोड़ी दुखद बात है। स्मिता की याद में एक गाना सुनते हैं, और एक ऐसी फिल्म का जिसमें स्मिता और शबाना दोनों साथ में थे,
0: अच्छा,
1: महेश भट्ट की फिल्म अर्थ,
0: हाँ, अरे वाह,
1: है ना, सुनते हैं।

0: चश्मे बद्दूर की तरफ आ रहा हूं अब मैं, और एक दिलचस्प बात यह कि चश्मे बद्दूर भी आपके ही एक टेलीविजन प्रोडक्शन से प्रेरित थी, धुआं धुआं से।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वो पूरी दास्तान जो है अब आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि चश्मे बद्दूर आपकी आइडेंटिटी से चिपक गई है। दूसरी चीज ये है कि हमारे सारे सुनने वाले इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर आप कहीं किसी के घर बैठने जाते हैं और वहाँ चश्मे बद्दूर टेलीविजन पे चल रही है तो आप उठ नहीं सकते, वो एक तिलस्म है।
1: क्या बात है। परसों मुझे एक पुरस्कार मिला,
0: जी गौरव अवार्ड,
1: जी
0: उसकी बधाई भी देनी बाकी है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि अभी तक बधाई
1: नहीं देता हूँ। वो जी अवार्ड, और वो जी उन्होंने एक बड़ा प्यारा काम किया कि अवार्ड मुझे किसने दिया, दीप्ति नवल ने।
0: वाह वाह वाह।
1: तो दीप्ति को देख के, और उन्होंने मेरे प्ले का नाट्य गौरव अवार्ड मिला मेरे नाटक के लिए, तो उसमें मेरे जासवंदी नाम का एक मेरा नाटक है, उसमें से एक उन्होंने 20 मिनट का सीन भी किया स्टेज पे, तो मैं भी दंग रह गई। दीप्ति ने ये मुझे दिया अवार्ड, और दीप्ति ने कहा कि मैंने चश्मे बद्दूर की, फिर मैंने कथा की, और उसके बाद इतनी सारी मैंने फिल्में की, अच्छी अच्छी, ये वो बहुत फिल्में की, लेकिन लोग मुझे भूलने नहीं देते हैं। मुझे कहते हैं हाँ चश्मे बद्दूर, हाँ हाँ कथा, कहते ले दे के सही की ये दो फिल्में जो चिपक गई है, कुछ मतलब नकली गुस्सा दिखा रही थी। इतना प्यारा उसने ये किया कि वो ये दो ले दे के फिर इन दोनों फिल्मों पर आके मामला रुक जाता है कि अरे बाबा मैंने और भी बहुत काम किया है जिंदगी में, लेकिन नहीं, लोग नहीं भूलने देते हैं, कहते हैं। और सच कहूँ तो मैं भी नहीं भूल पाती हूँ, ये भी कहा दीप्ति ने, बहुत प्यारा भाषण किया, वेरी स्वीट। तो ये स्पर्श तो हुई मेरी फिल्म, जिससे काफी सराहा गया, अवार्ड मिले, ये वो, और बहुत तेरे फिल्म फेस्टिवल्स में बुलाया गया, साथ साथ मुझे भी। तो मैं मॉस्को पहुंची, मॉस्को में फिल्म ये दिखाई गई, और प्यारा सा किस्सा सुना, क्योंकि वो फिल्म देख के बाहर निकल रहे थे लोग, और उसमें B.R. चोपड़ा थे जिन्होंने मेरी पटकथा को मना किया था बड़े प्यारे ढंग से, मतलब मुझे कोई ये नहीं है, आई हैव नो कंप्लेंट, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये बड़ी एपिसोडिक फिल्म है। अब आज तक मैं ये समझी नहीं कि एपिसोडिक मतलब क्या कहना चाहते थे, लेकिन बाहर आते ही उन्होंने मुझे देखा, बड़े प्यार से मेरे हाथ पकड़े और कहा सही, तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया,
0: वाह वाह
1: क्या प्यारी फिल्म बनाई है, और क्या चाहिए, मतलब इतना बड़े दिल से मानना कि मैं गलत था, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया, विच वॉज वंडरफुल। एनीवे वो फिल्म और एक जन को अच्छी लगी, और वो थे गुल आनंद।
0: क्या बात है।
1: गुल आनंद भी वहाँ थे, और वो तो बिल्कुल हम कहते थे ये रशियन फिल्म इंडस्ट्री के जामात है, क्योंकि वो बहुत फिल्में रशियन लेके उनको डब करके वो चलाते थे। ही वॉज बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूटर, बट ही हैड ट्राइड हिज हैंड एट वन फिल्म खट्टा मीठा, विच वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल, और उनको फिर चस्का लग गया प्रोड्यूसर बनने का, और उनको ये स्पर्श बहुत अच्छी लगी। फिर मुझे मिले, जो भी बातें करनी थी अच्छी फिल्में वगैरह,

0: के उन्होंने कहा कि सही, आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग वेरी सीरियस विथ यू, कल सुबह मिलते हैं। मैंने कहा जरूर, और हम दोनों एक ही होटल में ठहरे थे। तो उन्होंने कहा ये होटल के सामने बहुत बढ़िया पार्क है, बड़ा विशाल पार्क, गोर्की पार्क। हाँ, तो हम पार्क पे मिलते हैं, वहाँ घूमेंगे, बात करेंगे। मैंने कहा चलेगा। तो हम सुबह सुबह मिल गए, और चक्कर लगाते लगाते उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम वो फिल्म लिखो और तुम वो फिल्म डायरेक्ट भी करो। तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन वो फिल्म सीरियस नहीं होनी चाहिए, कॉमेडी बस, बिल्कुल 100% कॉमेडी चाहिए। ऐसी कोई कहानी है तुम्हारे पास? इत्तेफाकन मेरे पास थी ऐसी एक कहानी, बल्कि एक फिल्म बनाई हुई थी, टेलीफिल्म, कॉल्ड धुआं धुआं, जैसे कि आपने बताया। वो फिल्म थी तीन मुस्टंडे नौजवान कॉलेज स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हैं कॉलेज में, मस्ती मारते हैं, ये करते हैं, क्लासेस डुबो कर फिल्में देखते हैं, मटर गश्ती इधर उधर, लड़कियों का पीछा करना, सिगरेट पीना, और इसलिए धुआं धुआं कि वो हमेशा वो धुएं में क्या क्या देखते रहते थे, रंगीन सपने कि मैं फला करूंगा, मैं ढिमका करूंगा, ये वगैरह वगैरह।
1: ये कोई रियल लाइफ इंसिडेंट जैसा कुछ ऑब्जर्वेशन था?
0: ऐसे नहीं कह सकते, हो सकता है, पता नहीं क्या क्या देखते हैं क्या क्या नहीं, या हो सकता है थोड़ी किसी हद तक, और फिर थोड़ा सा मैंने उसमें नमक मिर्च डाला
1: जी।
0: अच्छा,
1: शानदार वाला।
0: तो ऐसे तीन दोस्त, और मैंने फिर गुल को ये कहानी सुनाई, कहा कि ये बहुत ही टेलीविजन में हिट हो गई थी, उसके 6-7 बार रीटेलीकास्ट हुआ वगैरह वगैरह लोगों की मांग पर। तो गुल ने कहा बहुत ही बढ़िया है ये कहानी, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बात है सही, अपन तो कमर्शियल फिल्म बनाने जा रहे हैं, अब ये तीनों को बेकार बकवास लोग मत दिखाओ, उसमें से एक जरा अच्छा होने दो, एक हीरो अपना। दो तो बेशक तुम्हारे मुस्टंडे जो नालायक लोग को दिखाते हैं, लेकिन उनमें से एक जरा ढंग का आदमी जो सीरियस है, जो पढ़ता लिखता है, जो अच्छा है आदमी, हाँ ऐसा दिखा सकते हो, तुम बदल सकते हो थोड़ा। मैंने कहा क्यों नहीं, मैंने ही तो लिखा है, तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो ये फिर तुम लिखो, कब कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा एक महीना तो लग ही जाएगा इसे ज़रूर। तो अभी हम जा रहे हैं 3-4 दिन में वापस भारत, तो आज तारीख ये है, करेक्ट 1 महीने बाद मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, तब तक तैयार होगी कहानी? मैंने कहा हाँ होनी चाहिए। तो हम लोग फिर एक दूसरे से विदा लेके निकल गए। भारत आके मैंने इधर उधर बताया, फिर मैंने सोचा कि ये फिल्म वाले तो होते ही बड़े लंबी बातें करने वाले, ये कुछ होने वाला नहीं है ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके कि तुम ये लिख लो, फला करो, मैं अब मेहनत करूं, लिखूं दोबारा, टाइम अपना बर्बाद करूं, और वो फोन तक नहीं करेंगे, ये मुझे पक्का मालूम है, फिल्म वाले हैं आखिर। तो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया।
1: अरे बाप रे।
0: हाँ, और उसी तारीख को सुबह फोन, हेलो मैं गुलानंद, बन गई लिख ली मेरी हवा खुश? मैंने कहा नहीं अभी क्या है गुल, थोड़ी सी बाकी है। तो, लेकिन ऐसे करो प्लीज मुझे एक हफ्ता और दे दो। दे दिया उन्होंने कहा। फोन जैसा मैंने रखा, अपना कलम उठाया, रिसीवर रखा, कलम उठाया, और वाकई में 4-5 दिन में फिर मैंने वो थोड़ा सा बदल रहा था, वो बदल दिया, और वो कहानी दिखाई जो उनको बहुत पसंद आई, और फिर वो कुछ कुछ बताते गए, उसमें भी गुल का काफी ये था,
1: योगदान,
0: एग्जैक्टली, योगदान बहुत था। कि उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, और वो लड़की वो भी नौजवान, हमको और भी तो चाहिए, कि हम चाहते हैं कि सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, उनके मौसी मौसा मौसी आए, मामा आए वगैरह वगैरह। मैंने कहा समझ रही हूँ, इसे इसकी कुछ बड़े बुजुर्ग कैरेक्टर भी तो आने चाहिए ना। फिर मैंने एक दादी माँ डाली, एक नानी, एक बाप डाला,
1: भाई डाला,
0: एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। तो ऐसे लोग डलते गए। फिर मैंने एक दिन गुल से कहा गुस्से से कि मुझे लगता है मैं बनिया बन गई हूँ और पुड़िया बांध के ये कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छी कहानी बन गई। और स्पर्श के बाद तो ये अनुभव बहुत ही अनोखा था कि जो हम मांगे, मतलब किसी हद तक, तो वो एकदम पेश हो जाता था।
1: अच्छे प्रोड्यूसर की
0: निशानी, अच्छे प्रोड्यूसर, क्योंकि वो चाहता था अच्छी फिल्म बने। अब यहाँ ऐसे लगा कि नहीं, एक ही टीम में है हम लोग, और फिर फिल्म बन गई, और बहुत अच्छे कलाकार मिले, फारूक, और वहाँ भी गुल बहुत ही, मतलब ही वॉज अ पक्का प्रोफेशनल, ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू सेव मनी, बट ही नेवर डिड द फिल्म और एनीवन एनी हार्म। फिल्म को मार के उसने नहीं कुछ कहा, उन्होंने एक्टर्स भी चुने, अब दीप्ति नई नई आ रही थी, बट ही सॉ कि यस इस लड़की में बहुत टैलेंट है, हाँ उसको लिया, और नेचुरली एट दैट टाइम दीप्ति वाज डाइंग टू मेक अ गुड फिल्म। हाँ, सेम विथ फारूक, सेम विथ
1: रवि,
0: रवि

0: तो कुछ भी नहीं किया था, मेरे कहने पर रवि को ले लिया, सिर्फ मेरे कहने पर। मैंने कहा नहीं नहीं इसको तो लेने, कुछ दो तीन लोगों के लिए मैं अड़ गई थी, एक वो रवि बासवानी था और दूसरी लीला मिश्रा थी।
1: क्या
0: मैंने
1: बात
0: कहा
1: है।
0: ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, दादी अम्मा मुझे कोई, तुम चाहे जो भी कहे उनका तुम किराया दोगे। तो वह हंस के कहता है हाँ ओके बाबा, ले लिया उसको। क्योंकि बाकियों को तो, रवि को बेचारी को 3,000 पूरी फिल्म का उसका मेहनताना,
1: राकेश बेदी,
0: वो नहीं मुझे मालूम, क्योंकि वो गुल ने लाया था राकेश को। लेकिन उसने
1: फारूक कहां से, किस तरह कास्ट हुए थे?
0: फारूक ने गमन की थी ना,
1: जी,
0: गमन
1: मुजफ्फर अली की।
0: मुजफ्फर की, और फिर देखा था उधर उधर। और फारूक अच्छा एक्टर तो था ही, थिएटर करता था, तो गुल ने वो जरूर देखा होगा, जाके चुपचाप उनके प्लेस देखे होंगे, इधर देखा होगा उधर, वो तो बहुत करता था। फिर व्हेन ही वाज कन्विंस्ड कि यस ही इज अ वेरी कल्चर्ड एंड अ वेरी गुड आर्टिस्ट, तो उनसे बात की और फारूक भी मान गए खुशी खुशी। और फारूक के साथ भी मेरी बड़ा अच्छा दोस्ताना हुआ, बहुत प्यारा आदमी था, बहुत ही नेक और प्यारा इंसान,
1: दो फिल्में, और
0: बहुत
1: वो
0: बहुत अच्छा
1: आगे बात
0: आदमी।
1: करेंगे कि कैसे
0: हाँ
1: कथा में
0: हाँ
1: नसीर और फारूक आपसे लड़ाई करते थे कि कैसे रोल दिए, है ना,
0: या
1: वो आगे बात करेंगे। गाना सुनते हैं।

0: सईद जाफरी का किरदार कहां से आया और ये पूरी फिल्म में आप ये देखिए कि कितना महत्वपूर्ण पक्ष बन गया।
1: हाँ हाँ, सईद का ना बहुत बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो था ही उस लायक ही, वाज अ ट्रेमेंडस एक्टर विद अ मेजर पर्सनालिटी, बिग पर्सनालिटी, एंड ही वाज वेरी सिंसियर टुवर्ड्स हिज रोल, टुवर्ड्स हिज मिशन। और वो भी अब गुल की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने सईद को पकड़ा कि वो वेस्ट एंड से लंदन में करते थे थिएटर और फिल्में बीबीसी के लिए इधर उधर, और वो अब चाहते थे यहाँ बॉलीवुड में आजमाना कि क्या कुछ बन सकता है क्या। वो देखने आए थे सईद, और गुल ने बराबर अपना जाल फांसा और सईद को पकड़ा लिया। और अब अच्छा प्रोड्यूसर तो था ही गुल, मतलब नाम उनका अच्छा था, तब तक स्पर्श के बदौलत मेरा भी थोड़ा सा नाम हुआ था, तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी इन द फिल्म। एंड तब तक वो एक कैरेक्टर बन गया था पान वाले का। हाँ, उसने कहा फिर मुझे सईद ने, भाई वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके? जैसे अरे वहाँ के पान वाले देखेंगे। हाँ, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया
1: एक और आ गया। तो मैंने कहा चलो चलते हैं फिर मैं उनके साथ, और फिर हम दोनों दिन भर वो देखता रहे, हर ठेले में जाके उनके साथ बैठना, उनके साथ गुफ्तगू करना, उनकी बातें सुनना, उनके कुछ कुछ लफ्ज भी वो लिखते थे पुरानी दिल्ली वाले, जो जुबान थी ना दिल्ली की वो भी उन्होंने उठाई और कमाल का ये किया। और फिर अपने नाम पे वो बहुत ही वो थे स्ट्रिक्ट कि नाम अच्छा चाहिए मेरे रोल को। तो फिर हमने फुफन और याकूब और लच्छन और ये वो, हाँ कहते ना घंटी नहीं बजी, नहीं नहीं घंटी नहीं बजी। और फिर हमने कहा कि जाओ अब तुम अपने आप ही ढूंढ लो, अब हमारे नाम खत्म हो गए। फिर एक दिन सुबह सुबह मुझे फोन आया, काफी सुबह की, मैंने कहा हेलो आदाब, मैं ललन मियाँ बोल रहा हूँ। तो वो नाम मिल गया। तो क्या रोल किया सईद ने, हाँ बहुत बहुत ही मजा आ गया। एंड द होल थिंग वाज वंडरफुल। लीला मिश्रा भी क्या कमाल की एक्ट्रेस और वंडरफुल पर्सन।
0: बिल्कुल बहुत सही जी। जब चश्मे बदूर की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। मुझे लगता है पहले शूटिंग लोकेशंस की बात करते हैं। जितनी खूबसूरती से दिल्ली आपने दिखाया है और वो पूरा माहौल आपने जिंदा किया है, वो लोकेशंस कैसे ढूंढी थी और उससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बात?
1: ढूंढना क्या था यूनुस, वो तो सामने आ खड़ी होती थी।
0: अच्छा,
1: अरे हमें इधर नहीं देखा, हमको शूट करो। क्योंकि चाहे आम सड़क हो कोई दिल्ली की, या चाहे पुराना बाजार हो, पुरानी दिल्ली का कोई माहौल हो, या कोई खूबसूरत सा बाग हो, गार्डन हो, चाहे लोधी गार्डन हो, चाहे तालकटोरा गार्डन हो, चाहे जो भी, और इतने खूबसूरत सब नजारे होते थे कि क्या ले क्या नहीं, कैमरा पगला जाता था सचमुच। इसलिए वो कोई मुसीबत ही नहीं हुई। और एक तो खंडहर दिल्ली के जो पुराने टूटे फूटे फोर्ट्स वगैरह, वो क्या मतलब बात, बहुत ही वो थी, दुकानें छोटी छोटी, और फिर बरसातियाँ, वो बरसाती भी अपने आप में बड़ी प्यारी चीज होती थी, है ना? तो वो भी हमें बहुत सुंदर बरसाती मिली, और घर भी इतने अच्छे मिले। फॉर दैट आई मस्ट गिव क्रेडिट टू रवि बासवानी, क्योंकि रवि तो पक्का दिल्ली का बंदा था, दिल्ली में रहने वाला, और उसके पीआर बोलो तो इतना अफाट जाल था, विस्तृत जाल था उसके दोस्ताने का। तो एक से बढ़कर एक रवि ने लोकेशंस लाए। नसीर का घर जो था वो दैट वाज प्रोफेसर आर्याज लिटिल बंगलो विथ ब्यूटीफुल गार्डन ऑल अराउंड इट एंड अ वेरी क्यूट लिटिल हाउस इन बिटवीन, जो लगे बिल्कुल कि हाँ ये प्रोफेसर का घर होगा।
0: बिल्कुल, और वो जिस तरह से वो किचन
1: बड़ा टेस्टफुली किया हुआ। फिर शबाना का मतलब कविता का जो होता है फ्लैट बरसाती पे ऊपर, हाँ अगेन टेरेस है चारों ओर, उस पे छोटे छोटे पौधे लगे हुए, उसका इकबाना उस पे लगाया हुआ, तो वो भी एक बहुत खूबसूरत सा मिल गया। दोस्तों का था वो एक घर। और तीसरा रहा वो मंजुल जो कविता की दोस्त होती है, उनका घर एक शानदार है, जो संकन लिविंग रूम है उसका। वो तो बहरहाल एक खुद आर्किटेक्ट थे, बड़े जाने माने मशहूर दिल्ली के, उनका अपना घर था जो उन्होंने हमें शूटिंग के लिए दे दिया। तो ऐसे एक एक एक एक होकर वो लोकेशंस बहुत सुंदर बने, और इसलिए दिल्ली जो दिखी चश्मे बदूर में वो निहायत खूबसूरत दिल्ली थी। बड़ा प्यारा हसीन सा शहर। किसी ने मुझे कहा कि तुमने तो ये एड फिल्म बनाई सही दिल्ली के लिए, मैंने कहा नहीं, ये मेरा लव लेटर था दिल्ली को।
0: क्या प्यारी बात है, वाह। एक चीज ये है कि जो कमर्शियल सिनेमा है उसके प्रति प्यार की एक निशानी चश्मे बद्दूर में आती है, और वो आती है जब वो ड्रीम सीक्वेंस जैसा है जहां पर एक के बाद एक गाने आते रहते हैं।
1: हाँ,
0: जो आपने पूरा का पूरा पैरोडी बनाई,
1: मजाक उड़ाया था यार, रवि जो गाते हैं, रवि और दीप्ति मिलके
0: जी।
1: हाँ,
0: वो कमाल है जिसमें एक के बाद एक गाने आते हैं, कभी परवीन बाबी का गाना आ जाता है, तो कभी पुराने गाने चले आते हैं,
1: कभी जीनत अमान का आता है
0: जी, जी,
1: कभी देवानंद का, और वो
0: क्या कमाल, देवानंद वाला तो अद्भुत
1: किया भी उसने, वो ढीली ढाली चाल उसकी
0: जी,
1: और कभी दिल चाहे या माथा यारा में,
0: मैंने तो हाँ कह दी,
1: वो भी दीप्ति और रवि ने गाया, जो वो बहुत मजे मजे
0: शीशा हो या दिल, उसमें तो जो दीप्ति लगी है
1: वो बहुत अच्छा किया रहा उसने, बहुत सुंदर किया रीना रॉय का, बहुत खूबसूरत, तो वो करने में मजा भी बहुत आ गया, बहुत
0: जी। ये फिल्मी गानों से आपका प्यार भी दिखाता है।
1: एक बात बताऊं, वो जो उसमें ये था ना, आ जा
0: तीसरी मंजिल,
1: तीसरी मंजिल वाला गाना, तो वो दीप्ति से वो करवा रहे थे, और

0: दीप्ति ने थोड़ा सा इस सिलसिले में परेशान किया। अगर कहीं पूरे मेरे दीप्ति के साथ जो ताल्लुकात हुए हैं उसमें अगर कहीं हमारी थोड़ी सी नोक झोंक हुई तो उसमें वो चाहती नहीं थी वो गाना गाए और ये करे इस तरह कुछ वीक पहने वगैरह। पता नहीं क्या उसके बीच बीच में कभी भूत सवार होता था, कभी कम ही लेकिन कभी कभी होता था। तो फिर गुल ने तब के डांस मास्टर जो इंडस्ट्री के बड़े माने हुए विजय ऑस्कर करके दोनों थे, तो उसमें से ऑस्कर को रखा उन्होंने और ऑस्कर का ये काम था कि दीप्ति से
1: डांस करवा ले,
0: डांस करवा तो वो एक सन एंड सैंड में कमरा बुक किया था गुल ने और वहां हमारा दिन भर चलता था। तब VHS का जमाना था
1: जी,
0: तो VHS एक मंगवाया मशीन और VHS कैसेट थी जिसमें ये तीसरी मंजिल वाला गाना बार बार हमने इतनी बार वो सुनाया। उसमें डांसर्स भी हैं, एक तो आशा पारिक नाचती है और उनके साथ एक फाइल होती है दाएं बाएं, हाँ आठ आठ लोगों के, आठ मर्द इधर आठ मर्द उधर और नाचने वाले सब। तो वो हम बार बार देखते थे और मैं ऑस्कर को बहुत बार समझाती थी क्या चाहिए। मुझे लगता है कि ये मेरी बुरी आदत है, हालांकि तब किसी दोस्त ने या कलाकार ने कभी नहीं मुझे कहा, लेकिन अब बच्चे कहते हैं मुझे कि तुम वही एक बात इतनी बार बताती हो कि आदमी तंग आ जाता है, ये मुझे अभी वो कहते हैं। तो उस हिसाब से मैं बार बार बेचारे ऑस्कर को बताती रही कि ऑस्कर ये ऐसा चाहिए, देखा ना ये कैसे ये आठ जने नाच रहे हैं, ये देखा ना ये, तो ऑस्कर ऐसा मुझे चाहिए वगैरह। और वो बड़ा प्यारा बड़ा पोलाइट आदमी, हाँ हाँ सही है, सब कुछ सही, हाँ जी जी बिल्कुल यस यस सही, श्योर श्योर सही कहता रहे। फिर एक दिन मुझे लगता है ऑस्कर का भी दिल भरा है, उब गया वो भी और उसने फिर वो रोका VHS मशीन, ने कहा सही ये आठ जनों की लाइन देख रहे हैं ना जो मर्द नाच रहे दाएं तरफ, मैंने कहा हाँ, उसमें से तीसरा आदमी देखो पहचानती हो वो मैं हूँ मैंने कहा क्या, हाँ मेरे करियर की शुरुआत इस गाने से हुई है और तुम क्या मुझे बार बार बता रही हो ये करो वो करो वो करो, मैं चुप। फिर मैंने कहा जो करो मैं नहीं कुछ कहने वाली, तो इतनी मजे की बात होती है।
1: वाह वाह वाह क्या बात है। इस फिल्म में मंगेश देसाई का एक बहुत बड़ा योगदान है, उसका जिक्र हम करना चाहेंगे।
0: ये जब फिल्म पूरी हो गई और तब आपको तो मालूम है कि ट्रैक्स बनते हैं, आखिरकार जब बिल्कुल फिल्म बनने को आती है, मतलब जैसे ढक्कन उतारना होता है और भाप को निकलने देना होता है, तो ये सारे ट्रैक्स फिर एक ट्रैक पे जुड़े जाते हैं। तो हम राजकमल में पहुंचे क्योंकि तब से जो बादशाह था रीमिक्सिंग का या साउंड री रिकॉर्डिंग का बादशाह था मंगेश देसाई
1: जी।
0: मतलब इतने वो मशहूर थे कि हर कोई हर जना चाहे कि मंगेश देसाई का सिक्का हमारे फिल्म पे लगना चाहिए री रिकॉर्डिंग। और यहाँ तक कि सत्यजीत रे भी कोलकाते से उनका टाइम लेते थे, उनका शेड्यूल देख के उनका टाइम बुक करके वो खुद अपनी फिल्में लेके पहुंच जाते थे बंबई राजकमल में। हाँ
1: जी जी,
0: इतना मंगेश जी का नाम था। तो अब स्पर्श में जाहिर है विद द काइंड ऑफ मनी दैट बासु वाज गिविंग अस एंड द काइंड ऑफ कटिंग कॉर्नर्स वी वर डूइंग, तो ये सवाल ही नहीं था। हमारा ट्रैक इतना भद्दा था कि मैं क्या बताऊं, मतलब एक जगह तो अब कहने में कोई बात नहीं है, लेकिन तब मैं कभी नहीं कहा ये किसी को नहीं बताया कि कहीं कहीं जगहों पर पायलट ट्रैक भी हमने इस्तेमाल किया है
1: जी,
0: विच इज अनहर्ड ऑफ। ये कभी कोई नहीं करता, फिल्म वाला जो किसी नाम का फिल्म वाला हो वो कभी नहीं चाहेगा कि पायलट ट्रैक, मतलब भद्दा होता है नहीं, वो सिर्फ गाइडेंस के लिए होता है और फिर वो डबिंग किया जाता है, लेकिन डबिंग के लिए पैसे ही नहीं थे। तो एक दो जगह बिल्कुल हमने कि अब क्या करें, अब रहने दो पायलट ट्रैक नहीं पता चलेगा करके हमने दो तीन जगह स्पर्श में पायलट ट्रैक रखा। तो किसी ने कहा इनके पास जाओ मंगेश देसाई के पास, तो मैंने कहा पिटाई करवानी है मंगेश देसाई, तो उनका गुस्सा बहुत मशहूर था कि वो अगर बद्दा काम उनके पास ले जाओ ना तो वो ऐसे रीलों के डब्बे फेंकते थे बाहर से एकदम पूरा रील का रील बाहर, तो शर्म नहीं आती कैसे काम लेके आए हो मेरे पास। मैंने कहा वो मंगेश जी रील तो नहीं मुझे भी बाहर फेंक देंगे तो मैंने कहा उनके पास मैं कैसे किस मुंह से जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, तो नहीं गए। फिर हमने जैसा तैसा गया, हमें भी बहुत अच्छे मिले फिर बॉम्बे लैब में तब थे खन्ना साहब कर
1: जी,
0: वेरी वेरी नाइस कॉडिस, तो उन्होंने काम किया। एनीवे फिर चश्मे बद्दूर तो गुल ने कहा कि जरूर मंगेश जी के पास जाना चाहिए, उन्होंने फिर डेट वेट पकड़ के हम लोग मिलने गए। तो मंगेश ने मुझे देखा कहते फिल्म लेके आइए, पहली फिल्म लेके कैसे नहीं आई तो फिर मैंने बिल्कुल कह दिया उनको साफ साफ, मैंने कहा मंगेश जी सुना है अच्छा काम नहीं हो तो आप बाहर रीले फेंकते, तो मैंने हमारा इतना भद्दा था साउंड का सारा पूरा सिलसिला कि मैंने हिम्मत ही नहीं की आपके सामने आने की, अच्छा ठीक ठीक चलो तो फिर

0: दोपहर से काम शुरू करते हैं और फिर काम शुरू हो गया मेरा। और क्या बताऊं कि ऐसा मेल जो मतलब शायद ही मेरा किसी के साथ इतना मेल हुआ हो किसी व्यक्ति के साथ, किसी कलाकार के साथ, कि मतलब इट वाज फैंटास्टिक एब्सोल्युटली। एक बताती हूँ मैं बहुत प्यारा किस्सा। वो जो चश्मे बदूर जिन्होंने देखे है उनको वो मालूम है कि वो जो दो दोस्त होते हैं वो लड़की के मिलने के चक्कर में बाहर पड़ते हैं। हाँ, बड़ी बातें तो करते हैं कि हम यूं करेंगे, भाग जाता है बड़ा पानी पानी होकर, शर्मिंदा होकर निकल जाता है। दिन भर फिर वो इधर उधर मटर गश्ती पार्क में दिन बताता है, क्योंकि ऐसा मुंह लेके घर कैसे जाएगा, घर मतलब कमरे में दो दुनिया में ये दोनों बैठ के टिपिकल फिल्मी गाना गाते हैं। इस नदी को मेरा आयना मान लो, इंदु ने बहुत सुंदर गाना लिखा, तो वो दोनों ये ड्यूएट गाते दो गाना। तो मंगेश जी ने कहा कि सही ऐसा करते हैं, वो दोनों बार बगीचे में तो जाके बैठता है, तो क्यों ना ऐसा करे कि पहली बार जब मतलब असलियत है, शर्मिंदा होता है बेचारा, तब हम बैकग्राउंड पे कौवा डालेंगे काँ, काँ, काँ। और दोबारा जब वो ये शोरो शायरी वाली और फला निमका ये बड़े प्यार मोहब्बत वाले किस्से सुनाता है, तब हम कोयल डालेंगे बैकग्राउंड पे। क्यों, कैसे रहा? मैंने कहा ओह गजब, मैंने कहा कैसे रहा, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया मंगेश जी, क्या बात है। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, फिर काम हमारा चालू हो गया। और वाकई में उन्होंने कौवे ढूंढे, फिर कोयल ढूंढी, और वो साउंड ट्रैक पे आया, इतना मजे का लगा। और फिर करते करते जब हम सुन रहे थे, एकदम से उन्होंने रोक दिया रिकॉर्डिंग प्लेबैक। तो मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहते हैं सही, हम दोनों इतने खुश हैं, लेकिन शायद किसी के समझ में भी आएगा कि नहीं, क्या पता क्या कि शायद ही किसी के जो बहुत ही समझदार कलाकार किस्म का आदमी हो उसके समझ में आए, लेकिन आम आदमी के समझ में आएगा कि नहीं, क्या पता। कोई बात नहीं, तुम और मैं, हम तो खुश हैं ना। इसी को कहते हैं कला का आनंद। हमने तो यह आनंद खूब लिया, कोयल कौवा ये वो, बहुत खुश रहे हम, तो दिस इज इट, वर्थ इट। तो यू नो इट वॉज ब्यूटिफुल लाइक दिस। और दूसरी एक छोटी सी बात, उन्होंने कहा कि वो दोनों बंदे जो दोस्त हैं उस सीन को, लेकिन इसमें अनाउंसमेंट भी होगी तो क्या मजा आएगा, है?
1: वा, वा।
0: वो होता है ना कि आपकी पसंद वाला
1: जी।
0: मैंने कहा वेरी गुड आइडिया, ये जरूर जरूर। कहते फिर तुम ऐसे करो कि अच्छी डबर को बुलाओ और उससे अपन अनाउंसमेंट करवा लेंगे। वो बोलो, वो खास तरीका होता है उनका। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है, मैंने रेडियो में काम किया है, मुझे मालूम है। वो ओके, फिर दोपहर के बाद करेंगे, लंच के बाद। फिर लंच हो गया, मैंने कहा अच्छा आई तुम्हारी डबर? मैंने कहा हाँ आई, कहाँ है? तो मैंने कहा नहीं वो मंगेशी, मैं खुद ही करके देखती हूँ। तो उनका चेहरा इतना सा हो गया और मैं साफ साफ पढ़ पाई कि ये डायरेक्टर लोग ना समझते हैं कि सब कुछ वो कर सकते हैं, ये वो ये सब उनके जरूर दिमाग से गुजर गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं क्या है, वो एक तरीका होता है, उसका एक खास ये होता है वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं मंगेश जी, ऐसा करो कि आप देख लो, नहीं है तो बिल्कुल आप कह दो कि ये नहीं बात बनी नहीं, और फिर मैं कल सबसे पहले बुलाती हूँ, डोंट वरी। मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगी कि नहीं नहीं मुझे ही ले लो, नो। अच्छा चलो, फिर बड़ा बेमन से फिर मुझे स्टूडियो में धकेला उन्होंने, फिर मैं हेडफोन लगाए किया और फिर मैंने वो पढ़ा और बड़े नटखट ढंग से पढ़ा, बल्कि बीच में गलत भी किया और माफ कीजिए वगैरह ये भी कह के आगे गई
1: जी, जी।
0: और फिर वो सारा झुमरी तलैया वगैरह ये सब डाला और पूरी तरह मतलब उस अंदाज से। अब वहां इतना टाइम जो गुजारा था आकाशवाणी में तो यूं ही तो थोड़ी ना गुजारा था, तो वो मैंने सारा पूरा किया, फर्स्ट टेक ओके हो गया। और फिर वो भारी भक्कम दरवाजा खोल के मैं जैसे बाहर आई, दरवाजे में मंगेश जी ने दोनों हाथ जोड़े, कहते हैं मोहतरमा तुम तो कमाल की चीज निकली, कहते वाह वाह क्या बहुत खूब।
1: तो क्या बात है, लेकिन ये एक तरह से ट्रिब्यूट टू विविध भारती हो गया।
0: बिल्कुल, अब विविध भारती पे जो मुलाकात दे रही हूँ तो कुछ बात तो करनी चाहिए ना, जो वो अच्छी बातें याद है वो तो जरूर शेयर करनी चाहिए
1: जी,
0: है नहीं?
1: बिल्कुल। इस फिल्म का संगीत भी बहुत मायने रखता है।
0: हाँ, बहुत बहुत सुंदर है ना, बहुत संगीत और गीत भी। हाँ, गीत मतलब देखो, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि राइटर डायरेक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर एंड लिरिसिस्ट, इनका अगर आपस में खूबसूरत मेल हो जाए तो क्या बात है। जैसे अब इंदु जी को मैंने कहा कि इंदु ऐसा है को वो बताती है कि मैं फला जगह संगीत क्लास के लिए जाती हूँ और वो उसका बराबर जहन में उसको एब्सॉर्ब करता है
1: जी।
0: और वो

0: पहुंच जाता है। और मैंने कहा वो अपनी सुंदर मोटरसाइकिल है उसकी एक काली सी,
1: हाँ।
0: तो गाना कुछ ऐसा करो कि जो उसमें मजा आ जाए, कि तो वो साथ जुड़ जाए। तो फिर काली घोड़ी द्वार खड़ी, और काली घोड़ी मतलब उसकी मोटरसाइकिल, और वो काली घोड़ी पे गोरा सैया चमके,
1: क्या शानदार लाइन है।
0: और वो इतना, और चकित भई सगरी नगरी, तो वो बस स्टॉप पे लोग सब ऐसे ऐसे देखते कि अरे ये कहाँ गई है, मगर मतलब पूरा वो बैठ गया इतना। मतलब ये होता है जब मेल होना, लिरिसिस्ट, फिर राजकमल का म्यूजिक, और फिर गाने वाले, और फिर मेरे एक्टर, और मैं।
1: कमाल, ये गाना सुनते हैं
0: जी, क्या बात।

0: घोड़े दौड़ पड़े, काले घोड़े दौड़ पड़े, काले घोड़े दौड़ पड़े।
1: इस जैसा गाना जो पटकथा के अंदर इतना ज्यादा एम्बेड हो गया, ये जो बात आपने बताई कि मोटरसाइकिल और वो और इंदु जी ने जिस तरह से उस कहानी में उस गाने को पिरोया, एक कालजयी गाना बन गया। राजकमल जी को भी बड़ा श्रेय जाता है इतने बढ़िया गाने बनाने का।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: राजकमल जी।

0: अपना श्रेष्ठ काम किया इस फिल्म में।
1: मेरे ख्याल से बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, इसमें कोई शक नहीं। और वो भी कितना अच्छा और कितना नेक गाना है ना, कहां से आए बदरा, इतना दुख भरा, इतना ये। और वो तो टीचर तो गाए चले जाते हैं क्योंकि उनको क्या लेना देना, लेकिन ये रो पड़ती है गाते गाते
0: जी, आंसू बह रहे हैं उसके, माहौल आप बनाते हैं उसमें।
1: और उसके भी अंतरे जो है म्यूजिकल बीच के है प्रीलूड्स, उसमें फिर इसको दिखाया है कि ये भी उदास बेचारा दीवाना जैसे घूम रहा है सिद्धार्थ, तो वो गाने का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल हो गया। आई लव यूजिंग सॉन्ग्स टू टेक द स्टोरी फॉरवर्ड।
0: बिल्कुल, ये तो कथा में भी आता है, उसकी बात आगे करेंगे। बल्कि एक बहुत ही तेज तर्रार गाना इस फिल्म में था और वो था प्यार लगावत। वो तो एकदम अलग शैली का गाना है।
1: हाँ, वो भी अगेन वही बात है कि जब म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर इनका आपस में मेल हो और समझौता हो और एक दूसरे को समझे और एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करे दोनों, तो क्या होता है ये गाना साबित करता है। क्योंकि मैंने फिर ये कहा राजकमल को कि ये तीनों जने गाना गाते हैं मोटरसाइकिल पे घूमते, हाँ तीनों मुस्टंडे, तीनों अवलिया हैं, अपने अपने अलग ढंग के आदमी। मैंने कहा वो क्यों एक जैसा ही गाएं?
0: बिल्कुल,
1: हाँ वो अपना अपना गाने दो ना उनको। तो राजकमल ने कहा मतलब क्या? मैंने कहा ये कुछ और गा रहा है, वो कुछ और गा रहा है, वो कुछ, मतलब उनका सुर भी और होगा, उनके लफ्ज भी और होंगे। कहते नहीं नहीं तो बड़ा झमेला नहीं हो जाएगा? मैंने कहा कोशिश करके देखते हैं। और कोशिश की उन्होंने और क्या कमाल की, वो जो है ना प्यार लगावट प्रणय मोहब्बत, हाँ। वो तीनों अलग अलग अपना गाते हैं।
0: बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल।
1: और इतना वो मजे का लगता है। दैट्स व्हाई वो जो आज भी लोग कहते हैं कि वो फिल्म आज भी फ्रेश है, ताजगी है उसमें, ये ऐसे गानों की वजह से तो है।
0: बिल्कुल, तो ये गाना इस
1: अच्छा,
0: इंटरव्यू में प्यार लगावट
1: क्या क्या
0: भी
1: सुनाओगे? ओके।

0: मैं एक चीज पर और ध्यान खींचना चाहता हूं और वो है ओपनिंग सीक्वेंस ऑफ चश्मे बद्दूर। जिस तरह से फिल्म ओपन होती है
1: हाँ,
0: वो बड़ा शानदार बना है।
1: नामावली
0: जी, नामावली, जिसमें
1: टाइटल्स।
0: वो एनिमेशन वगैरह है। जी
1: वो उसका पूरा पूरा क्रेडिट आप राम मोहन को दे दो। राम मोहन एंड ही डिड कथा एंड ही डिड चश्मे बद्दूर दोनों।
0: हाँ, और
1: हाँ
0: कथा में वो चूहा बिल्ली।
1: हाँ यस टाइगर और ये वो। और कथा में भी तो जैसा हमारा निर्माता का जब आता है तो सुरेश जिंदल को आप दे देखा है कभी? ये बाल उनके बिल्कुल

0: लेकिन जैसा लायन है सिंह, तो वैसा ही उन्होंने सिंह बनाया उसके लिए, तो वो बिल्कुल लगे ये बराबर सुरेश जिंदल है। और डायरेक्टर के लिए उन्होंने बिल्ली मतलब मैं, और वो नाखून ऐसे ही करके जाती है, तो मतलब इतना। और दीप्ति के लिए खूबसूरत सी गिलहरी और कान में उसके वो फूल, जसवंती का फूल। और विनी के लिए, विनी का इंट्रोडक्शन था फिल्म में, तो एक अंडा ऐसा फूटता है और अंदर से छोटा सा चूजा बाहर निकलता है, चू चू चू चू चू, नया परिचय विनी परंस पे। और सैनी हमारा गुस्से वाला कैमरामैन, वो टाइगर आता है शेर करके कैमरा लेके, ऐसे बहुत बहुत मजे के ये। और बीच बीच में जाहिर है कि कछुआ और खरगोश, इनकी रेस तो फिर चलती रहती है।
1: बिल्कुल, तो उसमें सारे अलग अलग
0: क्या। और चश्मे बद्दूर में तो और भी कमाल किया कि उन्होंने एक्चुअल फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए, गांधी जी, बर्ट्रेंड रसेल वगैरह, ऐसे लोग लेके, मतलब एक तरह की ये हिमाकत ही हुई ना ऐसे लोगों को लेके उन्होंने इतना खुश मिजाज बनाया पूरा टाइटल किस्सा कि क्या बताओ।
1: उसमें फिर आपका हाथ आता है जिसमें नेल पॉलिश लगी है लाल रंग की
0: बिल्कुल
1: तो वो सुंदर है, लेखक निर्देशक है ना, इस तरह से पूरा फिर आपका नाम आता है सुंदर। मतलब वो ओपनिंग भी कमाल की थी। वीरेंद्र सैनी का जिक्र हमेशा बहुत जगह आया बातचीत में, और वो आपके तकरीबन स्थायी कैमरामैन रहे।
0: उन्होंने स्पर्श और चश्मे बदूर और कथा सैनी ने की, फिर दिशा के साथ वो नहीं आए, बट सैनी अच्छे कैमरामैन भी थे, दोस्त भी बहुत अच्छे थे, एंड ही वाज वन पर्सन हु वुड कॉल अ स्पेड। कभी भी उन्होंने मुझे अच्छा लगे इसलिए कुछ नहीं कहा।
1: कोई टकराव होता था?
0: बहुत बार बहुत बार, दिन में एक दो बार तो जरूर होता था। लेकिन बहुत सही आदमी था, बहुत काम से लगाव वाला आदमी था, और बहुत मतलब अच्छे दिन गुजारे हमने, बहुत आर्टिस्टिक ढंग के काम किए, और बहुत अच्छा रहा वो सब पूरा माहौल, और उसमें सैनी का बहुत हाथ था।
1: जी जी।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले।
3: उजाले उनकी यादों के।
4: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है अब पहले हिंदी में समाचार, व शाम 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
5: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है।
6: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
5: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्तों का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
6: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
5: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले ना छुपाएं। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और

0: इलाज लेना आवश्यक है। पंजाब की 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा ना करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकालने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.censet.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित जनगणना कर्मी 17 अगस्त से 15 सितंबर तक गृह सूचीकरण अभियान और आवास जनगणना का संचालन करेंगे। इस दौरान पोर्टल पर भी दी गई जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देशभर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान देश से 100 से अधिक जीआई पंजीकृत हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादकों का प्रदर्शन किया जाएगा। देश के कोयला उत्पादन में जुलाई 2025 के मुकाबले जुलाई 2026 में 7.51% की बढ़ोतरी हुई है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जुलाई में देश में कुल कोयला उत्पादन 69.75 मिलियन टन रहा। जुलाई 2026 में कोयले की आपूर्ति जुलाई 2025 के मुकाबले 17.34% अधिक थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध के बाद ये निर्णय लिया गया है। सोशल मीडिया पर श्री ट्रंप ने बताया कि संभावित समझौते में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक शामिल है। हालांकि ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कांगो गणराज्य में इबोला का प्रकोप खतरनाक रूप से बढ़ रहा है और ये देश के इतिहास में सबसे बड़ा इबोला प्रकोप बन गया है। संगठन के अनुसार 30 जुलाई तक इबोला के 3,605 पुष्ट मामले और 1,587 मौतें दर्ज की गई हैं। केरलम में मूसलाधार वर्षा से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves and full of self-confidence, speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
2: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan vyakti ke liye hain, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
1: Mr. Modi added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Mr. Modi said that drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams.
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country have participated in the event. The participants include governors of states, chief ministers of states, Mai Bharat and National Service Scheme volunteers, as well as

अभी आपने सुना पूर्णिमा फिल्म से ये भजन जिसे गाया था सुमन कल्याणपुर सखियों ने। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

अभी आपने सुना महेंद्र कपूर व साथियों की आवाज़ों में गाया ये भजन। भजन फिल्मों से इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर व साथियों की आवाज़ों में नागपंचमी फिल्म का ये भजन।

अभी आपने सुना नागपंचमी फिल्म से ये भजन, जिसे गाया था सुमन कल्याणपूर्व साथियों ने। भजन फिल्मों से इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

महेंद्र कपूर व साथियों की आवाज़ों में गाए से भजन के साथ हमारा आज का भजन फिल्मों से कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन फिल्मों से।
1: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। अब समय है युवाओं के कार्यक्रम युवा मंच का।

युवा साथियों कार्यक्रम में हम आप सभी युवा साथियों का, हमारे श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आप सभी अपने अपने घरों में सकुशल होकर हमारा कार्यक्रम अवश्य सुन रहे होंगे। तो युवा साथियों, आज रविवार है और जैसा कि आप जानते हैं, आपको विदित ही है कि आज के दिन होता है वीकली पल्स, जिसमें हम आपको देते हैं नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल अपडेट्स। जी हाँ युवा साथियों, तो आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हुई हूँ ठीक उसी समय पर। वैसे समय में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, पहले 5:30 हुआ करता था, अब 5:25 हो गया है, तो हम उसी समय पर हाजिर हो गए हैं आपकी सेवा में। तो आज हम अपडेट्स पर बात करेंगे, क्या कुछ घटित हुआ इस हफ्ता भर में, लेकिन उससे पहले हम आपका मूड फ्रेश करेंगे और आपको सुनवाएंगे प्यारा सा गीत।

युवा साथियों, कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है और ये गीत हमने डेडिकेट किया आपके लिए क्योंकि आज है मित्रता दिवस और हम और आप सभी मित्र ही तो हैं। तो मित्रता दिवस की आप सभी युवा साथियों को, युवा भाई बहनों को बहुत सारी बधाई। तो चलिए, अब मनोरंजन तो आपका हमने कर दिया और इसके साथ अब जानकारी साझा करते हैं। पहले चलते हैं राष्ट्रीय अपडेट्स की तरफ। जी हाँ युवा साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा अभियान की आज शुरुआत की। उन्होंने विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए युवाओं को नशे की लत से दूर रहने की अपील की है। इसके तहत देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे IIT और IIM में प्रवेश के समय स्वैच्छिक यूरिन टेस्ट के माध्यम से ड्रग टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। एंटी पेपर लीक बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के बारे में अगर हम बात करें तो देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली को रोकने के लिए राष्ट्रपति ने एंटी पेपर लीक कानून को अपनी मंजूरी दे दी है। इस नए कानून के तहत पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा और मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रावधान है। तो युवा साथियों, जानकारी तो हम साथ ही साथ आपके साथ साझा करते रहेंगे लेकिन बीच बीच में हम आपका मनोरंजन करवाने के साथ साथ कमर्शियल

एक भी लेते रहेंगे। तो चलिए ले चलते हैं म्यूजिकल ब्रेक की तरफ और उसके बाद फिर से जुड़ेंगे आपके साथ, कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए कार्यक्रम युवा मंच, जिसमें आज आप सुन रहे हैं वीकली पल्स।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
1: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी।
0: बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश।

0: राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
1: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी
3: कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी श्रोताओं का, हमारे युवा साथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। युवा मंच कार्यक्रम में समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला के केंद्र से 103.4 MHz पर। और आज रविवार है और आज के दिन हमारे युवा साथी सुना करते हैं वीकली पल्स, जिसमें हम आपको नेशनल इंटरनेशनल अपडेट्स देते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं समुद्र मंथन और सूर्य सरोवर योजनाओं की। तो केंद्रीय कैबिनेट ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 84,084 करोड़ की समुद्र मंथन यानी राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को मंजूरी दी है, जिससे गहरे समुद्र में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही देश में रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की रूपरेखा भी सामने आई है। चलिए अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। तो अमेरिका ईरान तनाव और युद्ध के खतरे की अगर हम बात करें तो पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यदि दोनों देशों के बीच समझौता बहुत तेजी से आगे बढ़ता है तो वे ईरान पर होने वाले सैन्य हमलों को टालने के लिए तैयार हैं। इस समझौते में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को व्यावहारिक जहाजों के लिए फिर से खोलना शामिल है। इस बीच भारत सहित कई देशों ने अपने नागरिकों को वाणिज्यिक जहाजों और प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की चेतावनी दी है।

0: मैं हूँ HIV वायरस। नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: युवा साथियों, कार्यक्रम में फिर से आप सभी युवाओं का, हमारे श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अंतिम पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के, तो चलिए अब बात करते हैं खेल जगत की। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की अगर हम बात करें तो ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते हैं। मुक्केबाज जैस्मिन ने शानदार वापसी करते हुए स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो स्पर्धा में नीरज चोपड़ा और प्रवीण ने रजत पदक जीतकर डबल पोडियम फिनिश हासिल की है। इसके अलावा जूडो में उन्नति ने देश के लिए कांस्य पदक जीता है। लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। फिर से आपकी सेवा में, जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

युवा साथियों, अब घड़ी की सुइयां आपकी दोस्त वर्षा टोच को ज़्यादा बोलने की अनुमति नहीं दे रही हैं, तो चलने से पहले अपने दोस्तों को ये कहना चाहूँगी कि युवा साथियों, चापलूसी से कमाए धन में कभी बरकत नहीं होती। बरकत के लिए 20 नाखूनों की कमाई ही काफ़ी है। और बरसात बहुत भारी हो रही है, ऐसे में आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अब आपको बता दें कि इस मनोरंजक और जानकारियों से भरे कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया विकास पठानिया ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पॉल सिंह। अपनी दोस्त वर्षा टोच को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे धर्मशाला के इंद्र से आज शाम को शेष प्रसारित वरीले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शामे गजल। सजीव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा, जो कि महिलाओं के लिए विशेष रहेगा, हम प्रसारित करेंगे शाम 6:23 पर। जानकारी का विषय रहेगा मिट्टी के बर्तनों के फायदे या नुकसान। जुड़ने के लिए आपको हमारे स्टूडियोज का नंबर डायल करना होगा, जो ये है 01892224391। शाम 7:10 का प्रसारण समय रहेगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी का। इसमें जानकारी का विषय रहेगा धान फसल की देखभाल, साथ ही साथ लोक संगीत भी सुनवाया जाएगा।

रात्रि 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। देशगान आप सुना करते हैं रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत आज आप सुनेंगे निर्माता निदेशक पीएल संतोषी द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। आकाशवाणी शिमला से शाम 6 बजे व 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। अब एक नज़र आकाशवाणी दिल्ली से शाम के प्रसारण में रिले होने वाले कार्यक्रमों पर। शाम 7 बजे व रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार, शाम 7:05 पर व रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 9:23 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, रात्रि 10 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक रविवार स्तरीय संगीत सभा भी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले की जाएगी। श्रोताओं, ये थी विस्तृत रूपरेखा हमारे धर्मशाला के इंद्र से।

श्रोताओं, ये थी विस्तृत रूपरेखा हमारे धर्मशाला के केंद्र से आज शाम को शेष प्रसारित वरीले होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। वे आज नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान के शुभारंभ पर वर्चुअल माध्यम से बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए।
2: मेरे युवा साथियों, आप भारत की अमृत पीढ़ी हैं। आप अगले 20-25 वर्षों में अपने जीवन को भी दिशा देंगे और आप ही 2047 में देश को विकसित भारत की मंजिल तक लेकर जाएंगे। देश को आपकी ऊर्जा, आपकी कल्पना शक्ति और आपकी टैलेंट की जरूरत है। इसलिए देश के लिए और अपने जीवन के लिए खुद को नशा मुक्त रखना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम में देश भर में 28,000 स्थानों पर 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चंबा विधानसभा क्षेत्र में करीब 333 करोड़ रुपए की 26 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने चंबा मेडिकल कॉलेज में 158 करोड़ रुपए की लागत से बने 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक अस्पताल भवन का भी लोकार्पण किया। इस भवन में आवासीय परिसर व छात्रावास सुविधाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना और लोगों को उनके घर द्वार पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना जिले के हरोली में प्रदेश के पहले ई बस डिपो का लोकार्पण किया। उन्होंने पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय कार्यालय का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हरोली में स्थापित ई बस डिपो से 20 इलेक्ट्रिकल बसों का संचालन किया जाएगा और पूरे ऊना जिले में 50 इलेक्ट्रिकल बसें चलाई जाएगी। अग्निहोत्री ने बताया कि ठियोग, नाहन और नादौन में भी ई बस डिपो स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने परिवहन निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा के आग्रह पर कांगड़ा में भी ई बस डिपो स्थापित करने की घोषणा की। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि 21 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष जनहित के मुद्दों को सदन में उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन में भ्रष्टाचार, नशे के बढ़ते प्रचलन, कानून व्यवस्था, सड़कों व स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली सहित अन्य मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।
3: हमारी विधायक दल की बैठक बहुत जल्दी होगी और विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें हम चर्चा करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। विधानसभा के मानसून सत्र

0: मैं पूरे जोर के साथ विपक्ष जो है जनहित के मुद्दों को उठाएगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे, कानून व्यवस्था के मुद्दे और हिमाचल प्रदेश में नशा और जिस तरह से उसका प्रचलन बढ़ा है और जो खास तौर से ये जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, इन सारे तमाम मुद्दों को लेकर के बात करेंगे।
1: स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि वन महोत्सव अभियान पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। सोलन जिले में कंडाघाट उपमंडल के ममलीग में आज वन महोत्सव कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। इस दौरान विभिन्न प्रजातियों के करीब 450 पौधे रोपे गए। शांडिल ने बशील में जन समस्याएं सुनकर अधिकारियों को इनके जल्द निपटारे के निर्देश भी दिए। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि सरकार गुम्हारवी विधानसभा क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को आधुनिक, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने के लिए बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गुम्हारवी क्षेत्र में अगले 6 माह में 60 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही 55 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने का कार्य भी किया जाएगा। सांसद अनुराग ठाकुर ने ऊना जिले के संतोषगढ़ में आज स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रव्यापी मैं भी स्वदेशी समर्थक महाअभियान की डिजिटल शुरुआत की। उन्होंने कहा कि स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है और भारतीय उत्पादों, स्थानीय उद्यमों, स्टार्टअप्स, कारीगरों व लघु उद्योगों को बढ़ावा देना समय की मांग है। अनुराग ठाकुर ने लोगों से इस अभियान से जुड़ने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने का भी आह्वान किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शामी गजल। शामी गजल कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। ये रही कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

अभी आपने सुने गुलाम अली की आवाज़ में गाई ये गज़ल। शामे गज़ल कार्यक्रम इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला के इंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के युगल स्वरों में गाई ये गज़ल।

अभी आपने सुनी भूपेंद्र सिंह व मिताली सिंह के युगल स्वरों में गाई ये गजल। कार्यक्रम श्यामे गजल इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति चित्रा सिंह की आवाज में गाई ये गजल।

अभी आपने सुना जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में गाई इस गज़ल को। कार्यक्रम श्यामी गज़ल इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्यामी गजल FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं सचिव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा। इसमें जानकारी का विषय रहेगा मिट्टी के बर्तनों के फायदे या नुकसान। और इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आपको डायल करना होगा हमारा स्टूडियोज का नंबर जो है 01892224391।

कार्यक्रम मिंजरां च साढ़ियां सारियां बोबो भैणां न्याणे स्याणे साढ़े बजुर्ग कन्नै छोटे भाऊ लौह्के भाऊ बड्डे भाऊ थुआढ़ा सारियां दा इस कार्यक्रम च मैं बड़ा बड़ा

स्वागत कर दी कने आज मैं तुहाड़े कने तुहाड़ी बड़की बोबो वर्षा कटोच लेके हाजिर हुई हो तुहाड़ा पसंदीदा कार्यक्रम मिंजरा कने कार्यक्रम शुरू करने ते पहले मैं तुहानू सारे ये दसना चाहूंगी कि ये जिहड़ा कार्यक्रम हुंदा ये स्पैशल साड़ियां बोबो भैणां वास्ते हुंदा क्योंकि बेचारियां दिन भर कम करी करी के यानी कि अंदरे दा भी करना बाहरे दा भी करना है ना कने सारियां पासियां चौनी पासियां फिरकी अहियां फिरना पौंदा साड़ियां बोबो भैणां ऐ तां इस वेला यानी कि संझा दी वेला सचलुड़ू अल जालू बढ़दियां तां तिन्हां वास्ते हां स्पैशल ए कार्यक्रम रख्या तां साड़ियां जिहड़ियां बोबो भैणां हन सै अगर तुहां रेडियो सैट ऑन नहीं कीता तां झटपट करी दिया कने इस कार्यक्रम दा हिस्सा बनना तुहां तां साढ़े जिहड़े लौके वड्डे भाऊ हन सै साड़ियां बोबो भैणां फोन मिलाई दे न पर अज साड़िया भाऊआं ने अहां एक अरबद प्रार्थना करना चाहेंगे कि अज सह ना सांझो फोन करन फिर सांझो ना बार बार गलाना पौंदा कि ए कार्यक्रम जेड़ा सै साड़ियां बोबो भैणां वास्तै है ठीक है जी। तो स्टूडियो दा नंबर मैं एक बारी फिरी दसिंदी साढ़े स्टूडियो दा नंबर है 01892224391 कने जे अंग्रेजिया च गलां तां 01892224391 इस फोन नंबर पर तुसां फोन करके अपने पसंदा दे गीत भी सुनने कने मेरा जेड़ा अजे दा हा विशे लिया कि मिट्टिया दे बर्तना दे क्या क्या फायदे हैं कि नुकसान हैं इना दे बारे च साड़ियां बोबो भैणां जेड़ियां न तिनें गल भी थोड़ी बहुत जेड़ी है सै करना पौनी। तो चलो शुरुआत करदे हां इस प्यारे दे लोक भजन कन्नै कार्यक्रम दी।

कार्यक्रम मिंजरां शे तुहाड़ा एक बारी फिरी ते स्वागत है। साड़ियां बोबो भैणां कोशिश तो बड़ी करा दियां पर पता नहीं चक्कर क्या है कि अज मशीनरी मिंजो लगा दा कुछ नाराज हुई हो है कने फोन चुकाने ते पहले जिहड़ा सैकट हो याद आता। चलो कोई गल नहीं, बोबो भैणों तुहां प्रयास कर दियां रहा। कने अज अहां जिहड़ा विषय रखिया था बड़ा छैल विषय था कि अहां मिट्टिया के जिहड़े बर्तन हुंदे ते इन्हां दे बारे च गलबात करनी थी। तो चलो शुरू कर दे अहां घड़े ते। दिखा कच्चा घड़ा जिहड़ा हुंदा यानी कि मिट्टिया का घड़ा जिहड़ा हुंदा बोलने तो असें कच्चा हुंदा पर इस पर कितनी मेहनत लगती कने इस दे फायदे बड़े भरी हैं, है ना जी। घड़े च जिहड़े साढ़े सियाने थे सै बोलते हे कि घरे च जिहड़ा है सै घड़ा होना बड़ा जरूरी है क्योंकि सै सिर्फ इस तरह ही नहीं है कि पीने के पानिए वास्ते, ठीक है जी, इस दे होर बड़े भारी फायदे हैं। चला साड़ी बोबो भैन फिरी जुड़ी है एक भाइया चक्कर पता नहीं क्या है। बोबो भैनों प्रयास कर दियाँ रहा, कल ही ना कल ही तो फोन लगी आना थोड़ा। हेलो हेलो हेलो, कोई बोबो भैन है भरा? हेलो गल इं है भी मौसम जिहड़ा है सै थोड़ा खराब चल रहा तो इस दे कारण हो सकता कि फोन ना चुकोवा दे उन कुछ खराबी होनी बिच, है ना जी। हुण ये तकनीकी काम हुंदे अहां क्या जानी सकदे। तो अहां गल करा दे ही घड़े दे बारे च। तो घड़ा जिहड़ा है दिखा इस दे दूए फायदे भी बड़े बारी हुंदे। पहलें क्या हुंदा हा, हुण तो चलो डाक्टरी इलाज बड़े बारी बधी गए पर पहलें जिहड़े साढ़े बजुर्ग हुंदे हे सै बोलदे हे प्यागा उठी के ना घड़े दे पानीए दे छिट्टे दिया करा, खूब सारियां अखी धोणियां सुत उठदे आ, है ना। तो असें कई धोनी है कि अजकल बरसाती दे दिनों जियां तुहां दिखिया होना अखी आई जांदियां, पुराने सियाने तो यही बोलते हे अखी आई जांदियां, है ना जिहदी ओह नेत्र रोग जिहड़ा हुंदा लाल हो जांदियां अखी कन्नै रड़क पौंदी बड़ी बारी, है ना जी। तो डॉक्टर नाल जा तो असें तो मता कुछ इलाज करते, खैर डॉक्टर नाल भी जाना चाहिदा, पर जैलू अहां घड़े की गल करते तो एक गल तुहां मेरी बोबो भैणों नोट करने हो कि छोटियां बच्चियां ते लेके बजुर्गां तक जिहड़े पुराने बजुर्ग हाली भी साढ़े घरां च हुंदे, साढ़े दादे दादियां नाने नानियां या जो भी हैं ताइयां चाचियां, दिखने भ्यागा उठी के ना गड़बा लैंदियां कन्नै घड़े दे पानिए दे ना खूब सारे छिट्टे दिंदियां। तां क्या हुंदा कि घड़ा जिहड़ा हुंदा सै ठंडक प्रदान करदा ते इस दे घड़े अंदर जिहड़ा पानी हुंदा ना जी सै अखी वास्ते बहुत अच्छा हुंदा। ये तो तुहानूं जो भी पता होना है ना, क्योंकि सारियां दे घरां च घड़े भी हैं, क्योंकि ग्राईं लोग तो घड़ा रखदे रखदे, चलो शहरां च उतना प्रचलन ना भी होवै पर तमी शहरां च भी अजकल तो घड़ोलियां छोटी छोटियां रखा दे तो जरूर रखना चाहिए। मेरे बोलने का मतलब ये है, फिर तुहां दिखिया होना कि अजकल बरसाती का मौसम है तो कई चीज़ा जड़िया ने जियां रंगड़ होए द्रोले होए छोटिया मोटिया माखियां हुई सहपुड़ी आदि, तो इस वास्ते भी घड़े की जिहड़ी हेठे की जिहड़ी तलोए की जिहड़ी मिट्टी हुंदी ना सै बड़ी बारी गुणकारी हुंदी, है ना। झटपट सियाने साढ़े

कार्यक्रम मिंजरां च तुहाड़ा सारयां दा एक बारी फिरी ते बड़ा बड़ा स्वागत है। कने मेरियां बो बो भैणां अज प्रयास दा बड़ा बारी कड़ा दियां, पर जियां हाफ ऑन करा दे तियां ही जेहड़ा ऐसे कॉल कटोई आ दी। कोई गल नहीं, तुहां प्रयास करते रहा। हैलो ता बोबो भैनों, इ'यां ही होआ दा जियां अस चुका दे तियां कटोई आ दा फोन। पता नहीं क्या तकनीकी कोई खराबी होंगी। तो कोई गल नहीं, अज अहां गल बात करा दे मिट्टी दे बर्तना दे बारे च। तो पहले गल कीती अहां घड़े दे कितने फायदे हैं जेड़े कि अहां गणाए। एक तो ठंडा पानी पीने को मिलता है ना जी, कने गर्मियों च भी दिखा कोई बीमारी समारी कुछ नहीं होंगी। जियां फ्रिजा का पानी अहां पींदे तो केइयां नहीं सूट करता, तो केइयां दा गला खराब हो जाता, केइयां दी छाती जाम हो जाती। पर घड़े का पानी अगर पीन तो सह नरोगा पानी होंदा है ना जी। अहां कने पहलकने जेहड़े सियाने थे सह तो हेठ रेत भी रखते हे, खूब सारी रेत लियानी मंजे हेठ रखी देनी। पहलकने जमाने च उबरियां होंदियां हियां है ना, तो तिथू रखी देने घड़े ठंडिया ठंडिया, क्योंकि उबरी ठंडी होंदी ही पुराने घरां च। तिथू रखी देने हेठ रेत रखनी, कने तिदी उपर बड़ी सारी रेत रखी के फिर बिना दे बनाई के रखना, कने उपर घड़ा रखी देना है ना जी। तो घड़े दे सांजो कितने फायदे हैं, नुकसान तो मैं जो घट ही नज़र आवा दे। हाँ, नुकसान एक जरूर हुंदा भी घड़ा अगर चज्जे दा ना होवे, जियां घड़ोया तो सिमदा रहिंदा घड़ा, तो चिक्कड़ बड़ा हो जांदा है ना। तो जैलू भी तुहां घड़ा खरीदना तां ठोकी बिजाई के खरीदना, कने ते तू पानी पाई के दिखी लैना जैलू तुहां खरीदना लगदे। अजकल तो तुहां दिखिया होना सड़कां च ही बड़े भारी घड़िया वाले बैठे होंदे, बंद बन दियां मिट्टी दियां बर्तना दियां जिहड़ियां तिना लगाइयां होंदियां, सै दुकानां दियां लगाई दियां होंदियां सड़कां च ही है ना जी। तो बस एक ही नुकसान नज़र आता मुझे लगता, साड़ियाँ बोबो भैनों भी यही नुकसान नज़र आता होना घड़े च। कने बाकी तो घड़े च गुण ही गुण हैं जेड़े नज़र आते। कने जे तुहां अली तक शुरुआत नहीं की हो तो घड़ा रखी लिया करें, कने जेड़ा साढ़े स्याने गलांदे हैं तियां तियां करना तुहां भी शुरू करी दिया। ठीक है जी, हूँ दूई गल करनी हाँ ददूनुएं की। ददूनू हूँ तो खैर पुरानी चीज़ों के ना भी जेडे सह भुलते जा दे, खैर ग्रां च ताली भी सारिया चीज़ा जींदियां, पर जियां अगले अगले जेडे बच्चे आवा दे तिना वास्ते नवं नवं चीज़ा अगर ये ना अहाँ लेंगे। ददूनू बड़े घट बच्चें पता होना, तो ददूनू हों जी दुद्ध सेकने का जोड़ा भांडा हों मिट्टी का हों पहले है ना जी। साड़ियाँ बोबो भैन जड़िया ने यह तो बहुत सियाणिया ने, यह सब कुछ जान दियाँ। तो सह हों मिट्टी का बर्तन यानी कि घड़े का छोटा रूप, जिन मता दुध हों सह बड़ा ददूनू रखते हे, कने जिन थोड़ा दुध हों तो सह ददूनुए छोटा रूप हों घड़े का मतलब। ठीक है जी, तो तिस च दुध सेकना, कने तिस की जी मिठी मिठी सौंधी सौंधी खुशबू आँदी ही ना इस, जियाँ पहले चुल्हे बलदे हे तो सह कन्ने सह तुआएं की मुस्क भी आनी, कने जड़ा घड़े का जेड़े खुशबू होंगी सह भी तिस दुधे च जी जैलू मिक्स होनी, कने राती जैलू दुधे का गलास अहाँ तिस ददूनुए के घड़े दुधे का पींदे तो मौजा आई जाए। कने स्वाद जड़ा है सह हूँ तो पता कई तरह के जड़े हैं सह जिसी बोलते हाँ अंग्रेजी पैन चली पे दुधा सेकने के पतीले चली पे है ना जी। पर पहले जेड़े सियाने होंगे हे सह ददूनुए के दुधे पियादे हे, क्योंकि नरोगा हों कने बच्चों भी तिस दुधे देंदे हे कि तिस कोई ऐसी गलबात नहीं होंगी ही, कोई कट नहीं उतरना, कोई कुछ नहीं। हूँ तो बनद बनदियाँ चीज़ा चली पी बे फलाने इस सेक गए तो फलाना कट उतरना, फलाने च सेक गए तो फलाना उतरना, तो ददूनू सब तो सेफ मनिया जाता हा पुराने जमाने है ना जी। हूँ भी जेडे साढ़े ग्राई लोग हाँ तो हाँ सब ग्राई हैं, तो तिथु तो ददूनुए का जोड़ा प्रचलन है सह अली भी है। बहुत घट घर है जिथु नहीं होगा,

पर जियां ना परानियां चीज़ां तुसें दिक्खेआ होना कि सारियां जेहड़ियां सै साढ़े जीवन च दोबारा आवा दियां, ते जिन्हें नेईं भी रखे दे दोनों ते चलो इ'यां चाहे दा ही रखी लिया, दुद्ध बेशक ना भी होवे घरै, तुसें इ'यां भी रखी सकदे सजावट वास्तै भी, ताकि आने वाले जेह्ड़े साढ़े बच्चे न तिन्हें दस्सी सकिए कि एह् जेहड़ियां परानियां चीज़ां न इन्हां दा हां इस्तेमाल जेहड़ा ऐ सै कियां करदे थे, कन्नै रखने वालियां पक्कियां घरां च भी रखियो, है ना जी। तो यह दूई गल तो हुई गई मिट्टी के बर्तना की, कैसी हुई ददूनुए की, पहले अहां गल की घड़े की, कने हूं अहां की ददूनुए की, तो हूँ अहां फिरी चलना एक प्यारे दे लोक गीते दे पासे, कने तिसते बाद अहां फिरी तीजे भांडे की गल करनी, ठीक है मेरी ओ बोबो भैनों। आज तो तुम मुझे माफ करी दिया क्योंकि फोन बड़े बारी आवा दे, पर कोई नहीं चुकोआ दा, जियां चुकोआ दा तियां फोन कटोई आ दा, कोई गल नहीं, अगली बारी तो आ रहे हो फिरी तुह मिलाने की कोशिश करना, क्योंकि टाइम ए ही रहना 6:30 है ना, तो तुह कोशिश करनी कि दोबारा फिरी इस कार्यक्रम च जेहड़ा ऐसा अगले रविवार जो फिरी तुह जुड़ना साढ़े कन्नै, तो आवा मिली जुली के सुन दे बोबो भैनों ए प्यारा दिया गीत।

0: MCA, MBA, MA History, Economics, Political Science 100% ऑनलाइन कोर्सेज के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे परीक्षा।
1: हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र जो कि UGC DAB से मान्यता प्राप्त है, घर बैठे शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा मौका।
0: नए सत्र के लिए प्रवेश आरंभ, आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2026।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 94183-3520392187001।
2: कार्यक्रम मिंज राज्य फिर ते साड़ियाँ सारियाँ बो बो पैणा दा स्वागत है। तो हूँ सूईया जड़ियाँ सैबोला दियाँ तुहाड़े ते विदा लैने दा वक्त आई है। तो बो बो पैणो इस वरी तुहां नहीं जुड़ी पाईया, अगली वरी तुहां फिर कोशिश करने कने इस कार्यक्रम च जरूर तुहां जुड़ना। कने जिहड़े जुड़े जिन्हां कोशिश कीती तिन्हां दा हां दिले ने धन्यवाद करदे। कने अगली वरी 6 बजे के 30 मिनटा पर फिर अहां रविवार जो हाजिर होना तालू तुहां फिर प्रयास करने तुहानू दसीए। तकनीकी सहयोग विकास पठानिया दा कने इस कार्यक्रम दे प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह। हुण अपनी बड़की बोबो वर्षक टोच जो आग्या दिया, राम राम जी।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को है पहले हिंदी में समाचार व शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी
1: समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 सप्ताह का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
2: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित

0: प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, छात्र मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन समझौतों में से एक के अंतर्गत चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक प्रौद्योगिकी आधारित पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद और ऑस्ट्रेलिया के रीबाउंड संस्था के सहयोग से लागू की जाएगी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर में प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। केरलम में बारिश में कमी आने से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की परिकल्पना से प्रेरित सोल्जर थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं की 78 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking at the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
2: आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
1: He added that the launch marks the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance use. Mr. Modi said that drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams.
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति

0: इस कार्यक्रम दे प्रायोजक हैं कृषि कने किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: कार्यक्रम खेतीबाड़ी सुनने वाले सभी पशुपालक और किसान भाइयों को, बागवान भाइयों को आपकी दोस्त का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम हाजिर हैं आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम लेकर खेतीबाड़ी। इसमें हम आपको सुनवाते हैं, जानकारियाँ भी देते हैं, लोक संगीत भी सुनवाते हैं और साथ ही साथ सभी तरह के जो विषय हैं उन पर बातचीत भी करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं एक लोक झंकार के साथ, जिसे आप सुनेंगे अपने रेडियो

0: किसान बागवान कने पशुपालक भाई बहना दा एक बारी फिर यहाँ स्वागत कर दे। इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। और अब आपको देंगे जानकारी धान फसल की देखभाल के बारे में।
1: जैसे कि हमारे किसान भाई जानते हैं कि इस समय समय पर उनकी जानकारी के लिए हम अनेक कार्यक्रम करते रहते हैं, कृषि से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, जो कि आज हम धान फसल की देखभाल जो है किस प्रकार की जाए इस संबंध में बात करेंगे। तो इस संबंध में जानकारी देने हेतु आज हमारे साथ हैं कृषि विभाग पालमपुर में कार्यरत सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं डॉक्टर NK धीमान। इनसे बात करेंगे कि धान फसल की देखभाल जो है कैसे की जाए। तो धीमान साहब, आपका स्वागत है।
2: हाँ, नमस्कार।
1: तो हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि धान फसल की रोपाई के उपरांत की देखभाल जो है कैसे।

0: से करनी होती है, अगर SRI विधि से लगाई है या जो है रिवायती तरीके से लगाई है, तो तरीकाकार क्या होना चाहिए उसकी देखभाल का?
1: ऐसा तो हमारे समस्त किसान भाई जो कि धान की फसल से जुड़े हैं, धान की खेती करते हैं, उनको मालूम है कि ये जो हमारी धान की खेती है ये पानी वाली खेती है, जिसको हम बोल पाए कि ये जहाँ पानी की मात्रा काफ़ी है वहीं पे ये धान की जो फसल है वो उगाई जाती है। लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है कि हमारा जो सारा के सारा क्षेत्र जो है वो पानी कुलों के थ्रू जो है वो पानी की मात्रा वहाँ उपलब्ध हो। ये जो हमारा वर्षा के ऊपर आधारित भी हमारी जो धान की फसल जो है वो उगाई जाती है। अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर या पूरे भारतवर्ष में जो है मानसून जो आ चुकी है, तो मैं देख रहा हूँ कि जिला कांगड़ा की अगर मैं बात करूँ तो जिला कांगड़ा के अंदर जो है वो धान की, चाहे वो रोपाई के माध्यम से करनी है या जो डायरेक्ट सोइंग जो की है, सीड सोइंग की है,
0: सीधे तौर पर
1: जो बिजाई की गई थी वो जो है वो लगभग जो हमारी बिजाई जो है या रोपाई जो है वो हो चुकी है। अब प्रश्न आता है कि इस रोपाई के बाद किसान जो है वो क्या क्या काम जो है करेगा ताकि उसको जो है वो अंत में अच्छी उसकी जो पैदावार मिले। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो हमारा मुख्य कि हमें कितनी कौन कौन सी इसमें जो है वो खादें जो दी जाएंगी, इसका जो बीट कंट्रोल है वो कब किया जाएगा, उसका जो पौध संरक्षण है वो कब किया जाएगा?
0: जी, तो पहले जो बात करते हैं अपनी खादों की जो है, इसमें जो कौन कौन से पोषक तत्व जो है आवश्यक होते हैं उनको डाला जाए ताकि जो है फसल की बढ़वार जो है अच्छी हो। जी
1: हाँ, धान में जो है वो मुख्यतः हमारे जो है वो तीन ही तत्व जो है वो आवश्यक तत्व है, जिसमें से हमारा नाइट्रोजन,
0: जिनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, जिसको जो ज्यादातर
1: जो वो उसकी मात्रा ज्यादा डालनी होती है, जैसे हमारा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास, ये जो तीन जो है वो मुख्य हमारे जो है वो तत्व है, जिसकी जो है वो गुणवत्ता जो पैदावार लेने के लिए और जो फसल की गुणवत्ता है उसको बनाए रखने के लिए इन तीनों का जो है वो डाला जाना जो है वो अति आवश्यक है।
0: जी, तो इस वक्त जो है यूरिया अगर की बात की जाए या सिंगल सुपर फॉस्फेट की बात की जाए या म्यूरेट ऑफ पोटाश की, तो मात्रा क्या होनी चाहिए?
1: हाँ देखिए, इसमें जो मैं प्रति कनाल अगर बात करूं तो जो यूरिया है वो 4 किलो प्रति कनाल के हिसाब से जो है वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेगा, और जो हमारी फॉस्फोरस के लिए हमारे जो सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है वो 6 किलो प्रति कनाल के हिसाब से, और जो पोटास है उसके लिए जो म्यूरेट ऑफ पोटास एक खाद आती है उसको 2.5 से 3 किलो प्रति कनाल के हिसाब से जो है वो डाला जाना चाहिए।
0: जी, तो इसका तरीकाकार क्या है? हाँ, जो खादों को डालने का खेत में,
1: इसका जो हमारा सिंगल सुपर फॉस्फेट, जो हमारा जो फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा है ये पूरी मात्रा, और जो नाइट्रोजन की जो मैंने बताया जो आधी मात्रा जो है, जिसको जो है जब हम लोग अब मच करेंगे, हमारे किसान जो है जो मच करेंगे बारिश पड़ने के बाद, उस मच के तुरंत बाद जो है वो उसमें जो है वो उसको डालना।
0: जी,
1: और जो हमारी बाकी आधी मात्रा है नाइट्रोजन की जो है वो रोपाई के 3 हफ्ते के बाद जो है वो जो हमारी नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा जो है वो 3 हफ्ते के बाद जो है वो उसमें डालनी।
0: जी, तो दीमान साहब, ये जो यूरिया की बची हुई मात्रा जो है कैसे, छट्टा विधि से देनी होती है? अक्सर तो ये कहते हैं कि जो है जमीन के नीचे डालनी चाहिए जो है।
1: नहीं, जमीन जी के नीचे डालने वाली नहीं है ये, क्योंकि यूरिया जो है ये एकदम घुलनशील जो हमारी खाद है, जैसे भी इसको डालते हैं इसमें नाइट्रोजन होती है और ये तुरंत जो है ये पानी में जब जाएगी तो ये घुल जाती है। जो जमीन के अंदर डालने वाली है वो मैंने आपको बताया जो फास्फोरस और पोटास, ये दोनों जो है ये बिजाई के साथ जब हम बीज डालते हैं तो उसी समय
0: रुपाई करते हैं
1: तो उसके अंदर वो अपने आप अंदर चली जाती है।
0: जी, तो उस दौरान जो है जब हमने यूरिया दे दिया उसके दौरान जो है खेत की मेड़ें बंद करनी चाहिए और पानी जो है
1: वो खड़ा होना चाहिए। ये ऐसी फसल है जिसमें लगभग 60 से 65 दिन 70 दिन तक जो है वो पानी जो है इस फसल में खड़ा रहना चाहिए।
0: जी, तो एक तत्व होता है जिंक, तो जिंक की कमी जो है कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये जिंक तत्व जो है कितने सालों में जो है फसल को देना होता है धान की फसल में?
1: आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। हमारे जिला कांगड़ा की अगर मैं बात करूं तो जिला कांगड़ा में जो है वो देखा गया है कि जिंक जो है वो हर साल जो है वो डालना चाहिए। जिंक की मात्रा जो है वो 25 जो हमारा 25 किलो प्रति हेक्टर 1 किलो प्रति कनाल के हिसाब से जो है वो किसान को जो है बिना जांचे ही डाल देना चाहिए, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी डिपार्टमेंट की तरफ से जब यहाँ पे जमीन का सर्वे हुआ था, उसकी जो एनालिसिस हुए थे, उसका विश्लेषण हुआ था, तो इसमें पाया गया है कि जिला कांगड़ा की जो समस्त जहाँ पे हमारी धान की खेती होती है वहाँ पर इस तत्व की कमी जो है वो हमेशा जो है वो कम पाई गई है।
0: जी, तो जब पहले दौर में तो ये होता था कि 3 सालों बाद जो है
1: नहीं, अब हम लोग इसकी सिफारिश करते हैं कि हर साल जो है फसल में जो है इसको जब भी किसान को लगे कि उसकी फसल का जो पत्ता

0: थोड़ा सा भूरापन उसमें अगर आ रहा है तो उसको जो है वो समझ लें कि इसमें जिंक की
1: कमी
0: कमी है,
1: है
0: वो है।
1: जी। तो इसके लिए जिंक जो है कैसे इसको छिड़काव करके करते हैं या जो है इसको पानी में
0: इसमें
1: इसका
0: पानी,
1: करते
0: इसको
1: हैं जी?
0: पानी में भी डाल सकते हैं, इसको हम लोग जो है वो रेत में मिला करके भी डाल सकते हैं। दोनों विधि से जो है इसका छिड़काव भी किया जा सकता
1: जी
0: है।
1: तो छिड़काव की परिस्थिति में जो अगर छिड़काव करना है तो उसमें जो है क्या मात्रा रहती है, पानी की क्या मात्रा रहती है और जो है कितना तक
0: मैंने
1: को देना
0: बताया
1: है?
0: कि ये जो है ये सबसे ज्यादा पानी खपत वाली फसल है, तो मैं तो चाहूंगा कि जब भी किसान कोई ऐसा ऑपरेशन करे तो 4 से 5 सेंटीमीटर तक जो है वो पानी जो है
1: खेत
0: वो
1: में खड़ा
0: खेत
1: रहना
0: में
1: चाहिए
0: खड़ा रहना चाहिए।
1: जी। तो उसी दौरान जो है इसका जो
0: हाँ,
1: है छिड़काव या ये जो है इसमें
0: इसका जो
1: मिलाना
0: है
1: चाहिए
0: इस्तेमाल करना
1: जी।
0: चाहिए।
1: तो इसके अलावा जो है कुछ खरपतवार भी, वैसे तो पानी में जो है बहुत कम खरपतवार उगते हैं, लेकिन कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं कि जो धान की तरह ही लगते हैं और इसमें उग जाते हैं, तो उस परिस्थिति में इनको जो है कैसे जो है इन पर नियंत्रण पाया जा सकता है जी?
0: हाँ, देखें, जो खरपतवार के नियंत्रण की जहाँ तक बात है, इसमें दो हमारे पास जो दवाइयाँ हैं वो कृषि विभाग के का जो हमारे सेल सेंटर्स है वहाँ भी उपलब्ध है। जो जितने भी कृषि विभाग द्वारा जो जितने हमारे जो डिपो होल्डर्स को जो हमने लाइसेंस दे के रखे हैं उनके पास भी वो जो है वो उपलब्ध है। इसमें दो हमारे, एक बूटाक्लोर और एक मचेटी के नाम से जो है वो खरपतवार जो है वो मार्केट में या विभाग के पास उपलब्ध होते हैं। जो बूटाक्लोर है वो 50 मिली लीटर जो है वो एक पंप में, 16 लीटर का जो एक पंप होता है उसमें मिला करके जो है वो एक कनाल में जो है वो इसका छिड़काव करें। जब लगे कि धान के खेत में 2 या 3 पत्तियां जो हैं वो दिखें तो ये मान लेना चाहिए कि वो जो है वो खरपतवार है और उसका तुरंत जो है का नियंत्रण जो है वो बूटाक्लोर के माध्यम से या जो मचेटी है उसके माध्यम से जो है उसका किया जाना लाजमी है।
1: जी। तो इसमें जो बूटाक्लोर और मचेटी जो है मात्रा क्या रहेगी, कैसे जो है
0: हाँ,
1: इसका इस्तेमाल
0: जैसे
1: करना है?
0: मैंने बताया कि जो बूटाक्लोर है वो 50 मिलीलीटर जो है वो एक पंप के अंदर, मतलब 3 ml जो है वो 1 लीटर पानी में जो है मिला करके इसका जो है वो बिजाई के 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसका आप छिड़काव करें। या जो मचेटी है वो 3 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से जो है वो उसका छिड़काव करें। आवश्यक है जब हम मचेटी का इस्तेमाल करें तो जो फसल है वो 4-5 दिन के बाद करें और उसमें जो है पानी खड़ा होना जो है 4 से 5 सेंटीमीटर, मैंने बताया पानी जो है वो खड़ा होना जो है उसमें बहुत ही आवश्यक है,
1: जी
0: तभी जा करके जो मचेटी है उसका पूरा असर बीज नियंत्रण के लिए जो है वो दिखे
1: यानी कि खरपतवार जो है उससे नियंत्रित हो जाते
0: हो
1: हैं
0: जाते
1: जी।
0: हैं।
1: धीमान साहब, ये जो समय है बरसात का, इसमें जो कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी बहुत होता है,
0: जी
1: तो वो कौन कौन से कीड़े और बीमारियां हैं जिनका प्रकोप जो है धान फसल पर हो सकता है जी?
0: किसान भाइयों के लिए सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि कौन सा जो कीट है, कौन सी बीमारी जो है वो उस फसल को नुकसान कर रही है, क्योंकि अलग अलग कीट के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए जो है वो अलग अलग किस्म की दवाइयां होती हैं। इसलिए तो मैं तो किसान भाइयों को पहले तो अपना एक अनुरोध करना चाहूंगा कि कोई भी दवाई का इस्तेमाल करने से पहले उसका जो है वो एक सैंपल लेकर के, जो हमारा मलाम है, एक कृषि जो हमारा यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक जो है वो रिसर्च, राइस रिसर्च स्टेशन है, वहां पर ले जाएं या कृषि विभाग के जो नजदीकी कार्यालय है वहां पर जो अधिकारी को दिखाने के बाद ही जो है वो उसका जो है वो इस्तेमाल करें।
1: जी, यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये तो कांगड़ा के जो हमारे किसान भाई उनके लिए है, इसके अलावा ऊना में जो है कृषि विज्ञान केंद्र
0: केंद्र
1: ऊना
0: है
1: है, वहाँ जा सकते हैं या कृषि विभाग में जा सकते हैं, या जो है जो हमारे चंबा जिला के जो किसान भाई हैं वो अपने साथ के कृषि विकास अधिकारी या खंड स्तर के अधिकारी के पास जो है राबता कायम कर सकते हैं और उनसे परामर्श
0: परामर्श
1: अपना
0: करने के
1: जी
0: उपरांत ही जो है वो दवाई का इस्तेमाल करें।
1: जी तो कीड़े और बीमारियों की बात करें तो कौन कौन सी कीड़े और
0: हाँ,
1: बीमारियां हैं?
0: इसमें ज्यादातर के जो हमारा आजकल जैसे अभी हमारी क्योंकि रोपाई जो वो हो चुकी है, तो रोपाई के तुरंत बाद जो है वो एक राइस हिस्पा के नाम पर एक कीट है जो एक पत्ते चूसने वाला जो है कीट है जिसको टिड्डी भी कहते हैं, टिड्डे कहते हैं, या एक राइस बग के नाम पर है, या और किस्म के जो हमारे जो अन्य कीट हैं वो इस सीजन में जो है इनका जो है वो अटैक
1: प्रकोप होता
0: हो
1: है जी
0: सकता है, हो
1: जी
0: सकता है।
1: तो जो है अगर प्रकोप हो जाता है कीड़ों का, टिड्डों का, तो उस परिस्थिति में कोई दवाई है जिसका इस्तेमाल करके इनको नियंत्रित किया जा
0: हाँ,
1: सकता है?
0: अगर किसान भाई को लगता है कि ये जो है वो राइस हिस्पा है या वो जो जो पत्ते चूसने वाला कोई टिड्डा है, तो इसमें जो है वो क्लोरोपायरीफॉस नाम की एक दवाई आती है। क्लोरोपायरीफॉस जो है वो 3 से 3 ml, 2.5 से 3 ml जो है वो प्रति लीटर पानी में मिलाकर जो है, या उसका जो है 2 लीटर दवाई जो है वो 25 किलो रेत में डालें और प्रति हेक्टर जो है इसका जो है वो छिड़काव करें। आवश्यक है कि जब हम रेत में इसको मिलाएं तो पूर्णतः जो दवाई और रेत है वो

0: अच्छी तरह मिल जाए।
1: यानी कि कहने का मतलब यह है कि रेत और दवाई का सम्मिश्रण जो ऐसे बनना चाहिए कि रेत के हर भाग में
0: जो है वो दवाई जो है लगे, अन्यथा क्या होगा कि जो कहीं पर वो रोग जो है वो ठीक हो जाएगा और जहां पर वो दवाई की मात्रा जो है वो नहीं गिरी होगी वहां पर जो है उसका नियंत्रण नहीं हो पाएगा।
1: जी, तो अक्सर देखा जाता है कि जो पत्ते जो है धान फसल में जो है पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं।
0: जी,
1: पीले पड़ने के पीछे जो है क्या क्या कारण हो सकते हैं?
0: इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारा जो जड़ से जो एक तने से जो एक बीमारी लगती है जो उसका कारण भी हो सकता है, कोई पोषक तत्व की कमी की वजह से भी वो हो सकता है, तो ऐसे तो बता पाना असंभव है। तो इसलिए मैंने अभी किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में जब हमें ये पता ना लगे कि क्या कारण है तो इसके कारण की जांच के लिए जो है आवश्यक है उसका के दो पौधे निकाल करके जो है वो नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में या जो हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के जितने भी केवीकेज हैं या राइस रिसर्च सेंटर्स हैं वहां पर ले जाने के उपरांत ही या जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनकी जो परामर्श है उसके बिना कोई भी दवाई का छिड़काव ना करें।
1: जी, यानी कि कहने का मतलब ये हो कि जिंक की अगर कमी है तो फिर जिंक सल्फेट जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर जो है और कोई बीमारी है तो उस या कीड़ा है तो उस परिस्थिति में जो है एक विशेषज्ञ बता पाएगा कि
0: बिना परामर्श से कोई भी दवाई का छिड़काव ना कर।
1: तो इस परिस्थिति में जो है अगर हमारा जो है किसान भाई जो है उन्नत किस्में लगाई हैं उसने धान की और उन्नत विधि से खेती बाड़ी की है तो उस परिस्थिति में जो धान फसल है अगर बासमती कहा जाए या दूसरे चावल कहा जाए तो कितनी कितनी पैदावार मिल सकती है या फिर जो है संकर किस्म है जो हाइब्रिड जिसको कहा जाता है कितनी पैदावार मिल सकती है प्रति कनाल या प्रति हेक्टेयर?
0: देखें, आजकल तो मैं चाहूंगा जो हमारे पुराने तरीके में जो हमारे पुराने जो किसान थे जो पुरानी हमारी जो किस्में थी धान की वो तो शायद लुप्त हो गई है, लेकिन आज का जो किसान है वो हमारा ज्यादा का जो संकर बीज है जिसको हाइब्रिड सीड कहते हैं उसके ऊपर ही उसका जोर है। तो हाइब्रिड जो है अलग अलग कंपनीज के हाइब्रिड है, अगर हम औसतन बात करें यील्ड की पैदावार की अगर हम बात करें तो 50 और 55 अन्यथा 60 क्विंटल पर हेक्टर के हिसाब से भी इसकी जो हमारी यील्ड है वो मापी गई है अलग अलग कंपनीज के हाइब्रिड्स की।
1: जी, तो अन्य जो उन्नत किस्में हैं जो प्रदेश सरकार की हैं या केंद्र सरकार द्वारा जो है दी गई हैं किस्में विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं उसमें जो है कितनी पैदावार मिल सकती है?
0: उसमें तो 30 और 35 से 40 क्विंटल पर हेक्टर के हिसाब से जो थी वो अभी तक हमारे पास पैदावार जो है वो रिकॉर्ड की गई है, लेकिन जो हमारी जो शंकर किस्में हैं
1: उनमें
0: पैदावार जो है वो बहुत ज्यादा है और किसान उसका जो है वो अभी क्योंकि वो शंकर जो बीज हैं उन्हीं का इस्तेमाल जो है किसान कर रहा है।
1: जी, एनके धीमान जी, आपने हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छी जानकारी दी कि धान फसल की देखभाल कैसे की जाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी किसान भाइयों, अभी आपने सुनी ये भेंट वार्ता और भेंट वार्ता जो थी वो धान की फसल के बारे में थी। जैसा कि आप किसान भाइयों जानते हैं कि आजकल धान की फसल का ही काम है, चाहे वो घास उखाड़ने की बात हो, चाहे वो मेढ़े बनाने की बात हो, चाहे वो बारिश की बात हो, क्योंकि धान फसल अगर लगाई है तो पानी का होना भी बहुत आवश्यक है। तो चलिए अब इस जानकारी के बाद रुख करते हैं लोक संगीत की तरफ। तो लीजिए सुनिए जोगिंद्रा शर्मा की आवाज़ में गाया ये लोकगीत।

कार्यक्रम किसानवाणी में फिर से आप सभी किसान बागवान व पशुपालक भाई बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस समय आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से और आज मैं हूँ आपके साथ वर्षा कटोच। चलिए किसान भाइयों, अगर हम बात करें मौसम की तो हिमाचल प्रदेश में आज का मौसम बारिश और बादलों के साथ काफ़ी सुहावना भी बना रहा, जहां तापमान अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। बाकी अगर हम वर्षा की बात करें, क्योंकि बीच बीच में बारिश भी हुई है, तो 86% से 90% तक की जो वर्षा है वो आंकी गई और हवाओं में नमी की अगर हम बात करें तो 97% और दृश्यता की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी आज जो है वो पाए गए। कहीं जगह खूब बारिश हुई तो कहीं हल्की हल्की बारिश, कहीं मीठी मीठी धूप तो कहीं गड़गड़ाहट के साथ ही आज जो तापमान था वो बना रहा। तो चलिए किसान भाइयों, अब फिर रुख करते हैं लोक संगीत की तरफ और फौरन हाजिर होते हैं फिर से आपकी सेवा में कुछ और बातों के साथ, जानकारियों के साथ।

किसान भाइयों, अब कार्यक्रम अंतिम क्षणों में पहुंच गया है। तो जैसा कि धान की फसल की आज हम बात कर रहे थे, तो हम अपने किसान भाइयों से, बागवान और पशुपालक भाई बहनों से ये कहना चाहेंगे कि बरसात का मौसम है, आप जब भी खेतों में या गौशाला में या अपने बाग बगीचे में काम करें तो पूरी सतर्कता के साथ करें, क्योंकि बरसात के मौसम में और भी कई अन्य जीव जो हैं वो सूखी जगह की तरफ आते हैं, तो उनका भी ध्यान रखें। और पानी में भी कई ऐसे जानवर होते हैं जो पानी में ही पाए जाते हैं, तो उनसे भी अपना बचाव करें। और घड़ी की सुइयां अब ज़्यादा बोलने की अनुमति नहीं दे रही हैं, तो जाने से पहले आपको बता दें कि आप तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया विकास पठानिया ने, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह, और अब अपनी किसान बहन वर्षा टोच को आज्ञा दीजिए। अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी FM बैंड 103.4 MHz पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7:42 हो चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाए, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा में करीब 333 करोड़ रुपए की 26 विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से स्वैच्छिक रक्तदान को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, मॉनसून सत्र में जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी भाजपा। और चंबा का 8 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला संपन्न। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। वे आज नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान के शुभारंभ पर वर्चुअल माध्यम से बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए।
1: मेरे युवा साथियों, आप भारत की अमृत पीढ़ी है। आप अगले 20-25 वर्षों में अपने जीवन को भी दिशा देंगे और आप ही 2047 में देश को विकसित भारत की मंजिल तक लेकर जाएंगे। देश को आपकी ऊर्जा, आपकी कल्पना शक्ति और आपकी टैलेंट की जरूरत है। इसलिए देश के लिए और अपने जीवन के लिए खुद को नशा मुक्त रखना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम में देश भर के 28,000 स्थानों पर 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चंबा विधानसभा क्षेत्र में करीब 333 करोड़ रुपए की 26 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि जिले में सड़कों का जाल बिछाने का कार्य जारी है और अगले 3 माह के भीतर 591 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न सड़कों का कार्य शुरू किया जाएगा।
2: 591 करोड़ रुपए की सड़कों का कार्य

0: अगले 2-3 महीनों में शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी मैं चंबे के विधानसभा क्षेत्र के दौरे में आया हूँ। यहाँ 175 करोड़ रुपए की सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है और यहाँ अभी 32 करोड़ की लागत से जो पार्किंग का भी शिलान्यास हुआ है। जहाँ विकास की बात है, पैसे की कोई कमी नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे पास पैसा खर्च करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में है।
1: बाद में चंबा मेडिकल कॉलेज में एक संवाद सत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सकों को विदेश में एक्सपोजर विजिट पर भेजने पर विचार कर रही है और इस संबंध में एक नीति तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि चंबा मेडिकल कॉलेज में 3 टेस्ला MRI मशीन जल्द स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि संस्थान में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू करने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना जिले के हरोली में प्रदेश के पहले ई बस डिपो का लोकार्पण किया। उन्होंने पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय कार्यालय का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हरोली में स्थापित ई बस डिपो से 20 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा और पूरे ऊना जिले में 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। अग्निहोत्री ने बताया कि ठियोग, नाहन और नादौन में भी ई बस डिपो स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने परिवहन निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा के आग्रह पर कांगड़ा में भी ई बस डिपो स्थापित करने की घोषणा की। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने नागरिकों विशेषकर युवाओं से स्वैच्छिक रक्तदान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। लोकभवन शिमला में एक समारोह में उन्होंने कहा कि चिकित्सा विज्ञान में भले ही उल्लेखनीय प्रगति की हो, लेकिन आज भी मानव रक्त का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। राज्यपाल ने स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवकों और अन्य व्यक्तियों को सम्मानित किया। उन्होंने मौजूद लोगों को नशा मुक्त भारत की शपथ भी दिलाई। राज्यपाल ने युवाओं और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा रक्तदान शिविरों के आयोजन में निभाई जा रही भूमिका की सराहना भी की। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि वन महोत्सव अभियान पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। सोलन जिले में कंडाघाट उपमंडल के ममलीग में आज वन महोत्सव कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। इस दौरान विभिन्न प्रजातियों के करीब 450 पौधे रोपे गए। शांडिल ने वशील में जन समस्याएं सुनकर अधिकारियों को इनके जल्द निपटारे के निर्देश भी दिए। बागवानी व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि सरकार जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किन्नौर जिले के ग्याबुंग में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने स्थानीय लोगों से वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में आधुनिक बागवानी तकनीकों व गुणवत्तापूर्ण किस्मों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया ताकि बाजार में उन्हें बेहतर मूल्य मिल सके। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि 21 अगस्त से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष जनहित के मुद्दों को सदन में उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन में भ्रष्टाचार, नशे के बढ़ते प्रचलन, कानून व्यवस्था, सड़कों व स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली सहित अन्य मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।
2: हमारी विधायक दल की बैठक बहुत जल्दी होगी और विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें हम चर्चा करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। विधानसभा के मॉनसून सत्र में पूरे जोर के साथ विपक्ष जो है जनहित के मुद्दों को उठाएगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे, कानून व्यवस्था के मुद्दे और हिमाचल प्रदेश में नशा और जिस तरह से उसका प्रचलन बढ़ा है और जो खासतौर से ये जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, इन सारे तमाम मुद्दों को लेकर के बात करेंगे।
1: इस बीच एक बयान में जयराम ठाकुर ने प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को किताबें ना मिलने पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा CBSE स्कूलों में अभी तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है क्योंकि इसके लिए नियम व शर्तें तय नहीं हो पाए हैं। चंबा का 8 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज संपन्न हो गया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर चंबा शहर में एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। मुख्यमंत्री ने मंजरी वन विहार से रावी नदी में हाथ से बनाई गई मिंजर का विसर्जन कर मेले का समापन किया। उन्होंने कहा कि मेले हमारी

0: समृद्ध संस्कृति के परिचायक हैं और चंबा का मिंजर मेला अपनी प्राचीन संस्कृति को राजकाल से ही सहेजे हुए है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया व विधायक नीरज नैयर भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आज मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में भी शिरकत करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन मेडिकल कॉलेज में कई स्वास्थ्य सेवाओं के बंद होने पर चिंता जताई है। नाहन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के रेडियोलॉजी विभाग में सीटी स्कैन व अल्ट्रासाउंड जैसी कई सेवाएं बंद है। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से अस्पताल में कई ऑपरेशन थिएटर भी बंद पड़े हुए हैं।
1: स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी गिरावट हमारे नाहन के मेडिकल कॉलेज में आई। आज ऐसी गंभीर स्थिति में पहुंचे हैं कि सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक उसका काम बंद हो, और बंद होने के पीछे चिकित्सकों का ना होना ये बताया। बहुत चिंता का विषय है। सिरमौर जिला का एकमात्र चिकित्सा का संस्थान, वहां पर ऐसी स्थिति हुई।
0: सांसद अनुराग ठाकुर ने ऊना जिले के संतोषगढ़ में आज स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रव्यापी मैं भी स्वदेशी समर्थक महाअभियान की डिजिटल शुरुआत की। उन्होंने कहा कि स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है और भारतीय उत्पादों, स्थानीय उद्यमों, स्टार्टअप्स, कारीगरों व लघु उद्योगों को बढ़ावा देना समय की मांग है। अनुराग ठाकुर ने लोगों से इस अभियान से जुड़ने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने का भी आह्वान किया। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि सरकार गुमारवी विधानसभा क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को आधुनिक, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने के लिए बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गुमारवी क्षेत्र में अगले 6 माह में 60 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही 55 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने का कार्य भी किया जाएगा। सतलुज जल विद्युत के पूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक स्वर्गीय नंदलाल शर्मा की स्मृति में आज पंचकुला में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। श्रद्धांजलि सभा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल सहित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व अन्य नेताओं के शोक संदेश पढ़े गए। सभी ने दिवंगत नंदलाल शर्मा को एक दूरदर्शी प्रशासक और एक कुशल प्रबंधक बताया। और अब मौसम। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। विभाग ने कल कांगड़ा, चंबा और बिलासपुर जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट भी जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा में करीब 333 करोड़ रुपए की 26 विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने युवाओं से स्वैच्छिक रक्तदान को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा मॉनसून सत्र में जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी भाजपा। और चंबा का 8 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला संपन्न। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रादेशिक समाचार अभी आप आकाशवाणी के शिमला, हमीरपुर, धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच तथा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब रोजगार समाचार सुनिए। कार्यालय

या बाल विकास परियोजना अधिकारी कुमार सेन, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने हेतु आंगनवाड़ी क्षेत्र की सामान्य निवासी महिला जिनका नाम दिनांक 1 जनवरी 2026 को संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र की फेजिंग सर्विस सूची में दर्ज हो उन उम्मीदवारों से दिनांक 22 अगस्त 2026 फीडिंग एरिया व पंचायत स्तर के आधार पर सार्वजनिक सूचना के माध्यम से पात्र आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों को भरने हेतु आवश्यक शर्तें इस प्रकार से हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आंगनवाड़ी सहायिका के पद के लिए केवल महिला प्रार्थी ही पात्र है। आवेदक उस गांव या संबंधित गांव की सामान्य निवासी होनी चाहिए जिस आंगनवाड़ी केंद्र में रिक्त पद भरा जाना है। यदि आंगनवाड़ी केंद्र के लाभान्वित गांव में पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो उसी पंचायत के अंतर्गत इच्छुक पात्र उम्मीदवार अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। यदि पंचायत में भी पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो उसी पंचायत के साथ लगती पंचायत से भी इच्छुक पात्र उम्मीदवार अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थी का नाम दिनांक 1 जनवरी 2026 को उस आंगनवाड़ी केंद्र के परिवारों की फ्रीजिंग सूची में दर्ज होना चाहिए। प्रार्थी कम से कम 10.2 की परीक्षा पास किया हुआ होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और आय प्रमाण पत्र अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। रोजगार समाचार समाप्त हुए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडिया वेव 387.5।

FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

अभी आपने सुनी अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में गाई ये गज़ल। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सब्र से समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं। आकाशवाणी की धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति भूपेंद्र चावला की आवाज में।

अभी आपने सुना बलविंदर चावला की आवाज़ में गाया ये पंजाबी गीत। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस से समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से।

अभी आपने सुना बबू मान की आवाज़ में गाया ये पंजाबी गीत। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सब्र से समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं अलीशा चिनोए की आवाज़ में गाया कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आपने सुना अलीशा चिनॉय की आवाज़ में गाया ये गीत, कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति लकी अली की आवाज़ में।

लक्की अली की आवाज़ में गाए इसी गीत के साथ हमारा आज का सबरस कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब समय है देशगान का।

अभी आपने सुना मनहर उदास, महेंद्र कपूर, हेमा सरदेसाई के मिले जुले स्वरों में ये देशभक्ति गीत। देशभक्ति गीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये रही।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब पहले समाचार संध्या व रात्रि 9:00 न्यूज़ एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली के केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार। केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
3: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
3: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
2: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक

0: मां की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: युवाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
1: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जन भागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
3: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माय भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
1: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई यह योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में AI दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
5: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
1: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
6: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज कर

0: आ सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत की जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षक क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा।

0: समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
1: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो अरीना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी वांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week nationwide anti-drug campaign, asserts drugs-free youth crucial for developed India. SBI research raises India GDP growth estimate to 7% in first quarter of current fiscal. Delhi government announces 7.5 lakh rupees compensation for families of prisoners dying unnaturally in jail. Flood situation in Odisha improves as Mahanadi River recedes. Rainfall intensity decreases in Keralam, bringing relief to people. In Indonesia, 5 persons killed and 41 missing after ferry catches fire off Madura Island. Curtains to come down on Commonwealth Games 2026 tonight. Ahmedabad to receive baton at closing ceremony, marking India's formal transition as host of the centenary 2030 edition. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
3: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर।
2: Mr. Modi said that drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams. He said that addiction not only destroys families but also weakens the strength of the nation. The Prime Minister also urged families not to hide cases of substance abuse due to social stigma.
3: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें।
2: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country have participated in the event, including My Bharat and National Service Scheme volunteers.

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के दिन इसमें आप सुना करते हैं निर्माता निदेशक के बारे में। तो हमारे आज के निर्माता निदेशक हैं पीएल संतोषी, जिनके द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों के कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत हम आपको इस कार्यक्रम के दौरान सुनवाएंगे। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं पीएल संतोषी की, जो कि लेखक, निर्माता, निदेशक सब कुछ हैं। इनका असली नाम प्यारेलाल श्रीवास्तव था। इनका जन्म 7 अगस्त 1916 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध फिल्म निदेशक, निर्माता, पटकथा लेखक और गीतकार थे। उन्होंने 1940 के दशक से लेकर 1960 के दशक तक हिंदी सिनेमा में बेहतरीन योगदान दिया। इनकी अगर फिल्मों की हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है शहनाई का। तो चलिए सुनते हैं शहनाई फिल्म से ये गीत।
1: शर्मा के न जा।

कार्यक्रम एक ही कलाकार इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्रों से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, और इसमें आज आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत निर्माता निर्देशक पीएल संतोषी द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। जी हाँ श्रोताओं, इनकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो शहनाई सरगम, छम छमा छम और सबसे बड़ा रुपया, ये इनकी यादगार फिल्में हैं। और इन्होंने जितनी भी फिल्में हैं इनकी, वो सारी सुपर डुपर हिट रहीं। और निर्माता निर्देशक होने के साथ

साथ ये गीतों का लेखन भी करते हैं। और इनके पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो इनके बेटे जो राजकुमार संतोषी हैं, वो भी हिंदी सिनेमा के एक जाने माने और सम्मानित फिल्म निर्माता निर्देशक हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें आज आपने सुने निर्माता निर्देशक पीएल संतोषी द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है आजाद हिंद फौज के गीतों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्ता पर केंद्रित रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर। शोध और आलेख वसुधा बैनर्जी।

0: जी प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर।
1: साल 1942, दूसरे विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी थी। भारत अब भी गुलाम था, लेकिन अपने वतन से हजारों मील दूर जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के अटलांटिक होटल में इतिहास एक नई करवट लेने वाला था। यहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद भारत के ख्वाब को

0: the Deutsche Indische Gesellschaft, which is the German Indian Society, on the 11th of September 1942. And it was a beautiful orchestration. It was beautifully played. And Netaji himself clearly interacted with the musicians and the conductor. We have a beautiful photograph in the Netaji Museum at Netaji Bhavan in Kolkata, which shows Netaji addressing the gathering in Hamburg. And behind him, we see the orchestra and the musicians with their musical instruments.
1: इसके कुछ ही महीनों बाद इतिहास ने एक और असाधारण अध्याय लिखा। जर्मनी से दक्षिण पूर्व एशिया तक करीब 90 दिनों की एक बेहद खुफिया और जोखिम भरी पनडुब्बी यात्रा और फिर 1943 की शुरुआत में नेताजी का सिंगापुर पहुंचना। यहीं उन्होंने राज बिहारी बोस से आजाद हिंद फौज की कमान संभाली।

0: उस समय सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर।
1: 3 जुलाई 1943 को जब नेताजी सिंगापुर पधारे, उस समय पूर्व एशिया में इतनी खुशी हुई कि तमाम पूर्व एशिया के रहने वाले 35 लाख हिंदुस्तानियों ने और आजाद हिंद फौज के जवान और सरानों ने गीत गा के उनका स्वागत किया। वो गीत क्या था?

0: इस गीत को मुमताज हुसैन साहब ने लिखा और इसका स्वर मैंने दिया।
1: नेताजी जानते थे जंग सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़ी जाती, वो लोगों के दिलों और जहन में भी लड़ी जाती है, और वहां तक पहुंचने का सबसे असरदार रास्ता था संगीत। वो हौसला था और संघर्ष का एक सशक्त हथियार भी। 21 अक्टूबर 1943 आजाद हिंद की आरजी हुकूमत के ऐलान से ठीक पहले नेताजी ने आबिद हसन से कहा कि जनगण मन का एक हिंदुस्तानी रूप तैयार किया जाए। वो अपने सैनिकों से हिंदुस्तानी में बात करते थे, साथ ही तमिल में उसका समानांतर अनुवाद भी सुनाया जाता था। आबिद हसन ने मुमताज हुसैन से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के जनगण मन के 5 में से 3 पदों का हिंदुस्तानी रूप लिखवाया और कैप्टन राम सिंह ने उसकी धुन को संवारा, और इस तरह जन्म हुआ

0: प्रख्यात कवि और प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी बताते हैं कि ये गीत किस तरह विविधता में एकता के उस भाव को स्वर देता है जिसकी बुनियाद पर नेताजी अपना भारत गढ़ना चाहते थे।
1: जो एक एकता की भावना है, आपसी मेलजोल है, वो बहुत मूल्यवान है। और हम देखते हैं ना, आजाद हिंद फौज के जो तीन नायकों पर जो मुकदमा चला, तो उसमें एक कर्नल सहगल, एक कर्नल ढिल्लन और एक जनरल शाहनवाज, तो एक हिंदू, एक सिख, एक मुसलमान, तो ये भी एक अनूठी चीज है। तो उसमें जो एक पंक्तियां आती हैं, वो भी मैं सुनाना चाहूंगा कि सबके दिल में प्रीत बसाए तेरी मीठी वाणी, और हर सूबे के रहने वाले, हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के, सब गोद में तेरी आके गूंथे प्रेम की माला।
0: इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इतिहासकार और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर सुगतो बोस।
2: नेताजी जब आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर बने, उन्होंने बताया कि जो सब प्रोफेशनल सोल्जर थे आजाद हिंद फौज के, वो ज्यादा आए थे पंजाब से, लेकिन बहुत सिविलियन रिक्रूट आए थे तमिलनाडु से। सबको तो एक करके आजादी का जंग लड़ना है, इसीलिए उन्होंने बताया कि जो आईएनए ऑर्केस्ट्रा था, वहाँ बहुत अच्छा एक लिरिसिस्ट था मुमताज हुसैन, और कैप्टन राम सिंह आईएनए ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर बना। वो एक साथ बहुत गाने बनाया। सबसे जो इंस्पायरिंग गीत था वो है कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा, वो जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाया जा। तो एक साथ सब ये गाते गाते वो इंडो बर्मा फ्रंटियर पार होके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आया, इम्फाल और कोहिमा में आजादी का जंग लड़ा।
0: सिंगापुर में नेताजी ने आजाद हिंद की अस्थायी सरकार या प्रोविजनल सरकार की स्थापना की घोषणा की और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध का उद्घोष किया। इसी ऐतिहासिक अवसर पर आजाद हिंद फौज का मार्चिंग गीत बना कदम कदम बढ़ाए जा।

0: आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों के बलिदान का ये संगीतमय स्मारक ब्रिटिश शासन द्वारा राजद्रोही घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया गया था। लगभग 8 दशकों के बाद आज भी इसकी लोकप्रियता का रहस्य क्या है?
1: Simple lyrics tapping into core emotions of courage, unity and collective identity and foot tapping beats.
0: गौरा धवन लाल देश के वरिष्ठ कमेंटेटरों में से हैं।
1: मुझे मिलिट्री सेरेमनीज और सेलिब्रेशंस की लाइव कमेंट्री करते हुए 4 दशक से अधिक हो गए हैं, पर आज भी कमेंट्री के समय जब ये गाने प्ले होती हैं, ये धुनें प्ले होती हैं, तो उनके बजते हुए कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं होता। बस मुख बंद होते हैं, अपने हाथ और पांव उसी बीट के साथ टैप करते हैं और हम उनको एंजॉय करते हैं। जो सेंटिमेंट्स ये धुनें और गाने कन्वे करते हैं, शब्द उनके सामने बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं।
0: आज कदम कदम बढ़ाए जा भारतीय सेना का रेजिमेंटल मार्चिंग सॉन्ग है।
2: 1996 में जनरल शंकर राय चौधरी ने इस बात को उठाया। ये सुभाष चंद्र बोस के जमाने में हुआ था, 1942 में। क्यों ना हम अभी इस वक्त इंडियन आर्मी के लिए इसको शुरू करें।
0: मेजर नजीर हुसैन भारतीय सैन्य संगीत की दुनिया का एक प्रतिष्ठित नाम।
2: उस वक्त जब 1942 के अंदर ये बनाया गया था, ये सिंपल एंड कॉमन म्यूजिक के हिसाब से बनाया गया। इसको शंकर राय चौधरी ने ही जब सवाल उठाया 1996 में जब हुआ, तो इसको अरेंजमेंट जो एक्चुअल अरेंजमेंट है मिलिट्री म्यूजिक का, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो इंडियन

0: तीन टुकड़ों में बनाया जाता है, एक तो इंट्रोडक्शन, देन मेलेडी, देन ग्रास टूटी, दिस दैट वाज द फोर्स, जवान के कदमों के लिए फोर्स लाना, फिर अगेन मेलेडी, देन प्रियो। तो इसको मिलिट्री बैंड के हिसाब से अरेंजमेंट किया गया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक कैप्टन एच बी बराल, हिम बहादुर बराल को दिया गया, और उसने इसको मिलिट्री बैंड के लिए अरेंजमेंट किया, मिलिट्री बैंड अरेंजमेंट, नॉट कंपोज।
1: सेना मुख्यालय में सैन्य संगीत सलाहकार रह चुके विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित मेजर नजीर हुसैन।
0: दिस इज द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम कदम कदम बढ़ाए, दिस इज मेलोडी, पहले जो था इंट्रोडक्शन था, नो मेलोडी, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला, दिस इज मेलोडी। नाउ इज अ ब्रास पीटी, ला ला ला ला ला ला ला ला पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम पम। This is the brass duty. This is the josh jawan ke hirday mein lane ke liye, dimag mein lane ke liye. Then again is a melody. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. This is also melody. Now is a trio. कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की कौम पे लुटाए जा।
1: अब इस गीत के शब्दों और उसकी भावना पर रोशनी डाल रहे हैं कवि और वरिष्ठ प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी।
2: ये गीत लिखा कैप्टन राम सिंह जी ने और धुन भी उन्होंने ही बनाई है। हालांकि इसी मुखड़े का एक गीत बंशीधर शुक्ल जी का भी है। बंशीधर शुक्ल जी का जो गीत है उसके अंतरे बिल्कुल अलग हैं, उसकी भाषा बिल्कुल अलग है, क्राफ्ट के हिसाब से, शिल्प के हिसाब से वो बेहतर गीत है। लेकिन ये जो कदम कदम बढ़ाया जा कैप्टन राम सिंह जी ने जो लिखा है, जहां तक एक मार्चिंग सॉन्ग की जो जरूरत होती है, जो जोश जो जज्बा चाहिए, वो उसमें आपको मिलेगा। पहली ही पंक्ति में कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा। अब जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं, बीहड़ जंगलों से, और तमाम सारी मुसीबतें हैं, उलझने हैं, और जा कहां रहे हैं, जंग करने के लिए, मारे भी जा सकते हैं, घायल भी हो सकते हैं, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते हैं, लेकिन खुशी से जाना है, एक जज्बे के साथ जाना है, साहस के साथ जाना है, और दुश्मन को जो है किसी तरह उसको खत्म करना है। फिर एक जज्बा है कि दिल्ली जाएंगे और लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, गुलामी को हटा देंगे, मिटा देंगे। तो एक एक पंक्ति में जो साहस है, जो हिम्मत है, जो जोश है, वो बिल्कुल अलग तरह का है, और जो एक मार्चिंग सॉन्ग के लिए जरूरी है वो सब कुछ इस गीत में है।

0: जाकर झूमेंगे, मतवाले बन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे, मतवाले बन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे।
1: जितने भी ये गीत हैं शिल्प के हिसाब से, क्राफ्ट के हिसाब से, बेशक उनमें कच्चापन है लेकिन जज्बात का सच्चापन है। बहुत जोश भरते हैं ये कविताएं, देश प्रेम से ओतप्रोत है एक एक पंक्ति है, और बहुत मूल्यवान है उन फौजियों के लिए जो लड़ रहे थे एक जोश के साथ, एक जज्बे के साथ, कम साधनों के साथ। जैसे एक गीत में आता है कि हम गोली खाकर झूमेंगे। अब ये गोली वही है जो जान ले सकती है, लेकिन ये ऐसे बता रहे हैं गोली खाकर झूमेंगे, हम मौत को बढ़कर चूमेंगे। अब ये जो जज्बा है ये एक फौजी में और जो जंग करने जा रहा है, वो इस तरह की पंक्तियां आती हैं जो जोश भरती हैं, किसी में भी जोश भरती हैं।
2: युद्ध समाप्त हुआ लेकिन आजाद हिंद फौज की कहानी नहीं। जब लाल किले में आजाद हिंद फौज के मुकदमे शुरू हुए तो उसके गीतों पर भी पाबंदी लगा दी गई। डॉक्टर सुगतो बोस।
3: द ट्रायल बिगन ऑन द 5th ऑफ नवंबर एंड एंडेड ऑन द 31st ऑफ दिसंबर ऑफ 1945 and there was a huge popular upsurge across the whole country in support of Netaji's soldiers. And even if the British tried to, you know, ban INA songs, that was not very effective because in the public gatherings that were held, INA songs began to be performed. And then once Claude Auchinleck was forced to release the three INA officers, there was a slogan in those days, Lal Kile Se Aaye Awaaz, Saigal Dhilan Shanawaz. At that stage, you know, everywhere as part of the celebrations, and for example, on Netaji's birthday, on the 23rd of January of 1946, these INA songs were being performed everywhere.
2: कैप्टन राम सिंह की कंडक्टिंग बेटॉन ने हजारों दिलों की धड़कनों को एक ही लय में बांध दिया था। हिमाचल प्रदेश में जन्मे इस गोरखा सैनिक ने अपनी संगीत प्रतिभा से आजाद हिंद फौज के सांगीतिक संसार में नई जान फूंक दी।
4: ये वायलिन मुझको नेताजी ने अपने करकमलों से मुझे भेंट की, और भेंट करते समय कहा था कि राम सिंह ये वायलिन भारतवर्ष में भी बजेगा।

0: हंसते हंसते जीना हो नेताजी।
1: मुमताज हुसैन के अलावा आजाद हिंद फौज के गीतों में कई ऐसे गीतकारों का जिक्र मिलता है जिन्हें आज बहुत कम लोग जानते हैं। इनमें सूबेदार बलदेव सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रकाश सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट मुश्ताक और यहाँ तक कि गुरबख्श सिंह ढिल्लों भी शामिल थे। आइए कैप्टन राम सिंह की जुबानी सुनते हैं उनके कुछ साथियों और उनके गीतों के बारे में।
2: ये गीत सेकंड लेफ्टिनेंट कल्याणचंद हसर जी का लिखा हुआ है, इसकी धुन मैंने बनाई थी।
3: वो दिल ही नहीं जिसमें न हो चाह वतन की, वो दिल ही नहीं जिसमें न हो चाह वतन।

आजाद हिंद फौज के जवान जब दिन भर बहुत परिश्रम करते थे, शाम को जब भोजन करने अपने मेस में जाते थे, तो खाना वाना खाने के बाद फिर सारी कंपनियां इकट्ठे होकर कहते थे चलो भाई जरा मनोरंजन हो जाए, तो वो कहते थे कवाली गाया जाए।

0: जय हिंद भाइयों, कहो जय हिंद।
1: नेहरू ब्रिगेड के कमांडर कर्नल ढिल्लन साहब ने नेताजी का फरमान कहकर एक गीत लिखा है, वो है नेताजी का फरमान, उठो सोए भारत के नसीबों को जगा दो।

रानी झांसी रेजिमेंट के लिए भी एक विशेष गीत तैयार किया गया था। ये रेजिमेंट नेताजी के बेहद निकट थी, क्योंकि नेताजी के लिए रानी झांसी रेजिमेंट सिर्फ महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी नहीं थी, वो उनके उस भारत का ख्वाब थी जहां औरत और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ें, जहां इज्जत, बराबरी और जिम्मेदारी तीनों में कोई फर्क न हो।

0: इन गीतों का संग्रह आज भी नेताजी रिसर्च ब्यूरो में सुरक्षित है और netaji.org पर निशुल्क उपलब्ध है। जनगण मन की धुन के संगीतकार को लेकर लोगों के मन में कुछ सवाल भी उठते रहे हैं। प्रोफेसर सुगतो बोस हमें 1918 में दिनेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा तैयार की गई संगीत रचना की याद दिलाते हैं। वो ये भी समझाते हैं कि शुभ सुख चैन और जनगण मन की धुनों में कहां बारीक अंतर है।
1: द ट्यून ऑफ शुभ सुख चैन की इज स्लाइटली डिफरेंट, देयर आर न्यूएंसेस व्हिच आर डिफरेंट। देयर आर मोर कोमल नोट्स दैट हैव बीन एडेड। The second verse of the Jana Gana Mana song is very beautiful. It's not part of our national anthem, only the first verse is. But the second verse says, Aharah tab ahvan pracharit, shuni tab udar bani, Hindu Bodh Shikh Jain Parashik Musalman Krishtani, Purab

0: jaya ho becomes jaya ho. That's the nuance, that's the slight variation that was made in the Azad Hind score of the Hindustani version of our national anthem.
1: आकाशवाणी आर्काइव्स में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 1942 को हैम्बर्ग में प्रस्तुत जनगण मन का वाद्य रूप पहली बार दुनिया के सामने आजाद भारत के राष्ट्रगान के रूप में पेश किया गया। इसकी प्रस्तुति रेडियो हैम्बर्ग चेंबर ऑर्केस्ट्रा ने की थी और उसके बैंड लीडर थे एगिल क्रुटके। हैम्बर्ग स्टेट आर्काइव्स में इस प्रस्तुति का उल्लेख कुछ इस तरह मिलता है। जन गण मन, टेक्स्ट रविंद्रनाथ ठाकुर, कोडिफिकेशन ऑफ म्यूजिक अंबिक मजुमदार। लेकिन अंबिक मजुमदार कौन थे? इस सवाल का जवाब हमें जर्मनी में फ्री इंडिया लीजन के एक महत्वपूर्ण सदस्य बीएल मुखर्जी की इस दुर्लभ आर्काइवल रिकॉर्डिंग में मिलता है।
2: एक शाम नेताजी ने हम सबको अपने निवास पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। वहां उन्होंने मुझसे गाने का आग्रह किया क्योंकि मैं बर्लिन रेडियो पर नियमित रूप से गाया करता था। हमारे कार्यक्रम का नाम था नमस्ते हिंद। हमारे साथ एक

0: हालांकि वो पूरी तरह हमारे संगठन से जुड़े नहीं थे, लेकिन वे पूर्वी प्रशिया के कॉनिसबर्ग विश्वविद्यालय से संगीत के विद्वान थे। उनका नाम था अंबिक मजूमदार। वास्तव में जनगण मन की वर्तमान संगीत लिपि तैयार करने का कार्य उन्होंने ही किया था। मेरे गायन और अंबिक मजूमदार के पियानो वादन को सुनने के बाद नेताजी ने निर्णय लिया कि यही हमारी राष्ट्रीय धुन होगी।
1: बर्मा के घने जंगलों में इतिहास न केवल कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहा था, वो गुनगुना भी रहा था उन सैनिकों के कंठों में जिन्होंने अपनी युवावस्था एक स्वप्न के लिए समर्पित कर दी। इम्फाल की मिट्टी और सिंगापुर की तपती धरती पर जन्मी वो धुनें आज भी इतिहास की सांसों में जीवित हैं।

0: साम्राज्य की तोपें अब कब की खामोश हो चुकी हैं। कूच करते कदमों की आहटें इतिहास में विलीन हो चुकी हैं। जो कुछ बचा है, कारावास और निर्वासन, मुकदमों और यातनाओं, विस्मृति और विघटन के पार, वो है एक प्लेलिस्ट, प्रतिरोध का साउंडट्रैक। जब आज तिरंगा हवा में लहराए तो ध्यान से सुनिए, शायद आपको मातृभूमि के नाम खून से लिखे हुए उस पुराने चिरंतन वचन की गूंज सुनाई दे।
1: Friends, I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free.

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर, शोध और आलेख वसुधा बैनर्जी, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा, स्वरांश सहयोग आनंद श्रीवास्तव, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह और प्रांजल, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। इस कार्यक्रम में जर्मनी के हैम्बर्ग में प्रस्तुत जनगण मन के वाद्य संस्करण को छोड़कर आजाद हिंद फौज INA के सभी गीत नेताजी रिसर्च ब्यूरो कोलकाता के सौजन्य से प्राप्त हुए। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: नमस्कार, अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा की आज के इस आयोजन में हम सुप्रसिद्ध गायक श्री सुधाकर देवले जी का शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
2: नमस्कार, इन टुडेज एडिशन ऑफ अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा वी आर प्लीज्ड टू प्रेजेंट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय द रेनाउंड वोकलिस्ट श्री सुधाकर देवले।
1: एक संगीतमय परिवार में जन्मे देवले जी ने अपनी गायन की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती लता देवले जी से प्राप्त की। आगे चलकर उन्होंने ग्वालियर घराने के श्री रघुनाथ वाघ जी से विशेष रूप से टप्पा गायन सीखा और पद्मश्री पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी से गुरु शिष्य परंपरा के तहत ख्याल, ठुमरी, नाट्य संगीत और भजनों की गहन शिक्षा ग्रहण की।
2: बॉर्न इंटू अ म्यूजिकल फैमिली, श्री देवले रिसीव्ड हिज इनिशियल ट्रेनिंग इन वोकल म्यूजिक फ्रॉम हिज मदर द लेट श्रीमती लता देवले। लेटर ही स्पेशलाइज्ड इन टप्पा सिंगिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री रघुनाथ वाघ ऑफ द ग्वालियर घराना। फर्दरमोर, अंडर द ट्रेडिशनल गुरु शिष्य परंपरा ही रिसीव्ड इंटेंसिव ट्रेनिंग इन ख्याल

0: नाट्य संगीत एंड भजन्स फ्रॉम द पद्मश्री रेसिपिएंट पंडित जितेंद्र अभिषेकी।
1: तानसेन, कालिदास, सवाई गंधर्व जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समारोह के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और खाड़ी देशों में अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देवले जी आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार हैं। साथ ही आप संगीत शिरोमणि और विक्रमादित्य जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत हैं।
0: एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन, श्री देवले हैज डिलीवर्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस एट प्रेस्टिजियस नेशनल फेस्टिवल्स सच एज द तानसेन, कालिदास एंड सवाई गंधर्व फेस्टिवल, as well as in the USA, UK and the Gulf countries. He has also been honored with several prestigious awards, including the Sangeet Shiromani and Vikramaditya Awards.
1: Sudhakar Devle ji apne karyakram ki shuruaat raag Puriya se kar rahe hain. Vilambit khayal ke bol hain, pyare degar lagi, jo ek taal mein nibadh hai. Drut khayal ke bol hain, chalo hato ji chhel, kahe roke gail, jo tri taal mein hai. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
0: श्री सुधाकर देवले इज कमेंसिंग हिज परफॉर्मेंस विद राग पुरिया। द कंपोजिशन इज सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स प्यारे देगर लागी। द कंपोजिशन इज सेट टू थ्री ताल विद द लिरिक्स चलो हटोजी छैल काहे रोके गैल। Accompanying him on the harmonium is Pramod Borgaonkar and on the tabla is Ulhas Rajhans.

0: रागपुरिया में अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का शास्त्रीय गायन। देवले जी प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बसंती केदार। इस रचना के बोल हैं बरनीन जाए सखी जो झपताल में निबद्ध है। द्रुत रचना के बोल हैं बेरी बसंत अब आयोरी जो त्रिताल में है।
1: दैट वॉज अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय श्री सुधाकर देवले इन रागपुरिया। श्री देवले विल नाउ प्रेजेंट राग बसंती केदार सेट टू झपताल विद द लिरिक्स बरनीन जाए सखी, सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स बेरी बसंत अब आयोरी।

0: अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का गायन राग बसंती केदार। सुधाकर देवले जी कार्यक्रम का समापन राग हंस ध्वनि में तराना से कर रहे हैं। त्रिताल में निबद्ध रचना की बोल है दारा दीम तदारी दानी दीम।
1: यू आर जस्ट लिसनिंग टू द वोकल परफॉर्मेंस ऑफ श्री सुधाकर देवले जी इन राग बसंती केदार। श्री सुधाकर देवले इज कंक्लूडिंग हिज प्रोग्राम विद तराना इन राग हंस ध्वनि सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स दारा दिम तदारे दानी दिम।

0: आपने सुना सुधाकर देवले जी का गाया राग हंस ध्वनि में तराना। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा संपन्न होती है।
1: यू आर जस्ट लिसनिंग टू अ तराना इन राग हंस ध्वनि रेंडर्ड बाय श्री सुधाकर देवले। Accompanying him were Pramod Borgaonkar on the harmonium and Ulhas Rajhans on the tabla. This program was a presentation of Akashwani Indore. With this, today's Akhil Bharatiya Ravivasariya Sangeet Sabha comes to an end.
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब पहले हिंदी में समाचार और रात्रि

0: 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जलस्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुवाई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिसमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपें। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं बीएमजेड, कैमी बांस और सैंड

0: host for the Centenary 2030 edition. And that is the end of this news bulletin.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी की धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारा ये प्रसारण यहीं पर संपन्न होता है। अपने कल प्रातः के प्रसारण के कार्यक्रमों के साथ कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।